दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है और उस बंद मुट्ठी में वो अपनी तकदीर लेकर आता है और फिर चल पड़ती है जिंदगी की गाड़ी। आइए सुनते हैं बूट पॉलिश फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म गीत गाता चल से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, वक्त बदल जाता है, लोग भी बदल जाते हैं, पर सच्चे दोस्त जो होते हैं वो कभी नहीं बदलते। वो हर कदम पर आपके साथ हाथ थामे रहते हैं, चाहे आपका समय बुरा चल रहा हो या अच्छा, पर वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। किशोर कुमार की आवाज में आइए सुनते हैं याराना फिल्म से ये गीत।

दोस्तों, इसी तरह आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। और अब भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 14 अक्टूबर 2026 सुबह के 5:53 और 46 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की सूचना दे दें। सुबह 6:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम अर्पण।

सुबह 7:10 पर सुनिएगा नवरात्र के अवसर पर विशेष कार्यक्रम शक्ति आराधना माँ कुष्मांडा।

8:45 और 9:45 पर कार्यक्रम प्रसारित होगा म्यूजिकल दिल लगी। 9:10 पर सुनिएगा स्पेशल सीरीज जन सेवा से देश सेवा।

दिल का मेल बॉक्स, ये कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 10:30 पर। 11:10 पर सुनेगा कार्यक्रम तस्वीर।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो घर आंगन, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 12:10 पर।

दोपहर 1:10 पर सुनेगा कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है, 100.1 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6ठे चरण के अंतर्गत 1 दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान के क्रियान्वयन चरण का हिस्सा है। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं और व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकलन कर उनमें आवश्यक बदलाव करने होंगे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों के 65 स्वास्थ्य क्षेत्रों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि समुदायों में संक्रमण फैलना जारी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए $1,20,00,000 का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।

आज नवरात्रि का चौथा दिन है, माँ कूष्मांडा की आराधना का दिन। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा अपनी दिव्य ऊर्जा से सृष्टि में प्रकाश और सकारात्मकता का संचार करती हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना कि कभी कभी जीवन में एक छोटी सी उम्मीद मन के अंधेरों को दूर करने के लिए काफी होती है। तो आज माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर शक्ति और उजाला बना रहे। 6:12 और 4 सेकंड हो चुके हैं। यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं अर्पण उर्वशी के साथ सुप्रभात।

हम रोज पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, प्रसाद रखते हैं, पर एक सवाल, क्या हम खुद को अर्पण करते हैं? अपना अहंकार, अपना गुस्सा, अपनी चिंताएं, अपना डर। असली पूजा वहीं से शुरू होती है जब हम ईश्वर के सामने बैठकर कहते हैं कि ये सब तेरा है, मैं भी तेरा हूं, अब तू ही संभाल।

जिंदगी में रोज हम दुराहे पर खड़े होते हैं, ये करूं या वो करूं, ये बोलूं या चुप रहूं, यहां रहूं या वहां जाऊं, और हम घबरा जाते हैं, दूसरों से पूछते हैं, गूगल करते हैं, रात भर सो नहीं पाते। पर सच तो ये है कि जवाब बाहर नहीं, हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है, एक गहरी शांत आवाज होती है, और वो आवाज कभी गलत नहीं होती।

6:28 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड चैनल 14.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं अर्पण उर्वशी के साथ। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास एक बीज है और हर बीज का अपना समय होता है, जो दिखता नहीं है फिर भी अंकुरित हो रहा होता है।

ताओ दर्शन कहता है कि जो टूटा है वही रिश्ता है, जो रिश्ता है वही बोता है, और जो बोता है वही जीवन देता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने का प्रयास करते रहें।

कहते हैं जीवन एक यज्ञ है, हर काम एक आहुति है। जब हम अपना हर काम, अपनी हर सांस ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो काम भी पूजा बन जाती है।

भरत के साथ आए अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म और विधाता को उत्तरदायी ठहराया। फिर राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से आई ब्राह्मण पत्नियों तथा गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, गंगा तथा गौरी की भांति उनका सम्मान किया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के चरणों से लिपट गए, ऐसे जैसे भिखारी को अपरिमित संपत्ति मिल गई हो। जब माता कौशल्या के सामने दोनों भाई नतमस्तक हुए तो उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत श्री राम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुंचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। सासुओं की उपस्थिति के कारण वो कुछ सहम सी गईं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। नई दिल्ली में 3 दिन के सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित अन्य देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान पर चर्चा में योगदान देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार

0: सरकार ने किया है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कल कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए $1,20,00,000 का जुर्माना लगाया है। ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बड़े बैंकों को भी कानून का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन पूरे अमरीकी वित्तीय तंत्र के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है। कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। इसके प्रभाव से 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांगो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों तक फैल चुका है। ये प्रकोप बंडी बुग्यो वायरस के कारण फैला है और इसका अभी तक कोई स्वीकृत टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नासुकी निदायरा को हराया। उनका अगला मुकाबला जर्मनी की यवोन ली से होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। डबल्स में पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपने अपनी चुनौती रखेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The Ministry of Culture will organize Brihattar Bharat, International Conference on Bharat's Cultural Connections Across the Globe in New Delhi from today. The 3-day conference will bring together delegates, ambassadors and scholars from 50 nations to deliberate on India's historical and contemporary cultural connections with the wider world. Prime Minister Narendra Modi will address the gathering through a special video message on the occasion. The first BIMSTEC Home Ministers meeting concluded in New Delhi with the adoption of Delhi Declaration. In the declaration, the BIMSTEC nations have strongly condemned terrorism and violent extremism conducive to terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. In the declaration, the

0: अभी आपने देवी भगवती के पावन रूप माँ कुष्मांडा के बारे में जाना। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पंकज मिश्रा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती।
1: विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आप

0: स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
3: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: नवरात्रों में हर तरफ भक्ति, उत्साह और सेलिब्रेशन का माहौल है। कहीं माता के दर्शन तो कहीं गरबा और डांडिया की तैयारी, लेकिन इस फेस्टिव मूड में अपनी सेफ्टी को बिल्कुल मत भूलिएगा। मंदिर जाएं या पंडाल, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, गाड़ी सही जगह पर पार्क करें, पैदल चलने वालों का भी ध्यान रखें और ट्रैफिक नियमों का ज़रूर पालन करें, क्योंकि त्यौहार की असली खुशी तभी है जब आप खुशी खुशी निकलें और सुरक्षित घर लौटें। तो ड्राइव सेफ। जय माता दी। आप हैं उर्वशी के साथ गोल्ड सुप्रभात में।

क्या खूब लिखा है पंजाबी जबान की समृद्ध विरासत को अपनी लेखनी में बड़ी ही सुंदरता से सहेजे। गायक सतिंदर सरताज ने कि इंसान को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना कोशिश के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। और जैसा कि पार्श्व में बज रहे इस सुंदर गाने के बोल भी हैं कि थकना या हारना इंसान

0: All our listeners, if you're just rolling out of bed or sitting in that bumper-to-bumper traffic on the road, well, welcome to Aaj Savere here on Akashwani Network, 100.1 MHz. Well, yes, we've got a fantastic morning. Me, Shagun Chopra and Mukesh, we've got a fantastic morning lined up for you. We have news updates every half, all of them, national and international news. We have Metro City updates, weather forecasts. There is so much to share with our listeners, right? Today, it's 14th of October, listeners. We will begin.
1: और मैं इसी में एक बात जोड़ना चाहूंगा शगुन, कि कोशिश से जुड़ा ही एक हिंदी में कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी, उनकी रचना इस संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक सी मुझे लगी, तो मैं उसके कुछ चंद लाइनें आपके सामने पेश करना
0: चाहूंगा। प्लीज गो अहेड मुकेश।
1: नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।
0: इट्स अमेजिंग
1: जी। तो कोशिश श्रोताओं आप करते रहें अपने सपनों के लिए, जैसा कि मैंने अभी बोला, अपने लिए और अपने लिए सिर्फ।
0: And you've inspired our listeners here in the morning itself, right? With those particular lines as well.
1: बिल्कुल। और कोशिश से जुड़ी कुछ इसी बात को यहीं विराम देते हुए अब नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। तो शगुन क्या है अब हमारे पास, आप बताइए।
0: सो First, it's about Brihattar Bharat.
1: जी.
0: So from India's rich cultural roots to its connections across the world, a major international conference will begin in New Delhi today. And you've guessed it, listeners, this is Brihattar Bharat.
1: जी.
0: So the Ministry of Culture is organizing Brihattar Bharat International Conference on Bharat's cultural connections across the globe. This three-day event will bring together delegates, ambassadors and scholars from 50 countries to discuss India's historical and contemporary cultural ties with the world. Prime Minister Narendra Modi will address the gathering through a special video message, while Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat will also participate.
1: जी, और जब बात शगुन संस्कृति की हो रही हो तो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को संभालना भी इस संदर्भ में उतना ही आवश्यक है।
0: That is true.
1: इस कड़ी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राष्ट्रीय संस्कृति कोष और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत कर्नाटक के हम्पी, आगरा के ताजमहल और केरलम के बैकल किले में संरक्षण और विकास से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इस पहल में सरकारी संस्थानों और कॉरपोरेट क्षेत्र की साझेदारी देखने को मिलेगी, ताकि देश की अनमोल विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी जा सके।
0: So from historic moments, let's turn to the natural treasures of Northeast India. Mizoram is inviting visitors to explore its lush forests and wildlife. State Tourism Minister Lal Ningho Lova Himar has highlighted Dampa Wildlife Sanctuary in Mamit district as an important habitat for the elusive clouded leopard there. And you can search on the internet as well, how does a clouded leopard look, if you don't already know, listeners. Speaking at the inauguration of the Mizoram Travel Fest in Aizawl, the minister said that the state aims to protect its rich forest cover while promoting tourism. He also encouraged residents to explore destinations beyond their own localities and showcase Mizoram's scenic, lesser-known places on social media. Mukesh.
1: Ji. प्रकृति की खूबसूरती हमें जीवन से जोड़ती है और एक स्वस्थ समाज के लिए नशे से दूरी भी उतनी ही आवश्यक है। इसी संदेश के साथ पुदुचेरी पुलिस ने राइड फॉर नेशन टू फाइट अगेंस्ट ड्रग्स नाम से मोटरसाइकिल रैली शुरू की है। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने गांधी प्रतिमा बीच रोड से रैली को रवाना किया। पुदुचेरी पुलिस के 5 जवान, जिनमें 2 महिला कर्मी भी शामिल हैं, 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए 28 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर पहुंचेंगे। वहां वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता परेड में हिस्सा लेंगे। इस रैली में करीब 250 पुलिस कर्मियों, 200 कॉलेज विद्यार्थियों और आम लोगों ने भाग लिया। इस दौरान नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई।
0: So that's social responsibility, and from that, let's move on to an opportunity for India's young talent. So young talent should listen to me intently. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has extended registration for the India Skills Competition 2026-27 until 19th of October. The decision follows requests from institutions and aspiring participants. The ministry said around 4 lakh registrations have already been received. Interest in the competition has grown following Team India's impressive performance at World Skills Shanghai 2026, where the country secured a place among the top 10. The team also interacted with Prime Minister Narendra Modi after the competition.
1: हुनर से विकास

0: की बात निकली है तो अब उन दफ्तरों की जहां से विकास की योजनाएं जमीन तक पहुंचती हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत एक दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का अभियान चला रहा है। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चल रहे इस अभियान के दौरान कार्यालयों की साफ सफाई, जगह का बेहतर इस्तेमाल और पुराने लंबित मामलों को जल्द निपटाने पर जोर दिया जाएगा। इसके गतिविधियां और ई कचरे के निपटारे जैसे काम भी किए जाएंगे।
1: मुकेश, फ्रॉम क्लीनर ऑफिसर्स नाउ वी मूव ऑन टू स्मार्टर पब्लिक सर्विसेज। जस्ट टू टेल आवर लिसनर्स अबाउट इट, टेक्नोलॉजी इज ओपनिंग अप न्यू पॉसिबिलिटीज। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर बिगिंस अ 2-day कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। दिस इज बिगिनिंग टुडे ऑन मेकिंग इंडियन पावर सेक्टर AI एनेबल्ड। दिस इवेंट एम्स टू एक्सप्लोर हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। एंड दिस कॉन्क्लेव विल फीचर एन एग्जीबिशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड अ स्पेशल यूथ सेशन ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन एंड ऑल्सो करियर अपॉर्चुनिटीज इन द पावर सेक्टर।
0: बिल्कुल, तकनीक की दुनिया से अब चलते हैं आस्था और परंपरा की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले स्मृति चिन्हों की 8वीं ई नीलामी में उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े 27 विशेष स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इनमें केदारनाथ धाम के 2 मॉडल, उकीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर का मॉडल और मुखबा के गंगा जी मंदिर का लकड़ी का मॉडल प्रमुख है। इस संग्रह में उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के हस्ताक्षर वाला रैकेट भी शामिल है। संस्कृति मंत्रालय ने नीलामी की अवधि बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी है। इच्छुक लोग pmmementos.gov.in पर जाकर पूरी सूची और भाग लेने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: Well, a development that could matter to shoppers and merchants during the festive season. Well, the National Payments Corporation of India, Mukesh, has announced that the merchant discount rate, or as we commonly know it, MDR, on select person-to-merchant UPI transactions will be implemented after Diwali. The exact date will be notified separately. The charges will apply to select merchant transactions above 2,000 rupees. However, person-to-person UPI transfers will continue to remain free regardless of the amount.
0: जी, और मुख्य समाचारों में शगुन, अब बात क्रिकेट की। तो भारत वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की इस श्रृंखला में 2-1 से आगे है। और अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का, तो शुरुआत करते हैं दिल्ली के समाचारों से। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डा से 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कई बस डिपो में EV चार्जिंग स्टेशनों का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। साथ ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पर निगरानी रखने वाले 13 मॉनिटरिंग स्टेशनों का भी उद्घाटन इस दौरान किया गया। इसके अलावा श्रोताओं, दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने धूल और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एंटी स्मॉग गन, पानी के छिड़काव और तेज धार से सफाई करने की व्यवस्था से लैस 12 नए बहुउद्देशीय ट्रक माउंटेड वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये बहुउद्देशीय ट्रक माउंटेड वाहन 7,000 लीटर क्षमता वाला पानी का एक टैंक है। एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर के अलावा इन वाहनों में छोटी ढकी हुई नालियों और पुलियों में होने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए जेटिंग व्यवस्था और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, सामान्य धुलाई और पानी के छिड़काव के लिए वॉशिंग गन भी उपलब्ध है। और दिल्ली नगर निगम द्वारा खतरनाक भवनों, अनाधिकृत निर्माणों और दिल्ली के मास्टर प्लान और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इस संबंध में निगम ने भवन निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर 23 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की और 7 संपत्तियों को सील किया है। अब चेन्नई की खबरें आप बताइए शगुन हमारे श्रोताओं को।
1: Well, the government has introduced a new security paper for Mi Seva certificates that does not tear easily and is not damaged by water. IT and Industries Minister Dudila Sridhar Babu launched the new paper at Praja Bhavan in Hyderabad yesterday. The new paper has 15 advanced security features. They are designed to stop fake certificates and unauthorized copies. For security reasons, the full details of these features are not being made public. So special security paper has been used for Mi Seva certificates since 2011. The new paper replaces it and will be especially useful for birth and death certificates and other long-term records.
0: Jee.

0: और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर ऋण माफी योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले पात्र 3,51,192 किसानों की तीसरी सूची जारी कर दी है। आधार प्रमाणीकरण के लिए अब तक कुल 24,67,000 किसानों के नाम प्रकाशित किए जा चुके हैं। पात्र किसान 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए फसल ऋण पर 2 लाख रुपए तक की माफी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने ऋण विवरण का सत्यापन करें और अपने निकटतम आपले सेवा केंद्र पर आधार प्रमाणीकरण का कार्य पूरा करें। इसके अलावा महाराष्ट्र में महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए एक विशेष केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस पहल से वित्त बाजार और व्यावसायिक सहायता तक पहुँच में सुधार होगा। महाराष्ट्र राज्य नवाचार सोसाइटी और उदयती फाउंडेशन ने महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए तंत्र को मजबूत करने और एक एस्केलरेटर कार्यक्रम विकसित करने के लिए एक समझौते पर इस संबंध में हस्ताक्षर भी किए हैं।
1: हेडिंग नाउ टू बेंगलुरु मुकेश। कर्नाटका विल कंडक्ट अ साइंटिफिक स्टडी ऑन शुगर केन हार्वेस्टिंग पीरियड्स एंड शुगर रिकवरी रेट्स टू इंश्योर फेयर पेमेंट्स टू द फार्मर्स। Sugar and Textiles Minister Rudra Palamani said that these findings would be submitted to a proposed central committee, and he also said government will also examine supervised weigh bridges, transparent recovery calculations, and the government will also examine alternative pricing methods to address farmers' concerns over cane payments.
0: जी, अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। तो राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री तापस रॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की रक्षा और आर्थिक विकास में हुई प्रगति की सराहना की है। कोलकाता में भारतीय वाणिज्य मंडल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही।
1: Well, we also have Hyderabad. The Telangana government has urged farmers to conserve water and energy due to the expected El Nino effect and possible rainfall shortages. El Nino effect, everybody is hearing about it every day almost.
0: Bilkul.
1: Deputy Chief Minister Mallu Bhatti Vikramarka said that available water must be prioritized for drinking and for cattle. Agriculture Minister Tummala Nageswara Rao advised farmers to avoid paddy and cotton this Yasangi season and grow short duration crops requiring less water. Seeds will be provided at subsidized rates. Actually, the government will set up state and district level control rooms with drinking water receiving top priority for the next 10 months.
0: बिल्कुल, ये जल संरक्षण से जुड़ी कितनी महत्वपूर्ण पहल है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और शगुन के साथ, और अब जानते हैं कि आज महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उधर अगर मुंबई की बात करें तो वहां आज आसमान साफ रहेगा। शहर में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर बात की जाए कोलकाता की तो आमतौर पर आज शहर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल शगुन से जानते हैं।
1: सो मुकेश, वी विल टेल आवर लिसनर्स अबाउट चेन्नई फर्स्ट। Chennai is likely to witness partly cloudy sky and there is possibility of moderate rain or even thunderstorm in Chennai. The temperatures are expected to range between minimum 27 degrees Celsius and maximum 35 degrees Celsius. If we talk about Bengaluru, Bengaluru will experience partly cloudy sky. The minimum temperature is expected to be 19 degrees while the maximum may reach 30 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see partly cloudy sky with haze. Temperatures are expected to range from 20 degrees Celsius to 34 degrees Celsius in Hyderabad.
0: जी, श्रोताओं, अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करने का। आज 14 अक्टूबर है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
1: Well, that is true, Mukesh. First, we are delving into the history and we'll begin with the year 1947.
0: बिल्कुल।
1: American test pilot Chuck Yeager made history by flying the experimental Bell X-1 rocket plane faster than the speed of sound, breaking the sound barrier for the first time in human history in 1947.
0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पर आज ही की तारीख को वर्ष 1956 में

0: ये घटना भारतीय इतिहास में सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनी। आम्बेडकर बौद्ध धर्म को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और मानवीय गरिमा के मूल्यों से जोड़ते हुए जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के विरुद्ध एक नई दिशा प्रस्तुत की। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक भारतीय दार्शनिक परंपरा है। इसे बुद्ध धर्म के नाम से भी अगर हम बात करें शगुन तो जाना जाता है,
1: बुद्धिज्म।
0: और इस धर्म के बारे में एक और खास बात कि दुनिया का सबसे बड़ा चौथा धर्म भी है। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र, जैसा कि अभी हमने सुना कि प्रसिद्ध त्रिरत्न या आदर्श वाक्य भी हम उसको कह सकते हैं, वो है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस सिद्धांत के अलावा भी अहिंसा, करुणा और कर्म सिद्धांत भी बौद्ध मत की प्रमुख शिक्षाएं हैं।
1: And this is very peaceful to listen to.
0: जी बिल्कुल।
1: Right? In 1964, American civil rights leader Martin Luther King Jr. was announced as a recipient of the Nobel Peace Prize for his non-violent struggle against racial inequality.
0: जी बिल्कुल। अभी आपने पीस की बात करी तो ये एक पीस से जुड़ा हुआ ये हिस्ट्री का एक सेगमेंट हमें याद आया। yeah. लेकिन इसके बाद बात करते हैं बरस 1982 की, जब आज ही की तारीख को भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए नई दिल्ली में ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौतों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे।
1: In 1994, leaders Yasser Arafat, Shimon Peres and Yitzhak Rabin were jointly awarded the Nobel Peace Prize. Again, peace comes up again.
0: जी बिल्कुल।
1: For their monumental diplomatic efforts to achieve peace.
0: बिल्कुल। इससे हम समझ सकते हैं कि जो ये शांति की जो भावना है उसका हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। आज जब मानव है वो इधर उधर भाग रहा है दौड़ धूप की जिंदगी में, उसको समझ ही
1: wars
0: नहीं
1: है।
0: बिल्कुल, वॉर्स हैपनिंग आप कह सकते हैं कि और क्लाइमेट चेंज भी कितना बड़ा मुद्दा है, तो वो भी कहीं ना कहीं मानसिक शांति पर एक आघात सा करता है।
1: And peace is imperative. So these were the diplomatic efforts to achieve peace in the Middle East through the Oslo Accords in the Middle East.
0: बिल्कुल। और 2012 में ऑस्ट्रियाई स्काईडाइवर फेलिक्स बामगॉर्टर ने समताप मंडल में 39 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगाकर बिना किसी यांत्रिक सहायता के ध्वनि की गति को पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ये तो बात हुई शगुन पीस की, लेकिन उसके साथ साथ में विज्ञान भी देखिए कितना प्रासंगिक होता है कि जब दोनों एक साथ चीजें जुड़ती हैं तो ये हमें पढ़ने में भी कितना मजा आ रहा
1: है। So much information we shared with them.
0: बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो आज पुण्यतिथि है शोभा नायडू की। उनका जन्म 1956 को अनकापल्ली विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में हुआ। वे भारत की प्रमुख कुचिपुड़ी नर्तकियों में से एक थीं। वो प्रसिद्ध स्वामी वंपापत्ती चिन्ना सत्यम की एक उत्कृष्ट शिष्या थीं। एक गुरु के रूप में हमेशा शोभा नायडू ने भारत और विदेशों के कई छात्रों को प्रशिक्षित किया। कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार और कई प्रतिष्ठित संगठनों से भी पुरस्कार प्राप्त हुए।
1: टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग ओम प्रकाश शर्मा,
0: जी
1: आल्सो नोन एज जन प्रिय लेखक,
0: बिल्कुल
1: फॉन्डली, एंड वन ऑफ द मोस्ट फॉरमोस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन इन हिंदी, एंड ही हैज मोर देन 450 हिंदी डिटेक्टिव नॉवल्स टू हिज क्रेडिट। ओम प्रकाश शर्मा रोट पॉपुलर डिटेक्टिव नॉवल्स, ही हैव द एक्यूमन ऑफ राइटिंग गुड क्वालिटी कंटेम्प्रेरी एंड हिस्टोरिकल लिटरेचर एज वेल एज पोएट्री। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एज वेल, एंड ही वॉज वेरी fond of Nirguni Bhajans, hymns, recital by Kumar Gandharv and many more Indian classical singers. We were telling you about Om Prakash Sharma, Janpriya Lekhak.
0: बिल्कुल। उनकी एक अगर हम लाइन की बात करें तो जीवन और संवाद के विचार पर जो उनकी एक लाइन है कि फिल्मी दुनिया के कर्ता धरता नर्म दूब ही चरना जानते हैं, वरना आधा गांव लिखने वाला लेखक क्यों कर, महज संवाद लिखने वाला लेखक ही बनकर रह जाता। तो कितनी खूबसूरत बात कही है ओम प्रकाश शर्मा ने।
1: वेरी ब्यूटीफुल।
0: इसके अलावा श्रोताओं आज पुण्यतिथि है दत्तोपंत ठेंगड़ी की। उनका जन्म 10 नवंबर 1920

0: आरवी जिला वर्धा महाराष्ट्र में हुआ। वे भारत के राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता और भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने 26 हिंदी, 12 अंग्रेजी और 2 मराठी पुस्तकों का लेखन कार्य भी संपन्न किया है। उनकी ये पुस्तकें उनके राष्ट्र कार्य की मनोगाथा हैं।
1: Today we'll also tell you about Shahid Parvez Khan, the classical sitar maestro, and he represents the 7th generation of the Itawa Gharana as its primary exponent. He's praised especially for the vocalistic phrasing and quality of his rag improvisations, which is known as Gaikiyang, which you may be listening in the background as well. And this translates to actually singing branch or limb. And the sitar legend, Ustad Vilayat Khan, resurrected and reintroduced Gaikiyang as a widely accepted sitar genre in India and abroad. And his nephew then, Ustad Shahid Parvez Khan, has carried this torch into the present day.
0: श्रोताओं, आज ही जयंती है सितार की दुनिया के एक और महारथी निखिल रंजन बनर्जी की भी। निखिल रंजन बनर्जी को सितार बजाना इनके पिता जितेंद्रनाथ बनर्जी ने सिखाया। इनके बारे में खास बात यह है कि इन्होंने आकाशवाणी के लिए भी खूब अपने सितार की आवाज़ दी। मुख्यतः निखिल बनर्जी उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अकबर अली खां से भी शिक्षा प्राप्त की। 20वीं सदी में भारत के प्रमुख सितार वादकों में से उनको एक माना जाता है।
1: Well, today we're also remembering legendary singer, comedian and actor Bing Crosby. Well, Harry Lillis Bing Crosby Jr. Crosby was a leader in record sales and radio ratings and motion pictures grosses from 1931 to 1954. He made over 70 feature films and sold over 500 million albums, on which were recorded more than 1,000.

0: गीत को उगते हुए सूरज सरीखे छंद दो, शौर्य को फिर शत्रु की हुंकार का अनुबंध दो। प्राण रहते तो ना देंगे भूमि तिल भर देश की, फिर भुजाओं को नए संकल्प रक्षा बंध दो। ये काव्य रचना है श्रोताओं शैलेश मटियानी की। आज शैलेश जी की जयंती है। शैलेश मटियानी का मूल नाम रमेश चंद्र मटियानी था, लेकिन उन्हें ख्याति जो है शैलेश मटियानी के नाम से ही प्राप्त हुई। उनका जन्म उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के बाड़ेचीना नामक गांव में 14 अक्टूबर 1931 को हुआ। शैलेश हिंदी साहित्य जगत में कहानी विधा के अग्रणी कथाकार थे। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। जनकवि बाबा नागार्जुन उन्हें हिंदी का गोरकी कहकर संबोधित करते थे। 1950 से ही उन्होंने कविताएं और कहानियां लिखना शुरू की। शुरू में रमेश मटियानी शैलेश नाम से लिखते थे। उनकी आरंभिक कहानियों की अगर हम बात करें तो रंगमहल और अमर कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। उन्होंने बोरीवली से बोरीबंदर तक मुठभेड़ जैसे उपन्यास, चील, अर्धांगिनी जैसी कहानियों के साथ ही अनेक निबंध तथा प्रेरणादायक संस्मरण भी लिखे।
1: Today we'll also tell you about Cliff Richard. Cliff Richard, the singer and actor, Richard was originally marketed as a rock and roll singer in the style of Presley. And with his backing group, The Shadows, he dominated the scene in the pre-Beatles period of the late 1950s to early 1960s.

आज पुण्यतिथि है भारतीय सिनेमा के पहले अभिनेता गायक वजीर मोहम्मद खान की। सिनेमा की शुरुआत में जब फिल्मों में सिर्फ इशारों और इमोशंस के माध्यम से कहानी कही जाती थी, तब एक ऐसा दौर आया जिसने इस खामोशी को तोड़ा। उस दौर में एक ऐसी फिल्म आई जिसने फिल्मों में ना सिर्फ आवाज दी बल्कि संगीत भी दिया। आज हम आपको बॉलीवुड के सबसे पहले गाने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हिंदी सिनेमा में गानों और म्यूजिक की नींव रखी। आपने भी इस गाने को श्रोताओं कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। हम यहाँ 1931 में आई फिल्म आलम आरा के गाने दे दे खुदा के नाम पर प्यारे की बात कर रहे हैं, जिसको भारतीय सिनेमा का सबसे पहला फिल्मी गाना माना जाता है। करीब 94 साल पहले बना ये गाना आज भी लोगों के दिलों में रचा बसा हुआ है।

0: दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है घर लेने की ले ले। दे
1: दिन के शोर शराबे से बचने के लिए दे दे खुदा पे नाम पे जो गाना आप सुन रहे हैं अभी पार्श्व में, किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि रात के समय सड़कों पर रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें तो ऐसी कुछ सुविधाएं ही नहीं थी जिनके माध्यम से रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से गाने को रिकॉर्ड किया जाए। और इस फिल्म में वजीर मोहम्मद खान ने एक फकीर की भूमिका निभाई और खुद ही इस गाने को अपनी आवाज से सजाया।
2: हाउ ग्रेट
1: जी।
2: So, listeners, today we're also remembering Freddie Fender, the country singer and songwriter. We know him for his work as a solo artist and in the groups as well. His signature sound fused country, rock, swamp pop and Tex-Mex styles, and he was active since the 1950s.

0: Well, he recorded further country hits such as Wasted Days and Wasted Nights and You Lose a Good Thing, Living It Down, and they are also very famous. The Rains came as well.
1: Ever start, I'll be there before the next.
2: श्रोताओं, अब चलते चलते आज का सुविचार कि कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे बनते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से देखता है। तो इसी सद्विचार के साथ दीजिए मुकेश और शगुन चोपड़ा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
0: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।
2: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध।
1: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान

0: कल्याण से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था की स्थापना आज ही के दिन 1926 में कोलकाता में भारतीय विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा की गई थी, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े थे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की दो दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
2: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
5: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान

0: ध्यान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
2: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहां बुनियादी सुविधाएं पहुंची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खंबात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीनफील्ड सिटी है जहां कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुंचाई गई है। धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
2: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
4: धोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
2: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धोलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यवोन ली से होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: ACP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और

0: चलाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, UPI पर शुल्क दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। SIR के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह ना मिले। पत्र ने दिया है, चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग, विदेश मंत्रालय ने कहा, पेचिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, AI से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट JEE की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास AI ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
1: राइजिंग फ्रॉम हिस्टोरिक मैरिटाइम रूट्स टू पायोनियर इंडियाज हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर, धोलेरा स्टैंड्स एज अ शाइनिंग टेस्टामेंट टू द विजनरी प्लानिंग एंड विकसित भारत। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी न्यूज, अहमदाबाद।
2: In men's cricket, India will face the West Indies in the fourth T20 International in Hyderabad today. The match will begin at 7 p.m. IST. India lead the five-match series 2-1 after defeating West Indies by 14 runs in the third T20I in Indore last Sunday. In badminton, Tanvi Sharma and Kidambi Srikanth progressed to the second round of the Denmark Open 2026 after securing hard-fought victories in their opening matches. Tanvi defeated Japan's Natsuki Nadiara 2-1 in a thrilling three-game contest. She will now face German player Yuvin Lee. On the other hand, Kidambi Srikanth defeated French badminton player Arnaud Mahla 2-0 and will now face Alex Lanier in the round of 16. PV Sindhu bowed out after a close battle against Yuvin Lee of Germany. Lakshya Sen also exited in the first round. India's doubles campaign will begin today with Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty and Tressa Jolly Gayatri Gopichand in action in the men's and women's draws. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
3: Thank you, Pramod. India, a trusted partner in weaponized world, says PM Modi, headlines the Hindustan Times. Asian Age headlines, power to empower, key to India's rise, says Modi. Most papers report on the story of Amit Shah hitting out at the opposition, saying the NDA will return to power with a resounding victory in 2029. The Tribune says, nation is watching Rahul trying to save infiltrators and his vote bank, says Shah. Most papers also report on Nandan Nilekani speaking about question paper leaks at the Bloomberg New Economy Forum 2026 in Delhi. The Hindu says, generate questions at last minute to prevent paper leaks, says Nilekani. While the Times of India in a story says, last minute paper generation can kill incentive to leak, says Nilekani. And finally, a story in the Statesman says, 10 to 5 job, desk and a laptop, once a feared Maoist, now university official. The paper adds that 70-year-old M. Venugopal, carrying a bounty of 6 crores on his head, left the Maoist top ranks and walked out to surrender exactly a year ago. And with that, it's back to you, Pramod.
2: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to address Brihattar Bharat International Conference in New Delhi today through video message. BIMSTEC nations strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. External Affairs Minister S. Jayashankar says India-US trade talks are heading in the right direction and a deal is being ironed out. U.S. Secretary of State Marco Rubio to visit India next week to strengthen energy cooperation and strategic partnership. 13 people killed in boat tragedy in Raghupur Diara area of Vaishali district in Bihar. And in cricket, 4th T20 International between India and the West Indies to be played in Hyderabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो वसीले से 73 भारत बैन-उल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। बिम्स्टेक मुल्कों ने सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी समेत हर किस्म की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्ती से मजम्मत की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमरीका तजारती बातचीत सही सिमत में आगे बढ़ रही है और जल्द ही एक समझौता होने वाला है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे, जिसका मकसद तवानाई से मुतालिक तआवुन और दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है। बिहार के वैशाली जिले के राघवपुर दियारा इलाके में कश्ती के एक हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए। और क्रिकेट में चौथा टी20 बैन अलावामी मैच आज शाम हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सकावत की वजारत आज से नई दिल्ली में 73 भारत बैन अलावामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी, जिसका मौजू है दुनिया भर में भारत की सकाफती राबते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर एक खसूसी वीडियो पैगाम के जरिए इज्तिमा से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
5: इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 50 मुल्कों के मंदूबीन, सफीर और दानिश्वर एक जा होंगे

0: के साथ अपने अख्तिताम को पहुंची। ऐलामिये में बिम्स्टेक मुल्कों ने सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी समेत हर किस्म की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्ती से मजम्मत की। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ऐलामिये में बिम्स्टेक मुल्कों ने अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर और बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक दहशतगर्दी के लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और एक जामे और मुस्तकिल अंदाज में उससे लड़ने के अपने अज़्म को दोहराया। उन्होंने एक मरबूत महफूज और मजबूत तरक्की याफ्ता और खुशहाल बिम्स्टेक खित्ते को हकीकत की शक्ल देने के इलाकाई ताउन के अपने अज़्म को भी दोहराया। उन्होंने रुकन ममालिक में दहशतगर्दाना हमलों के मुतासिरीन और उनके कुनबे के अफराद निज मुतासिर मुल्कों की हुकूमतों के साथ गहरी ताज़ियत और यकानकद का भी इजहार किया। इन मुल्कों ने घरेलू और बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए कहा। दिल्ली ऐलामिये में इंसानों और कीमियावी मादे जिनसे नशा आवर अशिया तैयार की जाती हैं इस काले धन को जायज़ बनाने की रोकथाम के मैदानों में कतई लाहे अमल पर मौसर अमल दरामद के लिए भी कहा। यशस्वी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हममनसब मार्क कार्ने ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में तेज़ी लाने और दिफाई शराकत दारी के अहम मैदानों में ठोस नतायज की जानिब काम करने से इतफाक किया है। इन मैदानों में तिजारत, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और आवाम से आवाम के दरमियान राबते शामिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोन पर गर्मजोशी के साथ नतीजा खैज बातचीत की। जनाब मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और कनाडा मजीद मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया की जानिब मिलकर ताउन दे रहे हैं। इस दौरान कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद कल शाम भारत के दो रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। अपने दौरे में आज वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और हुनरमंदी के फरोग व कारोबार के वजीर जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमरीका तजारती मुजाकरात सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और किसी समझौते पर पहुंचने का इम्कान है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए जनाब जयशंकर ने बताया कि दोनों मुल्कों के वुज़राए तिजारत इस पर काम कर रहे हैं और दोनों ममालिक तिजारती समझौते से मुतालिक मुजाकिरात में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिका ने खुद को रीपोजिशन किया है और हर मुल्क को अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा नई शक्ल देना होगी। उन्होंने वाज़े किया कि भारत की अमेरिका के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक साझेदारी है। चीन के बारे में वजीर खारजा ने कहा कि सरहदी इलाकों में अमन इस्तेहकाम में खलल पड़ने के असरात दो तरफा ताल्लुकात पर भी पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों में अमन की वजह से ताल्लुकात मामूल पर आ रहे हैं। जनाब जयशंकर ने मजीद कहा कि भारत और चीन सरहदी इलाकों में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने वाज़े किया कि भारत और चीन के दरमियान तजारती तवाज़ुन झुक गया है और बिल्कुल यकतरफा हो गया है। जनाब जयशंकर ने वजाहत की कि भारत को चीन के साथ मुसाबिकती सतह नहीं मिल रही है। रूस पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने वाज़े किया कि भारत को कभी इस बात का सामना नहीं करना पड़ा कि रूस से खरीदी गई अशिया चीनी टेक्नोलॉजी से लैस हैं। नई दिल्ली से पायल शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई से मुतालिक तावुन और दिफाई शराकत दारी को मुस्तहकम बनाना है। अमरीकी महकमा खारजा ने बताया कि जनाब रूबियो अपने दौरे में मुंबई और जामनगर भी जाएंगे। महकमे ने बताया कि वो भारत अमरीका दिफाई शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने, इलाकाई और आलमी हालात व वाकयात पर तबादला ख्याल करने और तवानाई से मुतालिक मजीद तावुन के मंजरनामे पर बातचीत के लिए सीनियर सरकारी अफसरान से मुलाकात करेंगे। जनाब रूबियो सरमाए और इक्तसादी तावुन में इजाफे के लिए सरकर्दा ताजिरों से भी मुलाकात करेंगे। जनाब रूबियो का मई से लेकर अब तक भारत का ये दूसरा दौरा है जब उन्होंने नई दिल्ली में क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत की थी जिसका अहतमाम वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बिहार के वैशाली जिले के राघवपुर दियारा में कल रात एक कश्ती डूबने के हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। वैशाली की जिला मजिस्ट्रेट वर्षा सिंह ने नामा निगारों को बताया कि राघोपुर में गंगा नदी में कश्ती के डूबने में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोगों को बचा लिया गया है। जान गंवाने वालों में ज्यादातर नाबालिग बच्चे हैं जो एक दावत में शिरकत के लिए कश्ती से सफर कर रहे थे। हादसे के वक्त कश्ती पर 15 से 20 अफराद सवार थे। 7 अफराद को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे में मरने वालों के अहल खाना के लिए 2-2 लाख रुपये और जख्मियों के लिए फीकस 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। बिहार के वजीराला सम्राट चौधरी ने हादसे में

0: मरने वालों के तई ताजियत का इजहार किया है और जान गंवाने वालों के अहले खाना के लिए फीकस 4 लाख रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। कोलकाता में जैसे कि दुर्गा पूजा अपने उरूज की जानिब बढ़ रही है, इस त्यौहार में मजीद जोश व खरोश आता जा रहा है। आज चतुर्थी है, इस दौरान रंग बिरंगे पेंडॉल लगाए गए हैं जिनमें रंग बिरंगी रोशनियों का इस्तेमाल किया गया है। पेंडॉलों को खतई शक्ल दी जा रही है। बंगाली अफराद के लिए दुर्गा पूजा एक त्यौहार से बढ़कर होती है। ये वक्त खुशी मनाने और रिवायती तौर पर यकजा होने का बड़ा मौका होता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने 2 रोज़ा आंध्र प्रदेश दौरे पर आज विजयवाड़ा पहुंचेंगी। सदर जमहूरिया कल कौमी सरस मेला 2026 का इफ्तिताह करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सदर जमहूरिया आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा करेंगी। वो कल विजयवाड़ा में कौमी सरस मेला 2026 का इफ्तिताह करेंगी। इस मेले का इनकाद देही तरक्यात की मरकजी वजारत हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानब से मुश्तरक तौर पर किया जा रहा है। मेले में 36 से ज़्यादा रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अपनी मदद आप ग्रुपों की 1500 से ज़्यादा खातून अराकीन हिस्सा ले रही हैं। सरस मेला 2026 खवातीन कारोबारियों को उनके रिवायती क्राफ्ट की नुमाइश करने और उसे वसी तर बाजार रसाई के जरिए मुल्क भर में सारिफिन को फरोख्त करने की मदद करता है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के सिमत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज़ के तहत आज इस बात का तज़किरा किया जा रहा है के ढोलेरा जैसे खसूसी सरमायाकारी के इलाज जैसे मंसूबों के जरिए इस नज़रिए को किस तरह अमली शक्ल दी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज़्यादातर सनती शहरों में पहले वसत पैदा होती है और बाद में ये समरते हैं। ढोलेरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नए विजन खम्बात की खलीज पर एक बिल्कुल नया स्मार्ट सिटी, जहाँ हर प्लॉट फरोख्त होने से पहले सड़कें, पानी, बिजली और इंटरनेट दस्तियाब हों। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैक्ट्री भी ढोलेरा में ही कायम की जा रही है। ढोलेरा के जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग मरकज बनने से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा था,
3: हमें ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। ढोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल और विजन लॉन्ग टर्म है।
2: गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने ढोलेरा स्मार्ट सिटी और उसके तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे पर रोशनी डालते हुए कहा,
4: ढोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही हैं और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में ढोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
2: एक तारीखी आबी रास्ते से लेकर भारत के जदीद टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग मुस्तकबिल बनने तक ढोलेरा में दूरंदेशी पर मबनी मंसूबाबंदी और विकसित भारत की अक्कासी होती है। अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मगरबी बंगाल सरकार ने मदरसा सर्विस कमीशन को स्कूल सर्विस कमीशन में जम कर दिया है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन कल जारी किया गया। रियासती काबीना ने इस फैसले को 5 अक्टूबर को मंजूरी दी थी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कुछ ही दिन पहले ऐलान किया था के मदरसे में आइंदा सभी तकरर स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए किए जाएंगे। अकलियती उमूर के वजीर खुदीराम टुडू ने कहा कि इस कदम का मकसद मदरसों में तालीम की मुमताज शिनाख्त का तहफ्फुज़ करते हुए और होनहार उम्मीदवारों के लिए बेहतर मौके फराहम करते हुए असातिज़ा की शफाफ और गैर जानिबदाराना भर्ती को यकीनी बनाना है। किसी शख्स से कारोबारी को मखसूस लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR दिवाली के बाद नाफिज होगा। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर अदायगियों से मुतालिक भारतीय कौमी कॉरपोरेशन ने कहा कि UPI और खिदमात से मुतालिक कायमा कमेटी ने यह फैसला किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यमन की हूसी बागियों को सऊदी अरब पर हमलों से खबरदार करते हुए कहा है कि वो यमन से मुतालिक कोशिशों में तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान की शमूलियत की कोशिश कर सकते हैं। تاہم ٹرمپ نے اس بات کی

0: जिख से इनकार कर दिया कि क्या उन्होंने हूसियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई का कोई फैसला किया है। अमरीकी सदर ने ईरान को नाकाम मुल्क करार देते हुए कहा कि वाशिंगटन जल्द ही अपने अगले कदम का फैसला करेगा। खेलों की वजारत ने पैरा निशानेबाजी कोच जयप्रकाश नौटियाल को पैरा एशियन गेम्स के भारतीय दस्ते के कोच के ओहदे से हटा दिया है। नौटियाल पर सिलेक्शन बेजाबतगियों का इल्ज़ाम है और उनके खिलाफ जांच का मुतालबा किया जा रहा है। मर्दों के क्रिकेट में आज हैदराबाद में चौथे टी20 बैन अवी मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबार ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस बयान को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेकर चलना 21वीं सदी का तकाजा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दूसरों की किस्मत पर आगे बढ़ने के बजाय सभी को साथ लेकर तरक्की करने पर यकीन रखता है। अखबार ने सऊदी अरब और यमन के हौसी बागियों के दरमियान बढ़ती कशीदगी के मद्देनजर भारतीय सफारतखाने की जानिब से जारी एडवाइजरी को भी अहमियत के साथ शाये किया है। भारतीय शहरियों से कहा गया है कि वो एहतियात बरतें, घरों में रहें और मकामी हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। रोजनामा प्रताप ने इत्तलात और नशियात के मरकजी वजीर वजीर ममलकत एल मुरुगन की जानिब से वजारती ओहदे और राज्यसभा रुकनियत से इस्तीफा देने की खबर को नुमाया जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो वसीले से 73 भारत बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। बिम्स्टेक मुल्कों ने सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी समेत हर किस्म की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्ती से मजम्मत की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमरीका तजारती बातचीत सही सिमत में आगे बढ़ रही है और जल्द ही एक समझौता होने वाला है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे जिसका मकसद तवानाई से मुतालिक तावन और दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है। बिहार में वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कश्ती के एक हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए। और क्रिकेट में चौथा टी20 बैन अल-अक़वामी मैच आज शाम हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।

कभी सोचा है आपने कि आपका मोबाइल चार्जर हो या गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स, सबके पीछे कुछ कॉमन रूल जरूर होते हैं ताकि चीजें सेफ भी रहें और एक दूसरे के साथ सही से काम भी करती रहें। इन्हीं कॉमन रूल्स की अहमियत बताता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, जो कि आज के दिन माना जाता है, 14 अक्टूबर को ये मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। दुनिया में सिर्फ नया होना ही ज़रूरी नहीं, काफ़ी नहीं, सही और सुरक्षित होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल ट्रैफिक रूल के साथ साथ हमें भी फॉलो कीजिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर। आप है म्यूज़िकल दिल्लगी में उर्वशी के साथ।

0: यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्री अन्न यानी बाजरा, ज्वार, चौलाई आदि सुपाच्य, सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक है। बच्चों के आहार में बाजरे को शामिल करने से कमजोरी और दुबलेपन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
1: LIC लाया है एक नया प्लान, नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान। एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
0: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट। LIC नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC हर पल आपके साथ।
2: आठ बजकर 53 मिनट और 10 सेकंड हो चुके हैं और आपने अपने चारों तरफ देखा होगा अगर बाहर निकले होंगे शाम को स्पेशली, कि एक तरफ तो LED की चमक है, शानदार साउंड इफेक्ट्स हैं और दूसरी तरफ वही सदियों पुरानी कहानी जिससे हमारा बचपन जुड़ा हुआ है। दिल्ली NCR में रामलीला की रौनक छाई हुई है। 8 से 21 अक्टूबर तक चलने वाले हैं इवेंट्स। लेकिन जरा सोचिए कि हर साल कहानी वही होती है, राम भी वही है, रावण भी वही है, पर फिर भी इसे देखने का क्रेज जो है ना वो बिल्कुल कम नहीं होता। शायद इसलिए क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, हर पीढ़ी उन्हें अपने अंदाज में जीती है। तो फेस्टिव सीजन को एंजॉय कीजिए ट्रैफिक और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए।
3: क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम की एक प्रक्रिया है? दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, पूरा दिन रहे ऊर्जावान।
4: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, आगे आगे चलते रहिए, ऐसे ही ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करते रहिए और दिन महीने साल ऐसे ही चलते जा रहे हैं, हमें भी उन्हीं के साथ चलना है, उन्हीं में इन्हीं पलों में जिंदगी को ढूंढना है, उन्हें जीना है, अपने अपनों के साथ इन त्योहारों में इन त्योहारों का खूब लुत्फ उठाइए, लेकिन अपना साथ में ध्यान भी रखिएगा। फिलहाल अब मैं चलती हूँ म्यूजिकल दिल लगी से, बस यहीं तक का सफर था आपके साथ, जुड़े रहिए FM गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन का विषय भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध है।
1: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा पहुंचेंगे। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृहमंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
2: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और फिलहाल व्यापार समझौते को अंतिम

रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। चीन के संबंध में विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। तन्वी का अगला मुकाबला जर्मनी की यवोन ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराया और दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर का सामना करेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं सार्वजनिक सेवा के, 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बंदरगाह, समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत लंबा है, 11,099 किलोमीटर के करीब का, और जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी भी लंबाई 14,500 किलोमीटर के करीब है, और 95% भारत का जो ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम रूट से आवाजाही उसकी होती है। तो इसलिए बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन आज जलेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। तो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, कॉमोडोर केडी जोशी जो है डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो है स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: कॉमोडोर जोशी, बंदरगाहों का जो विकास गुजरात में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है भारत में वो गुजरात में ही है, 2340 किलोमीटर। सो जिस तरह से वहां की सरकार ने ये रियलाइज किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल पूरे भारत में, पूरी जो कोस्ट लाइन है वहां पर भी सफल रहा है?
3: आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोच का कदम माना जाएगा, क्योंकि जब तक देश के सारे विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, इंडस्ट्रियल हाउसेस कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, ये सारे एक साथ अगर आएंगे और पूरे देश का चौतरफा उन्नति की दिशा में अपना अनुदान देंगे, तभी देश में मेरे ख्याल से एक उन्नति ठीक से हो पाएगी। और अगर आप देखें तो सरकार ने जो 2-4 साल पहले, मेरे ख्याल से 2020 के आसपास, एक फाइनेंशियल शिप बिल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल लॉन्च किया था, तो वो भी सरकार की तरफ से एक कदम है कि ईज ऑफ बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि अगर आपको किसी को शिप बिल्डिंग में जाना है, किसी को मैरिटाइम रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक कॉरपोरेशन है जिससे आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी।
1: जी, सो प्रोफेसर मिश्रा, जैसे कॉमोडोर जोशी ने बताया कि पूरी तरह से सरकार ने एक बढ़ावा दिया है निजी क्षेत्र को, पोर्ट्स के जो सेक्टर है उसमें उतरने के लिए, हमारे अब 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से भी अतिरिक्त पोर्ट्स हैं। आप हमें बताएं कि ये जो एक बल दिया गया है बंदरगाहों के विकास पर, समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, कैसे देखते हैं आप इसको, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए?
2: भारत में आर्थिक विकास की जो गति है और आर्थिक हमारी जो हर साल की जो सालाना हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की जो परसेंटेज है, वो कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने पिछले 2 दशकों में, खासतौर से पिछले 12 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कॉमोडोर जोशी ने कहा, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा है कि सरकार का रोल एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है। एक ऐसा एनवायरनमेंट तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए और आम इंसान के लिए भी, ऐसा एनवायरनमेंट सामने रखना जिसमें कि वो अपनी जो उनकी क्षमताएं उनका विकास कर सकें। तो सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए किसी भी देश की या राज्य की सरकार व्यापार में सीधे तौर पर नहीं उतरती है, अगर वो एक कम्युनिस्ट सरकार ना हो तो, ऐसा जो वातावरण बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उतरना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है और भारत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस उभर रही है और उनका व्यापार बढ़ रहा है दुनिया के तमाम कोनों से, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बहुत आवश्यक थी। और भारत के, जैसा आपने कहा कि भारत के बड़े जो बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह हैं, लेकिन 200 छोटे बंदरगाह भी हैं। इनको कैसे पूरी तरह से समेकित रूप से इनका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि जो भारत का जो मैरिटाइम विजन 2030 है या मैरिटाइम अमृतकाल 2047 है, उसको ध्यान में रखते हुए एक समग्र और समेकित विकास की आवश्यकता रही है, और उसके विकास के लिए ही मुझे लगता है बंदरगाह से जुड़ा हुआ है या पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो आवश्यक एक जरूरत थी और वो पूरी तरह से निखर के आ रही है सामने। दूसरा एक बड़ा पहलू है कि भारत के जो बंदरगाह हैं, हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं और पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, दोनों में पहला तो पूर्व और पश्चिम के बंदरगाहों के बीच में क्षमता को लेकर के और उनका जो व्यापार है, एक जो टनेज का टर्नओवर है, उसको ध्यान में रखते हुए ही पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। पश्चिम के पोर्ट बहुत विकसित है और मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर बहुत ज्यादा लोड था, और इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो नए बंदरगाहों का अपग्रेडेशन हो रहा है वो बहुत आवश्यक था। इसमें पूर्व और दक्षिण के बंदरगाहों पर भी काफी व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की विकास की गति को सामने रखते हुए इन बंदरगाहों के विकास पर भी काम होगा और तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आ पाएगा।
1: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट पोर्ट्स भी बहुत मेजर हो गए हैं। अगर हम देखें पीपावाव या हजीरा या मुंद्रा अब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पोर्ट है भारत में, और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 1561 MTPA मिलियन टन पर एनम था, और अब वो बढ़कर 2817 पर पहुंच गया है, और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो भी 96 घंटों से कम होकर 49 घंटे आ गया है। आप हमें बता सकते हैं कॉमोडोर जोशी की जो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको गति देता है?
3: आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्न अराउंड टाइम अभी थोड़ा और भी शायद कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सरकार का बेसिक अगर आप एक उद्देश्य मान लें कि टर्न अराउंड टाइम कम करने से पोर्ट में ज्यादा जहाज आएंगे, ज्यादा माल की ढुलाई होगी, ज्यादा माल उन पे लोड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो काम होता है

0: उससे कोर्ट का जो टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे दो दो तीन तीन दिन एक पोर्ट में, ये रहते थे, सामान की आवाजाही हो रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं, तो ये दो तीन दिन का टाइम लगता था। तो अभी अगर जैसे आपने बताया कि ये समय बहुत कम हो गया है, तो उस हिसाब से अगर देखें, दैट मीन अगर एक दिन में ये काम हो रहा है, तो ये पहले 3 दिन में होता था, अभी एक दिन में तीन जहाज निकल गए, पहले एक ही जहाज निकलता 3 दिन में। तो उस हिसाब से टर्नओवर पर शिप अगर देखें तो 3 टाइम्स हो गया है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा जो आर्थिक अपनी जो गति है देश की, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक पैमाना है, टर्नओवर टाइम कितना है और इसको कौन देखता है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड बैंक का ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स है,
1: जी
0: वो ये सारे मेजर करके ये देखते हैं कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस चल रही है इन सब चीजों में।
1: जी
0: एक ये पैमाना, उसके अलावा बहुत भी होंगे। अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट इंडेक्स आया हुआ है, उसमें टॉप 30 में हमारे तीन पोर्ट्स आ रहे हैं। जैसे आपने सही बोला, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ये
1: जी
0: तीन पोर्ट टॉप 30 में भारत के हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा देश के लिए ये एक गर्व करने की बात है कि ये हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी।
1: जी बिल्कुल। इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की या जो लॉजिस्टिक्स है समुद्री यातायात, तो उसमें कौन कौन से ऐसा कार्गो है जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है, हमारे देश के लिए, जो समुद्री जो रास्ते हैं उनसे वो उसकी आवाजाही होती है और जिसके कारण ये जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर इतना बल दे रही है सरकार?
2: यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है
1: जी।
2: हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, कि भारत का और दुनिया का अधिकतम व्यापार 90-95% से ज्यादा व्यापार वो शिपिंग रूट से ही होता है, समुद्री जहाजों से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उससे ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। इस बात को हम ध्यान रखें। पहली चीज ये है कि जितना तेल और गैस का व्यापार होता है वो सारा व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से होता है, जितना हैवी कार्गो जाता है वो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से जाता है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात भी समुद्री क्षेत्र से होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समुद्री यातायात की जो ये जो लाइफ लाइन्स हैं इनको अगर रोक दिया जाए तो दुनिया में व्यापार ही नहीं, दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में हमने ये बात देखी कि जब वहां से जहाजों का आवागमन रुका या उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा, तो दुनिया के तमाम देश, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा संकट हो गया। भारत ने इस संकट को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया के तमाम देशों पर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपने को बहुत ही स्वावलंबी मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके लिए भी यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। तो इसलिए कार्गो के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आयरन और स्टील जैसी चीजें, रबड़ जैसी चीजें जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं या जो सामान उनके आम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं उनकी भी, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, उसका एक सस्टेनेबल रहना और उसकी जो जनता है, उसके जो नागरिक हैं, उन लोगों का जीवन भी सुगम रूप से चले, इस सभी के लिए मैरिटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है।
1: और कॉमोडोर जोशी, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, एक आम नागरिक के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए भी ये जो समुद्री कारोबार है कितना जरूरी है। अगर हम मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप नेवी में रहे हैं तो आप बता सकते हैं हमें कि इसी संदर्भ में ये जो आवाजाही भी सुगम रूप से बनी रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हर देश के लिए और खासकर अब जब भारत की बात कर रहे हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
0: आपने एक जो एक पॉइंट निकाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आज से नहीं, पिछले 15-16 साल से जब ये दुनिया में जब इनका हुतीज जो थे या यहाँ पे जो हाईजेक हो रहे थे जहाज, और उनसे रैंसम मांगी जाती थी और पूरा का पूरा जहाज बोर्ड कर लिया जाता था, और समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो आते थे एंड अभी भी आते हैं, और उसके कारण 2008 के करीब से भारतीय नौसेना ने इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू की थी, और वो पूरा का पूरा जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये मिडल ईस्ट के, उसमें बहुत सारे देशों का एक कंसोर्टियम टाइप आप कह सकते हैं, उनके सारे जहाज अपने अपने वहां पे पेट्रोलिंग करते थे, टर्न बाय टर्न आते थे और काफी अच्छी पेट्रोलिंग के कारण ये जो समुद्री लुटेरे आते थे उनका जो

0: इवेंट्स थे, इंसिडेंट थे सारे, बहुत कम हो गए। अभी अगर आप देखें ये क्यों हुआ ये सारा, जब तक आपके पास नौसेना का बल नहीं है, आप अपने सी लेन्स जो समुद्री रस्ते हैं, समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए जो रस्ते बने हुए हैं, वो आप सिक्योर नहीं कर सकते, वो खुले पड़े रहेंगे। कोई भी आएगा रस्ते पे आपके जहाजों को वो लेके जाएगा, रैंसम मांगेगा या जो भी करेगा आगे। वो सिक्योर तभी हो सकते हैं जब नौसेना के जहाज उन सी लेन्स को सिक्योर करे। तो एक ये जो एक काम है भारतीय नौसेना का, एक प्रमुख काम है, पीस टाइम वर्क कह सकते हैं आप, कि जब युद्ध ना चल रहा हो तो ये एक मेजर काम रहता है। और हमारे जहाज कंटिन्यूअसली वहां पिछले इतने सालों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जहाज होते हैं वहां पे। तो उसके कारण मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो उसके लिए एक सशक्त नौसेना का होना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: और मेरे ख्याल से पिछले करीब करीब कुछ सालों में सरकार ने ये काम किया हुआ है। अगर आप जहाजों का थ्रूपुट देखें, जो नेवी के जहाज बन रहे हैं, वो काफी सारे जहाज लॉन्च हुए हैं, काफी सारे जहाज कमीशन हुए हैं और बहुत मॉडर्न जहाज हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना जो है वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं इंडियन ओशन रीजन, तो जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी आ जाता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारतीय नौसेना को माना जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है दोनों का पैरेलल विकास, जिस पर पूरा बल दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपके पास आए तो सागरमाला प्रोग्राम जो सरकार का 2015 में शुरू हुआ पोर्टलेट डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मैकेनाइजेशन, जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो डिजिटल सिस्टम्स को पोर्ट ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इस सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो एक कहें कि फोकस्ड एफर्ट है सरकार का?
2: देखिए, सागरमाला जो परियोजना 2015 में जिसको लॉन्च किया गया, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे वो ये थे कि भारत के तमाम बंदरगाह पुरानी तकनीक पर चल रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था और उसमें बहुत ज्यादा जो पुराने किस्म के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सागरमाला परियोजना के तहत ये बात की गई कि बंदरगाहों का न सिर्फ उनका आधुनिकीकरण करना है, बल्कि बंदरगाहों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो। और एक बार जब किसी जहाज से, किसी कार्गो या कंटेनर शिप से जब माल वो बंदरगाह पर डॉक होता है, तो वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और तमाम बंदरगाहों के साथ एक ये भी समस्या भारत में पहले रही है कि उनके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है वो नहीं था, तो उसके विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना में ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये बात की गई कि किसी भी बंदरगाह में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी है, डॉकिंग फैसिलिटी है, वहां पर सामान उतर गया, उस सामान का स्टोरेज कैसे हो और वो अत्याधुनिक तकनीक पर कैसे बेस्ड हो। तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जो परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो रोड परिवहन हो, या रेलवेज के रास्ते जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, और खास तौर से जो इनलाइन वाटरवेज हैं उनके विकास की कोशिशें की गई। तो सागरमाला परियोजना मुझे लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी कदम रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में, और इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत तेजी से दुनिया की तमाम जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कॉम्पीट करने और उनके बराबर चलने की क्षमता प्रोवाइड की है। 845 परियोजनाओं को नामांकित किया गया था 2015 में और उनमें से 315 परियोजनाएं अभी पूरी हो चुकी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सागरमाला इनिशिएटिव, जैसा कि नाम भी खुद ये बताता है कि ये तमाम जो भारत के बंदरगाह हैं उनको एक माला की कड़ियों की तरह जोड़ना है, जिससे कि उन तमाम बंदरगाहों में आपस में भी कनेक्टिविटी रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, अत्याधुनिक तकनीक से वो जुड़े रहें, कम्युनिकेशन और उन कोऑर्डिनेशन की उनमें लगातार एक सुगम यातायात रहे, और साथ ही साथ इस पूरी बंदरगाहों के विकास और उनके अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ भारत के आम नागरिक, छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोग पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं या जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी परियोजनाएं चलाना कि वो भी जब बंदरगाहों का विकास हो और ज्यादा माल ढुलाई हो, व्यापार बढ़े, तो वो लोग भी इस विकास का फायदा उठा सके और उसमें अपना योगदान दे सके।
1: बिल्कुल, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हुए हैं, समय जो लगता था उस सामान को पहुंचाने में वो भी कम हुआ। आपने इनलैंड वाटरवेज की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है हमारे सामने कि लगभग 700% बढ़े हैं कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज में। सो इस संदर्भ में जो हमारा कहें कि जो वाराणसी मल्टी मोड टर्मिनल है, जो पहला मल्टी मोड टर्मिनल है गंगा नदी पर, जो गवर्नमेंट की जल मार्ग विकास परियोजना है, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है? जैसा आप कह रहे थे,

0: लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए और जो समय है उसको भी कम करने के लिए?
1: देखिए, इनलैंड वाटरवेज भारत में उनकी परिकल्पना बहुत पहले से रही है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका। और क्योंकि भारत में गंगा नदी, मुख्य रूप से गंगा नदी के रास्ते बनारस से लेकर वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक का एक वाटरवे बनता है, जिसमें तमाम जो छोटे और बड़े शहर हैं वो उसके साथ जुड़ सकते हैं। आज जो इनलैंड वाटरवेज 1 की बात हो रही है, जिसमें वाराणसी को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया गया, क्योंकि सीधे इस इनलैंड वाटरवे के माध्यम से भारत के उत्तरी जो राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमाम ये जो प्रदेश आते हैं जो किसी भी तरह से किसी भी बंदरगाह से या समुद्र तट से जुड़े नहीं है, उनके लिए कैसे ये व्यवस्था की जाए कि वो भी पोर्टलेट डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने और उनके जो निर्यात के सामान है या उनके लिए जो सामान बाहर से आ रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिए, शिपिंग में और जो समुद्री व्यापार है ये वैसे ही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके जो 3 घंटे और 4 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह जब कोई माल, खास तौर पे खाद्य पदार्थ, जब वो किसी बंदरगाह पर डॉक होता है, जब उसको उतारा जाता है, वहां से कितनी जल्दी वो बाजार पहुंच सके, मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों के मामले में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो 48 घंटे और 72 घंटे के बाद पहुंचेगा तो आधे से ज्यादा सामान खराब हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों के लिए ये एक विशेष चिंता की बात है, क्योंकि जैसे अगर हम आम, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में आम निर्यात करने की कोशिश होती है, उनके लिए ये हमेशा से एक समस्या रही है कि उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनलैंड वाटरवेज पर खास ध्यान दिया जाए और उनको विकसित किया जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या नमो घाट और तमाम जो परियोजनाएं वाराणसी में चल रही है उनका एक बहुत दूरगामी परिणाम होगा इनलैंड वाटरवेज को आगे बढ़ाने में और उनके योगदान को बढ़ाने में पोर्टलेट डेवलपमेंट की जो संकल्पना है भारत की आर्थिक विकास।
0: आपने बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर हमें ये बात समझाई है। कॉमोडोर जोशी, आपके पास हम आते हैं। विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो केरला में विकसित हुआ है, 2015 में ये इनॉग्रेट हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको? ये ग्लोबल सी रूट से हमें कनेक्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये?
2: जी, अगर आप थोड़ा नक्शे पे ध्यान दें दुनिया के, तो आज की डेट में एक प्रोसेस बोला जाए, एक तो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रोसेस है और वो सिंगापुर आज की डेट में सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें ये सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होती है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा सामान लेके आते हैं उनको पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगती है। तो क्या किया जाता है कि समझिए आप सिंगापुर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है वो सिंगापुर में छोटे जहाजों में जाएगा, कंपैरेटिवली छोटे जहाजों में, और फिर वो बाकी वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब हिंदुस्तान की तरफ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ इस तरफ आएगा या फिर मिडल ईस्ट या जो भी अफ्रीका में जाना है वो जाएगा। तो एक प्रोडक्शन सेंटर है, एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है। अगर हमारी ज्योग्राफी देखा जाए, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं अपने को, एंड ये जो विजिंगजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है ट्रिवेंड्रम में
0: जी,
2: वो एक डीप वाटर पोर्ट है। एक 20 से 24 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है वहां पे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इंटरनेशनल शिपिंग लेंस जो है ये उसके बहुत करीब है। इनफैक्ट जो सिंगापुर से लेके जो पर्शियन गल्फ की तरफ लेन जा रही है, मलाका स्ट्रेट से पर्शियन गल्फ की तरफ, वो तो इसके बिल्कुल साथ से होती हुई जाती है। और जो सुएज कैनाल की तरफ जो लेन जा रही है वो इससे करीब 20 से 30 नॉटिकल माइल, अगर किसी को विजिंगजाम पोर्ट में आना होगा तो 20 से 30 माइल का डायवर्जन लेना पड़ेगा। तो ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि जो समझिए आप मिडल ईस्ट से, यूरोप से, मेडिटेरियन से सुएज कैनाल के थ्रू होते हुए जहाज इधर आ रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांसशिपमेंट अपने यहाँ हो सकती है और फिर यहाँ से जहाज या तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगे या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो एक दूरगामी जो परिणाम है इसका वो काफी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 24-25 में करीब करीब 1.2 मिलियन TEUs जो यूनिट होती है, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट बोली जाती है, वो इसका थ्रूपुट हो चुका है। और जब फेज 2 और फेज 3 खत्म होएगा 2028 तक
0: जी,
2: तो उस टाइम पे जो इनका जो एम है, टारगेट है, एक विजन है कि 4.5 5 मिलियन टीयू से।

0: ये जो परियोजना है सागर कांठा के तमाम जो जिले हैं जिसमें कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और तमाम भावनगर, अहमदाबाद, ये सभी उसमें आते हैं। इन तमाम शहरों के साथ एक समस्या ये थी कि जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली की आपूर्ति हो या पीने के पानी की सतत आपूर्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर जो सामुद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, खारे पानी के प्रवेश को रोकना, एक गुजरात के तमाम बंदरगाहों के साथ एक समस्या ये है कि क्योंकि वहां पर हाई टाइड के साथ बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो जाती है और जो गाद आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत पहले के समय में, आज से हजार साल पहले भी, जब लोथल एक मानव निर्मित जब बंदरगाह बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आज से 3000 साल पहले ज्यादा, तब भी यही समस्या आई थी कि बहुत सारी गाद जो है वो बंदरगाह और उसके रास्ते उस क्षेत्र के अंदर आ गई। तो खारे पानी के साथ साथ इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना का की संकल्पना की गई और मूलभूत तौर से इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग, जो जनता इन बंदरगाहों के आसपास रहती है, जो इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार और इन बंदरगाहों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंटरनल पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए और तमाम इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया था। तो इसका फोकस बहुत ही लोकलाइज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये किसी भी बंदरगाह के लंबे समय तक और सुदृढ़ रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक,
1: कह सकते एक तरह से मॉडल है। और सागरमाला के तहत 11 जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत 30,000 जो मछुआरे हैं उनको फायदा हुआ है, आपको लगता है ये भी बहुत होलसम होलिस्टिक अप्रोच है?
0: जी बिल्कुल, दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है और उनके विकास पर ध्यान दिया है, उन्होंने ये भी देखा है कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो लोकल अर्थव्यवस्था है, वो बंदरगाहों पर जो निर्भर है या तटीय क्षेत्रों पर निर्भर है, उनको कैसे इस बंदरगाह के विकास में या पोर्टलेट डेवलपमेंट में से जोड़ा जा सके, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है और ऐसे भी उदाहरण है दुनिया के तमाम बंदरगाहों के जहां बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से उनको डेवलप किया गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह बन गए, लेकिन जो जनता उससे जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। इन तमाम सागरमाला के तहत इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हम आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज्यादा आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता के कंसर्न्स और उनकी जरूरतों को कहीं पीछे ना छोड़ दें। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही समेकित परियोजना है सागरमाला, और इसके तहत मुझे लगता है कि जनता विकास के साथ साथ आर्थिक प्रगति दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई।
1: बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने एक मेंशन किया लोथल जो गुजरात में, वहां पर जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि ये एंशंट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां डॉकयार्ड था 4,500 वर्ष पुराना, तो ये जो हमारी एक हिस्ट्री है मैरिटाइम हिस्ट्री, उसके लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा, उसको शोकेस करने का और पूरे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम होगा जब ये बन जाएगा तो?
2: जी सोलो जी, बिल्कुल सही आप दिशा में आपने जो बोला है, ये जो 4,500 साल पहले जब ये बनाया गया था, इसमें एक ड्राई डॉक भी होता था, तो मतलब आप सोचिए कि कितना एडवांस वो सिटी होगा जिसमें एक जहाजों को अंदर लाके ड्राई डॉकिंग की भी फैसिलिटी बनाई गई हुई थी। तो उसी हिसाब से मैरीटाइम कल्चर जो बोलेंगे, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैरीटाइम कल्चर था
1: जी,
2: वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सारे, हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा, हमें जानकारी नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। और मेरे ख्याल से जब ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन के पूरा हो जाएगा, ये दो फेजेस में बन रहा है और पहला फेज में फेज ए और फेज बी भी है, जब ये पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आकर्षक जगह होने वाली है, जिसमें अपने आप में ये एक डेस्टिनेशन हो जाएगा कि आप लोग वहां पे जाएंगे और एक मैरीटाइम जो हेरिटेज है
1: जी,
2: उसको कैसे हिंदुस्तान ने प्रिजर्व किया है और आज पास्ट, आज की डेट में और फ्यूचर, ये तीनों कैसे इंटीग्रेट होके उस जगह पे दिखाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से जन साधारण के लिए एक अच्छी परियोजना जो है वो स्थापित हुई है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही अच्छा एक, आप कह सकते हैं, एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा, लोगों के लिए वहां पे भी जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ मिलकर उनसे भी लिया जा रहा है टेक्निकल एडवाइस, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को?
0: मुझे लगता है इसमें दो चीजें

0: हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत 2047 में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनना है, भारत को अपने जो इतिहास को प्रेजेंट करने में जो गलतियां की गई हैं उनको भी सुधारना है। तमाम तथाकथित इतिहासकार जो भारत के हैं और भारतीय इतिहास पर लिख चुके हैं वो ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत कभी एक मैरिटाइम नेशन नहीं रहा है, ये तो एक कॉन्टिनेंटल देश रहा है जिसने कभी समुद्री यातायात या समुद्री सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस नैरेटिव को एक सिरे से नकारने के लिए और इस डिबेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है इस मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना जरूरी थी। और क्योंकि ये इस बात को सामने रखता है कि आज से 5000 साल पहले भी भारत एक समुद्री महाशक्ति था, भारत के पास उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी, जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा स्थान रखते थे, हमने मानव निर्मित एक बंदरगाह बनाया जिसको आज फिर रिवाइव करने और उसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में रखने की बात हो रही है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि लोथल जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसमें आपने जो बात कही नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ सहयोग किए, ये दोनों देश भी, वियतनाम और नेदरलैंड्स दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े पोर्ट्स को लेकर के और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर के वो हमेशा से ही बड़े एक्टर्स और बड़े प्लेयर्स रहे, तो उनके साथ सहयोग मुझे लगता है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम कलेक्टिवली अपनी जो हमारी जो साझा विरासत है उसको भी हम सामने लेकर के आए। और इस लिहाज से एक यूरोपीय देश और वियतनाम जो कि जिसकी अपनी 5000 साल की एक ग्लोरियस उसका इतिहास है उसको भी सामने रखना बहुत जरूरी।
1: सो कॉमोडोर जोशी, जैसा आप दोनों ने ही बताया कि कितना हमारा ग्लोरियस इतिहास है, मैरिटाइम इतिहास, उसको दर्शाया जाएगा और साथ ही साथ आपको लगता है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच है सरकार का कि विरासत का गौरव उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 जिसकी बात अभी प्रोफेसर मिश्रा भी कर रहे थे, जिसमें 150 से ज्यादा पहले हैं 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और जिसमें पिछले वर्ष का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज शिप बिल्डिंग का भी शामिल है, और न सिर्फ ये मैरिटाइम अमृतकाल विजन भी 2047 उसको भी सरकार ने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा है एक दूरगामी सोच के साथ, कितना आपको ये अप्रोच कहें कि ऑलराउंड अप्रोच लगता है?
2: बिल्कुल, एक चौतरफा सोच मेरे को दिखती है पूरे इसमें, क्योंकि आप देखिए बंदरगाहों को डेवलप करना, कोस्टल कम्युनिटी को साथ में लेके चलना, जो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे कि कई बार मार्जिनलाइज हो जाती है जो लोकल लोग रहने वाले हैं
1: जी,
2: वो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन लोकल लोगों को उनकी सुविधाओं का उनकी जरूरतों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते हैं बहुत बार। लेकिन अगर आप देखें ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे MIV के तहत हो, चाहे MAKV के तहत हो, या चाहे फिर सागरमाला के तहत हो, पांचवा जो पिलर है सागरमाला का वो है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का पिलर है। मतलब पूरा का पूरा एक फंडामेंटल पिलर यही बोल रहा है कि जो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है, नॉट सिर्फ पोर्ट में नहीं, सिर्फ बंदरगाहों में नहीं, पूरी कोस्ट में, उन सबको साथ में लेके हमको डेवलप करना है और उनका ध्यान जरूर रखना है। और उसके लिए अगर आप देखिए तो अगर डेवलपमेंट कोस्ट में हो रही है, पोर्ट्स पे हो रही है, तो जो सरकार ने इतना जो बजट आउटले किया हुआ है 3.5 लाख करोड़ रुपए का MIV के लिए और करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए MAKV के लिए, तो ये सारा का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्टलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सागरमाला के तहत एक और पिलर माना जाता है, जिसमें इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोस्टल इको जोन, कोस्टल इको यूनिट्स एंड साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, और पोर्ट कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि कैसे की जाए, तो अभी जिक्र में यही आया कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू समझिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है, समझिए आपका जो नेशनल वाटरवे 1 बन रहा है जो वाराणसी और अल्जिया को कनेक्ट कर रहा है, तो हिंटरलैंड जो इंडिया की है वो उनको एक जिसे बोलते हैं उनका दरवाजा खुल गया है समुद्री रास्ते के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज बननी शुरू हो गई हैं। और वैसे ही अगर आप देखे हैं कुछ दिन पहले एक ट्रायल रन हुआ था एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, जिसमें एक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर वडोदरा तक। तो अभी आप देखें कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तान ने जो पहला कदम लिया है, पहला देश है जिसने एक बिजली की जो ट्रेन है उसमें डबल डेकर कंटेनर सिस्टम अपनाया है, बाकी पूरे दुनिया में सिंगल कंटेनर सिस्टम जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक दो कंटेनर नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो ट्रेन गई है करीब मेरे को लगता है 300-350 कंटेनर यूनिट से लेके गई थी, काफी लंबी ट्रेन थी ये, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है।

0: और ये सारी चीजें इन तीन प्रोग्राम्स के तहत हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि अपनी जो लोकल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
1: बिल्कुल
0: सागर खेडू जो सर्वांगी विकास योजना थी गुजरात की, वो एक मॉडल था, उसके हिसाब से पूरे देश में वो मॉडल अभी अडॉप्ट हो रहा है किसी ना किसी स्कीम में। और उसके बाद में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट विंजम पोर्ट है, लेकिन अगर आप वाधवान पोर्ट देखें महाराष्ट्र में जो बन रहा है, वो एक और पोर्ट है, गलातिया बे का जो पोर्ट है अभी, वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाएगा जो अंडमान में बना रहे हैं, जो करीब करीब सिर्फ 40 मील है मलाका स्टेट से।
1: जी,
0: तो आप देखिए कि आप कैसे पूरा देश में हर जगह पे पूरी देश की पूरी जो लैंडमार्क है वो कवर हो रहा है, जो भूमि है देश की सब जगह कहीं ना कहीं मैरीटाइम डेवलपमेंट हो रही है, चौमुखी विकास लग रहा है।
1: जी बिल्कुल, कॉमोडोर जोशी, प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से देश के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए।
2: धन्यवाद
0: जी, शुक्रिया।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।

0: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
5: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
6: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
7: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
0: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

क्या आप जानते हैं एक राष्ट्र एक मानक के बारे में, वन नेशन वन स्टैंडर्ड। मिशन भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं के लिए एक एकीकृत मानक प्रणाली लागू करना है। जिसकी मुख्य बात हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में देश में एक ही तरह के उत्पादों या सेवाओं के लिए अलग अलग मानक एजेंसियां और नियम है। इस मिशन का उद्देश्य इन सभी अलग अलग मानकों और भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत समेकित यानी कि एक करना है। एक राष्ट्र एक मानक, वन नेशन वन स्टैंडर्ड।

0: FM Gold, खरा सोना।
1: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों, पूछना क्यों।
2: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: जुनी नवी गाणी माहिती मनोरंजनाचा खजिना म्हणजे आकाशवाणी मुंबईची FM गोल्ड वाहिनी. ऐकत रहा आणि आनंद घेत रहा.
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी.
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है. आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है. समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है.
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें.
1: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी.
3: भावात दररोज 6 ते 7 कोटी वाहनात इंधन भरलं जातं. देशात 23 कोटीहून अधिक गाड्या 2.5 वर्षांपासून E20 वर चालत आहे.
4: सगळं तर एकदम व्यवस्थित चाललंय.
3: तेच तर, काही समस्या असती तर आतापर्यंत समोर आली असती. अफवांवर नाही, तथ्यांवर विश्वास ठेवा.
5: भारत सरकारचा उपक्रम तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित.
6: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
7: मक शुरू करूँ या इन्वेस्टिंग का धड़ा?

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण

0: महत्वपूर्ण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: श्री सिंह ने आसियान भारत थिंक टैंक फोरम के लिए व्यावहारिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपदा मोचन, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है। भारत से नारियल रेशा और इससे बने उत्पादों के निर्यात में 305% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनका निर्यात वर्ष 2014-15 के 1630 करोड़ रुपए से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 6614 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। कनाडा और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता तेज कर दी है। वार्ता का लक्ष्य 2026 के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देना है। 5 से 9 अक्टूबर तक ओटावा में 5वें दौर की वार्ता के बाद ये बातचीत आगे बढ़ी है। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने इस सप्ताह नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के अनुसार दोनों पक्षों ने वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रस्तावित समझौते को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। 12 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस व्यापार मिशन में लगभग 300 प्रतिनिधि मुंबई और बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। मौसम विभाग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 2 दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटका, कोंकण और गोवा में आज मौसम में गर्मी तथा उमस रह सकती है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मिला जुला रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 73,070 पर और निफ्टी 6 अंक की गिरावट के साथ 22,716 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कलाकार बेमिसाल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आपके साथ है रजनी। आज बात करेंगे हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार के बारे में, जिनके बारे में उनके दोस्त और जाने माने लेखक मंटो ने लिखा था कि उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि जब भी वो बाहर निकलते तो भीड़ उन्हें घेर लेती, ट्रैफिक रुक जाता और उनके प्रशंसकों को कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। आपको बता दें कि आज के शो की शख्सियत हैं महान अभिनेता अशोक कुमार।

महल फिल्म से गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर जिले में एक बंगाली परिवार में जन्म हुआ कुमुदलाल गांगुली का। उनके पिता कुंजीलाल गांगुली एक जाने माने वकील थे, इसलिए अशोक कुमार भी बचपन से ही वकील बनना चाहते थे। लेकिन पहली बार वकालत की परीक्षा में असफल होने के बाद उन्हें लगा कि शायद ये उनका रास्ता नहीं है। इसके बाद नौकरी की तलाश में वो मुंबई आ गए। उनकी बहन सती देवी के पति और मशहूर निर्देशक शशधर मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज से जुड़े थे। उनके कहने पर अशोक कुमार को वहां लैब असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। ये बात है 1936 की, जब बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु मलिक जीवन नैया फिल्म बना रहे थे। तभी खबर आई कि जीवन नैया के हीरो नजमुल हसन फिल्म छोड़कर चले गए हैं। बस तभी हिमांशु मलिक ने फैसला कर लिया कि उनकी फिल्म के हीरो अशोक कुमार होंगे। फिल्म के निर्देशक फ्रेंड्स ऑस्टिन हालांकि उनके फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि उनको लगता था कि अशोक कुमार का चेहरा मोहरा हीरो के लिए फिट नहीं है, लेकिन हिमांशु मलिक अपने फैसले पर अडिग थे। इस तरह अशोक कुमार बिना किसी प्लानिंग के फिल्मों में आ गए। अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज से, आवाज है आशा भोंसले की।

रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक। धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मानवा खंडवा खंडवा मानवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव

70 और 80 के दशक में अशोक कुमार चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दिए, जिनमें सत्यकाम, शराफत, नया जमाना, अधिकार, पाकीजा, अनुराग, विक्टोरिया नंबर 203, मालिक, छोटी सी बात, आनंद आश्रम, खूबसूरत, तवायफ, मिस्टर इंडिया, खट्टा मीठा और शौकीन विशेष उल्लेखनीय हैं। 1997 में आई फिल्म आंखों में तुम हो के बाद उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया। इस बीच दूरदर्शन के पहले टीवी सीरियल हम लोग में वो सूत्रधार के रूप में दिखाई दिए। ये सीरियल लोगों के दिल के कितना करीब था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस शो के दौरान अशोक कुमार को लगभग 4 लाख खत मिले और हर एपिसोड में नियमित 4 मिलियन से ज्यादा दर्शक इसे देखा करते थे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं शौकीन फिल्म का किशोर कुमार का गाया गीत, जो कि अशोक कुमार पर फिल्माया गया था।

0: ननक जाए।
1: 10 दिसंबर 2001 को 90 बरस की उम्र में अशोक कुमार का निधन हो गया। अशोक कुमार वो शुरुआती अभिनेताओं में से थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में स्वाभाविक अभिनय की नींव डाली। अपने 6 दशक लंबे करियर में उन्होंने महल और परिणीता जैसी फिल्मों का निर्माण किया और 8 डेज जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया। सिनेमा में उनके अमिट योगदान के लिए 1962 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 1988 में अशोक कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बंदनी फिल्म के इस गीत के साथ अशोक कुमार पे चर्चा को आज विराम देते हैं। हालांकि इतना कुछ है कहने के लिए उनके बारे में कि एक शो में समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश की और आज का अंतिम गीत फिल्म बंदनी से।

0: कलाकार बेमिसाल से रजनी को फिलहाल इजाजत।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। भारत ने भारत आसियान मुश्तरका तहकीकी एजेंडा तैयार करने और बहरी सिक्योरिटी और उभरती टेक्नोलॉजीज पर तवज्जो मरकूज करने की तजवीज दी है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने कहा है कि दुनिया नए बैन अल-अक़वामी निज़ाम की जानिब बढ़ रही है, कई ममालिक आलमी मामलात में वसी तर रोल अदा कर रहे हैं। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुल्क का सरकारी कर्ज का तनासुब मजमूई घरेलू पैदावार GDP के मुकाबले में 61% से कम होकर 55% रह गया है। इस साल सितंबर में थोक कीमतों के इशारे की इफरात जर बढ़कर 11.39% हो गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्राइकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में आज हैदराबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान चौथा T20 बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुले भारत बहरुल काहिल खित्ते

0: के बारे में मुश्तरका मफादात रखते हैं। आज सुबह नई दिल्ली में आसियान भारत दिफाई थिंक टैंक फोरम से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि आसियान को भारत बहरुल काहिल खित्ते से मुतालिक भारत के नजरिए में मरकजी हैसियत हासिल है। उन्होंने कहा कि भारत की मशिक नवाज पॉलिसी जुनूब मशिकी एशियाई मुल्कों के साथ मुसावी शराकत दार की हैसियत से काम करने के लिए भारत के तवील मुद्दती अज़्म की अक्कासी करती है।
1: For India, ASEAN is central to our Indo-Pacific vision. India's Act-East policy, Sagar and Mahasagar vision, advocate open, multipolar cooperation, and we align these approaches through ASEAN-led mechanism. Our Act-East policy is a long-term commitment to working with Southeast Asia as an equal partner. Our collective objective should be to build trust, respect for each other's sovereignty, and keep channels of dialogue open.
0: साल 2026 को आसियान भारत बहरी तआवुन का साल करार दिए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने समंदरी हदूद से मुतालिक निगरानी और मामलात में इजाफे, इत्तलात के तबादले को बेहतर बनाने और हंगामी हालात बहरी कज़ाकी और गैर कानूनी माहिगीरी से निमटने के लिए इज्तिमाई सलाहियतों को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने कहा है कि आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चैन में लागत के साथ साथ एतमाद और साइबर सिक्योरिटी की अहमियत मुसलसल बढ़ती जा रही है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब वैष्णो ने कहा कि भारत का मकसद सेमी कंडक्टर के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और तैयार शुदा प्रोडक्ट्स की जाँच के शोबे में खुद को एक काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर कायम करना है। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि पायदार मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मुकम्मल इको निजाम तश्कील देना जरूरी है।
2: Materials are very important because that ecosystem takes a lot of time and effort to build. So we have to put in that extra effort to get that capability in our country in terms of understanding of the materials, handling of the materials, manufacturing them, processing them, storing them, using them in the chips or every other manufacturing process, and making sure that we develop an ecosystem which becomes good for us, good for the world.
0: जनाब वैष्णो ने कहा कि भारत अपनी मईशत को मजबूत बना रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 बरस में मुल्क का सरकारी कर्ज का तनासुब मजमुई घरेलू पैदावार GDP के मुकाबले में 61% से कम होकर 55% रह गया है। वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का मकसद मालियाती, इक्तसादी और तकनीकी शोबों में पायदारी और मजबूती को बढ़ाना है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने जहाज साजी से मुतालिक कौमी मिशन के तहत भारत की जहाज साजी की सनत को तआवुन फराहम करने की खातिर कर्ज खतरात से मुतालिक बीमे के 2 खसूसी प्रोडक्ट्स का ऐलान किया है। मुंबई में बहरी रियासती तरक्याती कौंसिल MSDC की 21वीं मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब सोनोवाल ने कहा कि जहाज साजी के प्रोजेक्ट से मुतालिक क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी में बरामदात से मुतालिक प्रोजेक्टों का इहाता किया जाएगा, जबकि बिजनेस क्रेडिट शील्ड पॉलिसी शिप बिल्डर्स घरेलू प्रोजेक्टों को तहफ्फुज फराहम करेंगे। भारत की थोक कीमतों के इशारे WPI पर मबनी अफरात जर सालाना बुनियाद पर सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई, जो अगस्त में 9.92% थी। कॉमर्स और सनत की वजारत की तरफ से जारी किए गए उबूरी आदाद शुमार के मुताबिक मादनियाती तेल, गजाई अशिया, खाम पेट्रोलियम और कुदरती गैस, कोयले और लिग्नाइट, बुनियादी धातु, केमिकल और कीमियाई मसनूआत, टेक्सटाइल, रबड़ और प्लास्टिक मसनूआत की ज्यादा कीमत की वजह गुज़श्ता महीने अफरात-ए-ज़र में इजाफा हुआ है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि किस तरह इस नजरिए ने भारत की तरक्की और कौमी सलामती के इकदाम में अहम सुतून की हैसियत रखने वाले स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम सरहदी इलाकों के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाया है।
3: अरुणाचल प्रदेश की सेला टनल इस नजरिए के तई अहद बस्तगी की एक नुमाया मिसाल है। ये टनल स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम है, तवांग खित्ते को हर तरह के मौसम में कनेक्टिविटी फराहम करती है। इस टनल को 9 मार्च 2024 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नाम वक्फ किया था और ये सरहदी सड़कों की तंजीम BRO की तरफ से बुनियादी ढांचे से मुतालिक मुकम्मल किया गया एक तारीखी प्रोजेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश के सेला टनल तकरीबन 13,000 ऊंचाई पर बनाई गई है और ये शुमाली हिमालयी खित्ते के दुश्वार गुजार रास्तों में इंजीनियरिंग की काबिले जिक्र कामयाबी को जाहिर करती है। ये टनल खास तौर पर बर्फबारी और दुश्वार मौसमी हालात में अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर और तवांग के दरमियान ज्यादा काबिले एतबार कनेक्टिविटी फराहम करती है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने आज कहा है कि दरमियानी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले कवायद व जवाबित पर अमल दरामद में इत्तिफाकी राय, बाहमी मफाहमत और मुश्तरका मफादात क्लीदी रोल अदा करेंगे। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि अब वो दौर खत्म हो चुका है कि जब कोई मुल्क धमकियों के जरिए दूसरे मुल्कों पर अपनी शराइत मुसल्लत करता था। उन्होंने उजागर किया कि दुनिया एक नए बैन अल-अक़वामी निज़ाम की जानी बढ़ रही है जिसमें ज्यादा तादाद में ममालिक आलमी मामलात में ज्यादा मौसर रोल अदा कर रहे हैं। दिल्ली हुकूमत ने एक करारदाद मंजूर करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल करने की मुबारकबाद पेश की है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला रेखा गुप्ता ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क के शहरियों के मियार जिंदगी को बेहतर बनाने, तरक्की को फरोग देने और रियासतों की तरक्की को तेज करने के लिए अनथक मेहनत करने पर मुबारकबाद दी है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराइकल में आज तेज बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने जुमे तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मगरबी राजस्थान में गरज चमक के साथ झालावारी की भी पेशगोई की है। मर्दों के क्रिकेट में आज हैदराबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत ने इतवार को इंदौर में तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 2-1 की सबकत हासिल कर ली थी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत आसियान मुश्तरका तहकीकी एजेंडा तैयार करने और बहरी सिक्योरिटी और उभरती टेक्नोलॉजीज पर तवज्जो मरकूज करने की तजवीज दी है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने कहा है कि दुनिया नए बैन अल-अक़वामी निज़ाम की जानिब बढ़ रही है, कई ममालिक आलमी मामलात में वसी तर रोल अदा कर रहे हैं। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि मुल्क का सरकारी कर्ज का तनासुब मजमूई घरेलू पैदावार GDP के मुकाबले में 61% से कम होकर 55% रह गया है। इस साल सितंबर में थोक कीमतों के इशारे की अफरात जर बढ़कर 11.39% हो गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराइकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में आज हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान चौथा T20 बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरें खत्म हुईं।

0: में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
1: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
0: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
3: भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी, जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $10 ट्रिलियन थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग $70 ट्रिलियन की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य 115 ट्रिलियन की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से $85 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुँच बढ़ाना है।
0: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
3: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
4: मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
5: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणालियों और पोषण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत में टीवी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीवी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीवी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीवी के भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को

0: राष्ट्र को समर्पित किया था।
1: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में दो सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही होगी। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रे की चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। आता शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम नादब्रह्म। आज पंडित रामदास पळसुले यांचं तबलावादन आपल्याला ऐकवत आहोत। तबल्यावर ताल 3 ताल, त्यांना हार्मोनियमची साथ केली आहे तन्मय देवशके यांनी। ऐकूया पंडित रामदास पळसुले यांनी तबल्यावर वाजवलेला ताल 3 ताल।

स्वागत छे आपनो आपना प्रिय कार्यक्रम गीत गुर्जरी मां साथे छे आपनी रोशनी। मित्रों, आप सौ श्रोताओ समक्ष अमे लईने आव्या छीए 51 शक्तिपीठोनी रसप्रद सफर। अमारा जे श्रोताओ नवरात्रि मां आजे पहेली ज वार जोड़ाया छे एमने जणावी दऊं के माताની पवित्र 51 शक्तिपीठनी वातो आप आ 9 दिवस दरमियान गीत गुर्जरी परथी सांभळशो, जेमां पहेला दिवसे आरजे नीता, बीजा दिवसे पूजा, त्रीजा दिवसे काजोल अने आजे हूँ रोशनी आपने लई जईश एज यात्राए। अने आ यात्रा हशे श्रद्धाथी शक्ति सुधीनी, कथाथी आस्था सुधीनी अने मंदिरथी आपणा मन सुधीनी। तो आवो आ यात्रा पर मारी साथे आपणे जोईशुं 51 शक्तिपीठमांनी 6 शक्तिपीठ।

कार्यक्रम गीत गुर्जरी में गीतों की रमझट गीत बंद करने मन तो मैंने नहीं थी रू पेली शक्तिपीठ की बात करवा रही गई है। तो आप आज हवे बकरेश्वर नामना मंदिर में पहुंची जाइए जे आवेलू छे पश्चिम बंगाल बीरभूम जिल्ला में। बकरेश्वर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। अहीं माँ महिष मर्दिनी मंदिर और भगवान शिवना वक्रनाथ स्वरूप की उपासना साथ जोड़ायेली परंपराओं जोवा मळे छे। बीरभूम जिल्लाना सरकारी प्रवासन वर्णन अनुसार अहीं अष्टावक्र मुनि की तपस्या साथ जोड़ायेली कथा खूब प्रचलित है और एक कथा प्रमाण अष्टावक्र मुनिए आ स्थले लांबी तपस्या करी हती और भगवान शिवे तेमने आशीर्वाद आप्या हता। अने हवे बात करिए शक्तिपीठनी तो अहीं माता क्यूँ अंग पड़ू हतु तो अहीं माता सतीना भ्रूमध्य एटले के बन्ने भ्रमरोनी वच्चेना भाग साथेनी मान्यता जोवा मळे छे। अहीं देवी महर्षि मर्दिनी स्वरूपे पूजाय छे अने भैरवनुं नाम वक्रनाथ छे। महिष मर्दिनी देवीनुं नाम ज तेमना विशिष्ट स्वरूपनो परिचय करावे छे। महिषासुरनो मर्दन करनार देवी दुर्गाना आ स्वरूपनी कथा खूब ज सुंदर रीते वर्णवाय छे अने आम बकरेश्वरनी आ एक खास ओळख बनी छे अने त्या सौथी इम्पोर्टंट कुदरती गरम पाणीना झरा छे। आ विस्तार में अनेक गरम पाणीना कुंड आवेला छे जे प्रवासी अने तीर्थयात्रीनुं ध्यान आकर्षित करे छे। आ साथे ज मित्रों छे छ शक्तिपीठनी आज आपणे वात करी अने कार्यक्रम अहीं ज समाप्त करीए छीए। आवतीकाले फरीथी जुदी शक्तिपीठनी वात लईने आवशे आरजे आरती। थोड़ी ज पळोमां आप सांभळी शकशो हिंदीमां समाचार जे आकाशवाणीना दिल्ली केन्द्रथी रिले करवामां आवशे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री का संदेश संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने पढ़कर सुनाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि विचारों, ज्ञान और कला के आदान प्रदान से सभ्यताओं को भौगोलिक सीमाओं से आगे बढ़ने में मदद मिली है। ये सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत और आसियान सदस्य देशों के एक शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक महंगाई दर बढ़ी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: करीब 2009 करोड़

0: करोड़ रुपए का टोटल बोनस है, 2009 करोड़ रुपए का। रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 एम्प्लॉयमेंट रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है, 5.5 लाख नौकरियां रेलवे में दी गई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से कल नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आइची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। देश में वर्ष 2015 से 24 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी 12% रही। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said India's civilizational journey has been shaped by centuries of cultural exchange and the sharing of knowledge across borders. The Prime Minister made the remarks during a video message delivered at the inaugural session of the 3-day international conference on Bharat's cultural connections across the globe in New Delhi today. The Prime Minister highlighted the role of ancient centers of learning such as Nalanda in promoting the exchange of knowledge between India and other parts of Asia. The Prime Minister's message was read out by Culture Secretary Vivek Agarwal at the conference. Union Cabinet meeting was held in New Delhi today. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav is addressing the media on important decisions taken during the meeting. We now take you live to the press briefing.
3: Pension ke karyakram mein labharti honge. Total labhartiyon ki sankhya badhke kareeb 3 crore 20 lakh ho jayegi. आज के इस फैसले से टोटल बेनिफिशियरीज की संख्या 3 करोड़ 20 लाख हो जाएगी और ये सोशल सिक्योरिटी जो हमारे वयोवृद्ध ओल्ड एज फैमिलीज ओल्ड एज पर्सन्स हैं उनके लिए वो करीब 2 करोड़ 21 लाख लोग हैं ऐसे जो विधवा हो गई महिलाएं उनके लिए 67 लाख करीब ऐसी विधवाएं इसमें कवर्ड हैं और जो दिव्यांगजन है 27 लाख दिव्यांगजन इसमें कवर होंगे और जो फैमिली बेनिफिट मिलेगा प्राइमरी ब्रेड विनर की डेथ पे जो 20,000 रुपीस का फैमिली बेनिफिट मिलेगा उसमें करीब 3,60,000 फैमिलीज कवर होंगी। यानी अपने आप में ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक सोशल सिक्योरिटी नेट बना है।
2: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Canadian Foreign Minister Anita Anand today reviewed progress in India-Canada relations covering trade and investment, education, energy, defense and people-to-people exchanges. The two ministers held a meeting in New Delhi during which they also exchanged views on the key regional and global developments. In a social media post, Dr. Jayashankar said, India and Canada advancing the strategic partnership through leadership-level engagement and sustained cooperation between the governments and industries. Meanwhile, Meanwhile, Canadian Foreign Minister Anita Anand, in a social media post, has expressed optimism over the progress made in India-Canada relations, highlighting advances.

0: क्या आप जानते हैं कि यूनानी चिकित्सा में हल्दी को शक्ति और स्वास्थ्य बढ़ाने, शरीर को शुद्ध करने तथा त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में सहायक माना जाता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त यूनानी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं। दिल्ली स्ट्रीट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या आप जानते हैं कि मुनक्का खांसी, गले की खराश और जुकाम ठीक करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। मुनक्का को पानी में भिगोकर या ऐसे ही दूध के साथ लिया जा सकता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त यूनानी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं। दिल्ली स्ट्रीट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। गर्मी के मौसम में थकान, कमजोरी या शरीर में ज्यादा गर्मी महसूस होती है तो अपनाइए गोंद कतीरा। प्राकृतिक गुणों से भरपूर गोंद कतीरे को पानी में भिगोकर प्रतिदिन सेवन आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त यूनानी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं। दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या आप कमजोरी, थकान या मानसिक तनाव महसूस करते हैं तो अपनाइए चार मगज यानी कि तरबूज, खरबूजे, खीरे और कद्दू यानी पेठे के बीज, जिनका सम मात्रा में सेवन आपके शरीर एवं दिमाग को प्राकृतिक रूप से पोषण प्रदान करता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त यूनानी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं। दिल्ली स्ट्रीट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। गीत आपने सुना था, जी हाँ, फिल्म तीन देवियां से लता जी की आवाज और साथ थे किशोर कुमार। और अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म आई मिलन की बेला से, आवाज मोहम्मद रफी साहब की।

0: www.radiomirchi.in. Andrew Yule and Company Limited, a Government of India enterprise operating in the engineering, electrical and tea divisions, invites applications from eligible candidates for recruitment to a permanent position in its general division. The company has announced one vacancy for Officer Assistant Manager, Deputy Manager in Personnel and Administration, with the positions offered in grade E1, E2 and E3 depending on the applicable designation and eligibility criteria. Candidates should refer to the detailed advertisement for information regarding educational qualifications, professional experience, age limits, selection procedures and other conditions of recruitment. Reservation will be applicable in accordance with Government of India rules. Interested applicants can access the detailed notification and application instructions through the company's official website. For details, kindly look up www.andrewyule.com. The Zoological Survey of India, a subordinate office under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, invites applications for the engagement of a consultant, legal, on a purely contractual basis for an initial period of 1 year, which may be extended. The selected candidate will receive a consolidated remuneration of 70,000 rupees per month. Eligible applicants should consult the detailed vacancy circular, terms of reference and prescribed application form available on the official website. Applications along with supporting documents and certificates must be sent to the Director, Zoological Survey of India, Prani Vigyan Bhavan, M Block, New Alipur, Kolkata 700053. The application must reach the office within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly look up the website at www.zsi.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय रोजगार कार्यालय की ओर से प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार नेविगेशनल सहायक ग्रेड 3 के पदों को भरा जाना है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं 3 से 9 अक्टूबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र के अंक में। केंद्रीय जल आयोग प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रुप सी अराजपत्रित के 13 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। शैक्षिक योग्यता, पात्रता, वेतनमान, आरक्षण और तैनाती के स्थान की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट cwc.gov.in/recruitment। भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में स्टाफ कार ड्राइवर के 4 पद भरे जाने हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण और वेतनमान की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट cabsec.gov.in। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अनुसंधान अधिकारी, निजी सचिव और वैयक्तिक सहायक, ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। पात्रता संबंधी विस्तृत शर्तों, निर्धारित प्रपत्र की जानकारी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर www.ccsniam.gov.in। सैनिक स्कूल छिंगछिप मिजोरम में जीई आया महिला का 1 पद और वार्ड बॉय पुरुषों के 4 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट sschingchhip.mizoram.gov.in। महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल में विधि अधिकारी ग्रेड 2 उप कमांडेंट के 7 पद रिक्त हैं।

0: पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर bsf.gov.in। महानिदेशालय सशस्त्र सीमा बल में वरिष्ठ प्रशिक्षक पर्वतारोहण का एक पद रिक्त है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.recruitment.ssb.gov.in। SSB की मुख्य वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका पता है www.ssb.gov.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में इन पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद हैं प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और वरिष्ठ निवासी चिकित्सक। विस्तृत विवरण और अपडेट के लिए संस्थान की वेबसाइट देखिए। वेबसाइट है erp.iitkgp.ac.in/jobs। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निदेशक का एक पद रिक्त है। इसे भरने के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.iwai.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: Yes, the rhythmic beats of the dhak, the fragrance of devotion, the grandeur of beautifully decorated pandals, and the joy of welcoming Ma Durga. Yes, the festive spirit of Durga Puja is already here. Today, on the fourth day of Navratri, devotees worship Ma Kushmanda, the fourth manifestation of Goddess Durga.
1: यस अभिषेक, दुर्गा पूजा केवल एक त्योहार नहीं है, यह आस्था, साहस, संस्कृति और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत का उत्सव है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद और भक्ति से भरे दिलों के साथ आइए आज का विशेष कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे की इस मुलाकात में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं सकलैन अख्तर और मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
0: हेलो सकलैन, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट सकलैन। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi says country's civilizational journey shaped by centuries of cultural exchanges and sharing of knowledge.
1: भारत ने समुद्री और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रीय संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा।
0: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar says world is moving towards new international order with wide range of countries playing greater role in global affairs.
1: भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई।
0: IMD forecasts heavy rainfall of Jammu and Kashmir, Ladakh, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for today।
1: और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में।
0: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about khadi and village industries from tradition to enterprise. Well, Saklan, today we celebrate the spirit of self-reliance, the strength of rural India and the timeless legacy of khadi.
1: जब हम खादी के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर चरखे की तस्वीर मन में आती है। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान यह राष्ट्रवाद और स्वदेशी का एक सशक्त प्रतीक बन गया था। आज वही भावना देश भर में ग्रामीण उद्यमियों, कारीगरों और छोटे व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा कर रही है।
0: Absolutely, Saklan, and from honey and herbal products to banana fiber, textiles, handmade candles and incense sticks, traditional skills of finding new markets with the support of finance, technology, training and marketing, local resources are becoming the foundation of modern rural enterprises.
1: बिल्कुल, और यह सीधे तौर पर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के विजन से जुड़ता है, जो हमें स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों की अहमियत समझने और उन्हें बनाने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
0: And an important initiative in this direction is the Khadi Mahotsav, organized annually from 2nd October to 31st October. The campaign places particular emphasis on engaging young people, sensitizing them towards Khadi and vocal for local, and encouraging citizens to purchase Khadi and other indigenous products.
1: और इस साल के जश्न में एक खास आकर्षण भी है। नई दिल्ली के दिल्ली हाट INA में अभी खादी महोत्सव चल रहा है। यह आगंतुकों को खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों को देखने, परखने और साथ ही भारत की कारीगरी की समृद्ध परंपरा से सीधे जुड़ने का मौका देता है।
0: So if you are in Delhi, or a visit to Delhi Hat INA can be a wonderful way to discover local products and support rural artisans.
1: बिल्कुल अभिषेक, इस बढ़ते हुए इकोसिस्टम के पीछे खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित है। KVIC खादी और ग्रामोद्योग की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने के लिए जिम्मेदार है। इनके कामों में प्रशिक्षण और कच्चा माल उपलब्ध कराना शामिल है।
0: Its work spans training, raw materials, marketing, research, quality improvement and technical support, and the objective is to help traditional industries become more productive, competitive and sustainable.
1: और इसके नतीजे अहम हैं। 2025-26 के लिए दिए गए आंकड़ों के मुताबिक खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 1,87,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है, जो इस साल मई तक दर्ज किया गया सबसे ऊंचा स्तर है।
0: And Shaklen, these numbers tell an important story. Khadi is not just a fabric or a symbol of India's past. It is also a source of livelihood, income and opportunity for millions of people.
1: बिल्कुल अभिषेक, ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कौशल और प्रशिक्षण जरूरी है। KVIC 35 विभागीय और गैर विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों का नेटवर्क चलाता है, जो फूड प्रोसेसिंग, बेकरी, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती बनाने, मोमबत्ती बनाने और मोटर रिपेयरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देते हैं।
0: एंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, 79,682 ट्रेनीज रिसीव ट्रेनिंग अंडर वेरियस KVIC प्रोग्राम्स। Women accounted for 47,382 of these trainees, approximately 59% of the total.
1: इस क्षेत्र में उनका योगदान भी उतना ही उल्लेखनीय है। खादी क्षेत्र में लगभग 5,00,000 कारीगरों में से 80% से अधिक महिलाएं हैं।
0: And training is also supported by practical resources. Under the Gram Udyog Vikas Yojana, artisans receive modern machines, toolkits and equipment to improve productivity and strengthen their livelihoods.
1: साल 2025-26 के दौरान 37,769 मशीनें, टूल किट और उपकरण बांटे गए। मई 2026 तक इस स्कीम के तहत कुल बांटी गई चीजों की संख्या 3,23,000 से ज्यादा हो गई थी।
0: Yes, sir. Shaklen and other initiatives provide support at different stages of the production journey. The Khadi Vikas Yojana helps Khadi institutions improve products and respond to market demand. And under its modified market development assistance, 245 crore rupees was disbursed to 1,097 Khadi institutions during 2024-25, benefiting 1,45,484 artisans.
1: योग्य खादी संस्थान इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट स्कीम के तहत 4% सालाना की ब्याज दर पर रियायती क्रेडिट भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं वर्कशेड स्कीम कारीगरों को बेहतर प्रोडक्शन स्पेस और

0: Fashion Week 2026 and Lakme Fashion Week 2025, bringing traditional techniques together with modern design.
1: श्रोताओं, हाथ से काटे गए धागे से लेकर ग्लोबल मार्केट तक खादी का सफर ग्रामीण भारत की बदलती आकांक्षाओं को दिखाता है। पारंपरिक हुनर विकसित हो रहे हैं, स्थानीय संसाधनों से नए बिजनेस बन रहे हैं और कारीगरों को बड़े अवसर मिल रहे हैं।
0: Yes, and every time listeners, we choose a locally made product, we do more than make a purchase. We help sustain a skill, support an artisan's livelihood, and contribute to the growth of India's village industries.
1: तो आइए इस खादी महोत्सव में हम उन हाथों का जश्न मनाएं जो चीजों को बनाते हैं, उन परंपराओं का जो प्रेरणा देती हैं और उन उद्यमियों का जो स्थानीय उत्पादों को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं।
0: Do visit Khadi Mahotsav 2026 at Delhi Heart, INA, New Delhi and discover the diversity of Khadi and village industry products.
1: याद रखें, वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक नारा नहीं है, यह एक ऐसा फैसला है जो बदलाव ला सकता है।
0: With every thread, every craft and every enterprise, a stronger and more self-reliant India takes shape.
1: तो इसीलिए स्थानीय खरीदें, कारीगरों का समर्थन करें और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें।

और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। ओडिशा में दुर्गा पूजा का उत्सव इस बार आस्था, कलात्मकता और भव्यता के नए रंगों के साथ दस्तक दे रहा है। कहीं दुबई की आधुनिक वास्तुकला की झलक, तो कहीं ऐतिहासिक स्थानों की भव्यता, कहीं चार धाम की आध्यात्मिक अनुभूति, तो कहीं चांदी की बारीक तारकशी से सजी माँ दुर्गा की मनमोहक प्रतिभा। कटक और भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा की तैयारियां इस पर्व को खास बना रही हैं। इस पर एक रिपोर्ट।

0: राजधानी भुवनेश्वर में इस वर्ष कई पूजा पंडाल अपनी अनूठी सजावट के कारण चर्चा में है। बूमिखाल में दुबई की वास्तुकला से प्रेरित पंडाल तैयार किया जा रहा है, जहां बुर्ज खलीफा और अटलांटिस जैसे प्रसिद्ध स्थलों की झलक देखने को मिलेगी। वहीं नयापल्ली में वेटिकन सिटी के प्रसिद्ध सेंट पीटर्स बेसिलिका से प्रेरित पंडाल स्थापत्य और रचनात्मक का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। दूसरी ओर दमना में उत्तराखंड के चार धाम से प्रेरित भव्य प्रवेश द्वार श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव कराएंगे। इन प्रस्तुतियों में पारंपरिक धार्मिक आस्था और आधुनिक कलात्मक कल्पना का सुंदर मेल दिखाई देता है। कटक की दुर्गा पूजा अपनी विशिष्ट चांदी के तोरण और प्रसिद्ध तारकशी कला के लिए जानी जाती है। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के पीछे चांदी से तैयार किए गए कलात्मक पृष्ठभाग, आकर्षक सजावट और रोशनी से जगमगाते हुए पूजा मंडप इस उत्सव की अलग पहचान है। इस वर्ष शंकरपुर बादामबाड़ी की पूजा भी विशेष चर्चा में है, जहां लंबे समय से हर पार्वती की पूजा की परंपरा है, पहली बार माँ दुर्गा की आराधना की जा रही है। परिक्रमा के लिए मैं इतिश्री सिंह राठौर।
1: Kolkata is buzzing with excitement as Durga Puja draws closer. Today is Chaturthi and the festive spirit is already in the air. Colorful pandals, bright lights and the sound of dhak drums have brought the city to life. We have a report from a correspondent.
2: Preparations are in full swing, with pandals getting their final touches. Many people have already stepped out to enjoy the festive atmosphere, visit pandals and shop for the celebrations. With crowds growing, the police and local authorities are taking steps to manage traffic and ensure safety. For Bengalis, Durga Puja is more than a festival. It is a time for joy, tradition and togetherness. As the city lights up on Chaturthi, excitement is building for the arrival of Goddess Durga and the celebrations ahead. Sandeep Bandashgupta, Akashvani News, Kolkata.

0: शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना की जा रही है। गोरखपुर के बुढ़िया माई मंदिर, वाराणसी के विशालाक्षी माता मंदिर तथा मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है।
1: शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्तिपीठ, तरकुलहा देवी मंदिर, बुढ़िया माई मंदिर, वाराणसी के दुर्गा कुंड और विशालाक्षी माता मंदिर, जौनपुर के मां शीतला चौकिया धाम और बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ में श्रद्धालु मां दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा देवी के दर्शन कर चुनरी, पुष्प और प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। अयोध्या के बड़े देवकाली, छोटी देवकाली, जलपा देवी मंदिर और महाराजगंज के लेहड़ा देवी मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में मां कुष्मांडा से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, ऊर्जा और सकारात्मकता के संचार की कामना की है। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल में लगे शारदीय नवरात्र मेले में पहले दिन से ही भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा कर रहे हैं। सीतापुर के नैमिष आरण्य में स्थित शक्तिपीठ मां ललिता देवी मंदिर में कई जिलों से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: Call for One Nation, One Port gained momentum as the 21st Maritime State Development Council concluded yesterday in Mumbai with landmark outcomes for India's maritime sector. Our correspondent has more.
3: Finance Minister of Gujarat, Kanubhai Desai, Ports Minister of Goa, Digambar Kambat, and ministers from Maharashtra and Puducherry also took part in the meeting. During the deliberations, the Council adopted the Maritime India Vision 2030 and Maritime Amritkal Vision 2047 targets. They together identify over 500 initiatives across ports, shipping, inland waterways, shipbuilding, green shipping, and global collaboration. In a major step towards ease of doing business, the Council resolved that the One Nation One Port process reforms, including One Nation One Documentation, to be implemented across all ports by March 2027. A significant announcement was made by Union Minister Sarbananda Sonowal, introducing two specialized credit risk insurance products for shipbuilding industry, and he further said that
4: to make India one of the powerful shipbuilding nation, whatever ecosystem is required, whether it is for the creation of quality workforce and also the essential kind of infrastructure facility in and around, everything will be developed within the country so that India could become a self-reliant nation.
3: The decisions taken at the meeting are expected to accelerate the modernization of ports and support the growth of India's maritime sector. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
0: श्रोताओं, शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध गुजरात में अब बरडा जंगल भी एशियाई शेरों का नया ठिकाना बना है। वैसे तो एशियाई शेर दुनिया में सिर्फ गिर के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन अब वे अपने पारंपरिक दायरे से बाहर भी फैल रहे हैं। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार बरडा वन्यजीव अभयारण्य शेरों के लिए लंबे समय तक टिके रहने और बसने की एक उपयुक्त जगह बन सकता है। एक रिपोर्ट।
5: पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिलों में फैला बरडा जंगल एशियाई शेरों के लिए एक नया ठिकाना बन गया है, क्योंकि यह अभयारण्य अब शेरों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में उभर रहा है। सौराष्ट्र में स्थित बरडा वन्यजीव अभयारण्य 192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार बरडा जंगल में शेरों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आवश्यक निवास स्थान, पर्याप्त शिकार और अनुकूल पर्यावरणीय स्थितियां मौजूद है। इस बारे में गुजरात के वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाड़िया ने कहा कि
6: आज 26 सिंह का परिवार सेटल हो चुका है और उसके पर एक साइंटिफिक संशोधन किया गया है। ये संशोधन के मुताबिक वहाँ सिंहों के लिए जो उसकी फूड चेन है वो उपलब्ध है, पूरा एरिया भी, इकोसिस्टम भी उनके लिए अनुकूल हो गया है।
5: गिर से आगे एशियाई शेरों के लिए एक संभावित गढ़ के रूप में बरडा वन्य जीव अभयारण्य नामक एक शोध पुस्तक PLOS-1 जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसमें उन शेरों के रेंज, इस्तेमाल, रहने की जगह और खान पान की आदतों की जांच की गई है, जो लगभग 144 साल के बाद बरडा जंगल में वापस लौटे हैं और इस इलाके में प्राकृतिक रूप से रह रहे हैं। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं प्रवेश अड़ियेचा।
2: In Nagaland, the 9th Rashtriya Poshan Maha brought communities together to record over 25,000 activities joining

0: श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ आवाजें ऐसी हैं जो वक्त के साथ भले ही पुरानी हो जाएं, लेकिन उनकी अहमियत कभी कम नहीं होती। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक कलाकार जिन्होंने भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में अपनी आवाज से एक नया इतिहास रचा। ये थे अभिनेता गायक वजीर मोहम्मद खान, जिनकी आज पुण्यतिथि है। एक समय था जब फिल्मों में आवाज नहीं होती थी, कहानियां इशारों, हाव भाव और भावनाओं के जरिए पर्दे पर दिखाई जाती थी। लेकिन वर्ष 1931 में आई फिल्म आलम आरा ने भारतीय सिनेमा की दुनिया बदल दी। यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी और इसी फिल्म में एक गीत था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे।
1: दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है।
2: Yes, and Pandit Nikhil Ranjan Banerjee was born on this day in 1931. He was a legendary Indian classical sitarist and composer of the Maihar Gharana. Alongside Pandit Ravi Shankar and Ustad Vilayat Khan, he is revered as one of the trinity of the leading 20th century exponents who elevated the sitar to global acclaim. Unlike his more commercially prominent contemporaries, Banerjee maintained a low profile and approached music as a deeply spiritual path to self-realization. He received the Padma Shri in 1968, Sangeet Nat Academy Award 1974-75 and Padma Bhushan in 1980.

0: एस यू आर लिसनिंग टू राग हेमंत बाय पंडित निखिल रंजन बैनर्जी।
1: श्रोताओं, आज जयंती है वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की। वे असमिया साहित्यकार थे। उनके द्वारा रचित उपन्यास इयारू इंगम के लिए उन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार असमिया से सम्मानित किया गया था। 1979 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए सकलेन अख्तर और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
3: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
3: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है। भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
2: उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है।
3: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
3: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। और पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। जन्म से उनकी संख्या बहुत बढ़ेगी, करीब करीब 27 लाख दिव्यांगजन इस पेंशन के कार्यक्रम में लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
2: मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री का संदेश संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने पढ़कर सुनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना

होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.21 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, 5:11 और ठीक 2 सेकंड देविका हाजिर है लेकर गाते गुनगुनाते। श्रोताओं, कहते हैं कि जिंदगी में कुछ मुलाकातें बहुत जरूरी होती हैं, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ एहसास दिल में छिपे रह जाते हैं और कभी कभी किसी अपने से मिलने की चाह दिल को बेचैन कर देती है ना, क्योंकि जब दिल में मोहब्बत हो तो एक मुलाकात भी हजारों खुशियां दे जाती है। तो आइए आज की शाम को मोहब्बत के नाम करते हैं, एक ऐसा गीत जो दिल की इस ख्वाहिश को बयां करता है कि चाहे कितनी भी दूरियां हो, कितना भी इंतजार करना पड़े, अपने सनम से एक मुलाकात तो जरूरी है।

0: जसपिंदर नरूला जी की आवाज में आपने कव्वाली सुनी और इसे साथ में गाया था साबरी बंधु ने। फिल्म थी सिर्फ तुम और संगीतकार थे नदीम श्रवण और लिखा था इस कव्वाली को समीर साहब ने। सुन रहे हैं आप गाते गुनगुनाते सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: गर्मी के मौसम में थकान, कमजोरी या शरीर में ज्यादा गर्मी महसूस होती है तो अपनाइए गोंद कतीरा। प्राकृतिक गुणों से भरपूर गोंद कतीरे को पानी में भिगोकर प्रतिदिन सेवन आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त यूनानी चिकित्सा सुविधाओं

0: का लाभ उठाएं। दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
2: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
1: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
3: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
4: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
5: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
6: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
6: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
5: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
7: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
8: कि आपके लाइफ में भी, आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिससे मिलने का दिल बार बार करता है? कोई पुराना दोस्त, कोई अपना या कोई ऐसा खास इंसान जिसके साथ बिताए हुए पल आज भी आपके चेहरे पे मुस्कान ले आते हैं। लीजिए, आ गई ना मुस्कान। रिश्तों की यही तो खूबसूरती है, दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिल से दिल का रिश्ता कभी कम नहीं होता। तो अपनी यादों को दिल में संजो के रखिए, अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए और मुलाकातों को जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा बनाइए, क्योंकि कुछ रिश्तों में शब्दों से ज्यादा एक मुलाकात मायने रखती है और कुछ एहसास सिर्फ सामने बैठकर ही बयां किए जा सकते हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों, पूछना क्यों।
2: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: खूबसूरत सा गीत फिल्म साजन से आपने सुना, समीर साहब के बोल, नदीम श्रवण का एक बार फिर संगीत, एसपी बाला सुब्रमण्यम, और साथ ही साथ ये थी अनुराधा पोडवाल की आवाज और कुमार सानू थे साथ में, क्षमा कीजिएगा। और आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: क्या आप जानते हैं कि यूनानी चिकित्सा में हल्दी को शक्ति और स्वास्थ्य बढ़ाने, शरीर को शुद्ध करने तथा त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में सहायक माना जाता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त यूनानी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं। दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
2: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट

0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
1: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
2: गाते गुनगुनाते सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और देविका है आपके साथ। श्रोता, मोहब्बत सिर्फ किसी को पा लेने का नाम नहीं, बल्कि हर हाल में उसके साथ रहने का नाम है, साथ निभाने का नाम है। क्योंकि जानम, खूबसूरत चेहरे तो बहुत मिलते हैं जिंदगी में, मगर दिल को सुकून देने वाला साथ हर किसी को नहीं मिलता।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?
2: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप द्वारा जनहित में जारी।

0: यहाँ फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत का सबसे बेहतरीन गीत आपने सुना, आनंद बख्शी साहब के बोल, विजू शाह जी का संगीत और आवाज हरिहरन की।
1: कमजोरी, थकान या मानसिक तनाव महसूस करते हैं तो अपना ये चार मगज यानी कि तरबूज, खरबूजे, खीरे और कद्दू यानी पेठे के बीज, जिनका सम मात्रा में सेवन आपके शरीर एवं दिमाग को प्राकृतिक रूप से पोषण प्रदान करता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त यूनानी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं। दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: गाते गुनगुनाते सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। श्रोताओं, कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है, लेकिन क्या खूबसूरती सिर्फ गोरे रंग, सुंदर चेहरे और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में छिपी होती है? बिल्कुल नहीं। असली खूबसूरती है आपकी मुस्कान में, आपके आत्मविश्वास में, आपके अच्छे व्यवहार में। आपकी त्वचा का ख्याल जरूर रखिए, खूब पानी जरूर पीजिए, संतुलित भोजन जरूर कीजिए और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खुद से प्यार कीजिए। मेकअप आपकी खूबसूरती को निखार सकता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपकी पहचान बनाता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को भी स्वीकृति दी है।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, एमएसएमई को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया है। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,623 पर आया। आनंद कुमार विल कुमार ने पराग्वे में स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। आनंद कुमार प्रतियोगिता में अब तक 2 पदक जीत चुके हैं। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2

एक से आगे है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Cricket India will face the West Indies in the fourth T20 International in Hyderabad today. The match will begin at 7 p.m. IST. Benchmark domestic equity indices ended in the negative zone today. The Sensex dropped 252 points to close at 72,782. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में चरखे और खादी की एक खास पहचान रही है। महात्मा गांधी ने खादी को केवल कपड़े तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की भावना से भी जोड़ा। आज यही भावना गांव में नए उद्यमों और रोजगार के अवसरों के रूप में आगे बढ़ रही है। शहद, हर्बल उत्पाद, अगरबत्ती, कपड़े और केले के रेशे से बनने वाले सामान जैसे कई उत्पाद गांव में स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक हुनर की मदद से तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और नई तकनीक की भी भूमिका है। इसी सोच को आगे बढ़ाने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आयोग का उद्देश्य खादी और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, कारीगरों को प्रशिक्षण देना और उत्पादों की बिक्री के अवसर बढ़ाना है। खादी को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खादी महोत्सव मनाया जाता है। इसके माध्यम से खासकर युवाओं को खादी और वोकल फॉर लोकल के प्रति जागरूक किया जाता है और स्थानीय उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आज के विश्लेषण के माध्यम से जानेंगे कि खादी और ग्रामोद्योग किस तरह ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, कारीगरों को सरकारी योजनाओं से किस प्रकार सहायता मिल रही है और गांव में तैयार होने वाले उत्पाद देश विदेश के बाजारों तक कैसे पहुंच रहे हैं। आइए सुनते हैं पहली रिपोर्ट।
3: खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। ये एक वैधानिक संस्था है जिसका काम खादी और ग्रामीण उद्योगों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और उनके विकास में सहायता करना है। इसके अंतर्गत कारीगरों को प्रशिक्षण देने, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादों की बिक्री, अनुसंधान और गुणवत्ता में सुधार जैसे काम शामिल हैं। इन प्रयासों का असर क्षेत्र की बिक्री और उत्पादन के आंकड़ों में भी दिखाई देता है। वर्ष 2013-14 की तुलना में 2025-26 में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में 501% की वृद्धि दर्ज की गई। मई 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन उत्पादों की बिक्री 1,87,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई। इसी अवधि में उत्पादन में 380% की बढ़ोतरी हुई और ये बढ़कर 1,25,296 करोड़ रुपए हो गया। इस क्षेत्र में रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या भी 56% बढ़कर 2,04,00,000 हो गई। कारीगरों को मिलने वाले मेहनताने में भी वृद्धि हुई है। खादी के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले धागे की एक इकाई जिसे हांक कहा जाता है के लिए मिलने वाला मेहनताना वर्ष 2013-14 में 4 रुपए था, अब ये बढ़कर 15 रुपए प्रति हांक हो गया है। एक हांक में 840 गज लंबा धागा होता है जिसका वजन 1 पाउंड के बराबर होता है। ग्रामीण उद्योगों को मजबूत करने के लिए कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। KVIC के देश भर में 35 विभागीय और गैर विभागीय प्रशिक्षण केंद्र हैं। यहाँ खाद्य उत्पाद बनाने, बेकरी, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती बनाने और मोटर मरम्मत जैसे कामों का प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 79,682 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 47,382 महिलाएं थी, यानी कुल प्रशिक्षित लोगों में लगभग 59% महिलाएं शामिल रहीं। खादी क्षेत्र में करीब 5,00,000 कारीगर काम करते हैं जिनमें 80% से अधिक महिलाएं हैं। ऐसे में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल हुनर सीखना ही पर्याप्त नहीं है, किसी काम को व्यवसाय में बदलने के लिए आर्थिक सहायता, जरूरी उपकरण और बाजार तक पहुँच भी चाहिए।
2: ग्रामीण क्षेत्र में कोई छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी, मशीनों और प्रशिक्षण की जरूरत होती है। कई बार लोगों के पास काम करने का हुनर और अच्छा विचार तो होता है, लेकिन संसाधनों की कमी उनके रास्ते में बाधा बन जाती है। सरकारी योजनाएं इस अंतर को कम करने का प्रयास करती हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और ग्रामोद्योग विकास योजना इसी दिशा में काम

0: कर रहे हैं। अब सुनते हैं विशेष रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। मार्च 2008 से शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत KVIC के माध्यम से अब तक लगभग 97,95,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार हुए हैं। इसका एक उदाहरण बिहार के श्री जितेंद्र बैठा है। उन्होंने वर्ष 2020 में बेकरी उत्पाद बनाने की इकाई शुरू की। आज उनके व्यवसाय का सालाना कारोबार 72 लाख रुपए है और उनकी इकाई स्थानीय समुदाय के 20 लोगों को रोजगार दे रही है। ये उदाहरण बताता है कि उचित सहायता और उद्यम शुरू करने के अवसर मिलने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा किया जा सकता है। कारीगरों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामोद्योग विकास योजना भी चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत पारंपरिक काम करने वालों को मशीनें, टूल किट और दूसरे जरूरी उपकरण दिए जाते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 37,769 मशीनें, टूल किट और उपकरण वितरित किए गए। मई 2026 तक योजना के अंतर्गत कुल 3,23,000 से अधिक मशीनें, टूल किट और उपकरण बांटे जा चुके थे। इसके साथ ही खादी संस्थानों को बेहतर उत्पाद तैयार करने और बाजार की मांग के अनुसार अपने काम में बदलाव करने में भी मदद दी जा रही है। खादी विकास योजना के अंतर्गत संशोधित बाजार विकास सहायता की व्यवस्था है। इससे खादी संस्थानों को उत्पादों में सुधार, उनकी कीमत तय करने और बाजार की जरूरतों के अनुसार काम करने में मदद मिलती है। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बेहतर कामकाजी परिस्थितियां, आधुनिक उपकरण और वित्तीय सहायता मिलने से कारीगर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठा सकते हैं। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आज बाजार में किसी उत्पाद की सफलता उसकी गुणवत्ता के साथ साथ उसकी पहचान और ग्राहकों तक पहुंच पर भी जरूरी है। इसलिए ग्रामीण उद्योगों के लिए ऑनलाइन बिक्री, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों जैसे माध्यम महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इनके जरिए स्थानीय उत्पादों को देश के दूसरे हिस्सों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने का अवसर मिलता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उद्यमों के बारे में जिन्होंने स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक हुनर के सहारे अपना कारोबार आगे बढ़ाया है।
2: पंजाब के श्री SP सिंह ने KVIC के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की सहायता से शहद और कुकीज का व्यवसाय शुरू किया। आज उनका उद्यम लगभग 200 लोगों को रोजगार देता है और उसके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी पहुंच रहे हैं। वर्ष 2010 में सहायता मिलने के बाद उनके व्यवसाय ने धीरे धीरे विस्तार किया। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने से उन्हें विदेशों के खरीदारों से संपर्क बनाने में मदद मिली। KVIC ने दुबई, अमेरिका और मध्य पूर्व में आयोजित प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए भी सहायता की। आज उनका व्यवसाय 36 देशों में उत्पादों का निर्यात करता है। अब वे यूरोपीय बाजारों में शहद का निर्यात बढ़ाने के लिए पंजाब में राजपुरा में दूसरी इकाई विकसित कर रहे हैं। ये उदाहरण दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ व्यवसाय सही सहायता और बाजार संपर्क के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बना सकता है। एक अन्य उदाहरण कर्नाटक के श्री B सुंदर राज का है। उन्होंने स्थानीय रूप से उपलब्ध वेटिवेर नाम के सुगंधित पौधे से जुड़े उत्पादों को अपने व्यवसाय का आधार बनाया है। वे अगरबत्ती, हर्बल उत्पाद, वेटिवेर अगरबत्ती और वेटिवेर सांबराणी जैसे उत्पाद बनाते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत सहायता मिलने से उनकी उत्पादन क्षमता मजबूत हुई और उत्पादों की विविधता बढ़ाने में मदद मिली। इन उदाहरणों के साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग उत्पादों की बिक्री के लिए नए माध्यम भी विकसित कर रहा है। खादी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.khadiindia.gov.in पर कपड़े, फैब्रिक, किराना सामग्री, सौंदर्य उत्पाद, एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम और अगरबत्ती जैसे कई उत्पाद उपलब्ध हैं।
0: तो आज के विश्लेषण में हमने जाना कि खादी और ग्रामोद्योग ग्रामीण भारत में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 2025-26 में क्षेत्र की बिक्री 1,87,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंची। उत्पादन और रोजगार में वृद्धि के साथ कारीगरों के मेहनताने में भी सुधार हुआ है। प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, आधुनिक उपकरण और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाएं ग्रामीण उद्यमों को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। बिहार, पंजाब, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के उदाहरण बताते हैं कि स्थानीय हुनर और संसाधनों के सहारे रोजगार पैदा करने और व्यवसाय को बड़े बाजारों तक ले जाने के अवसर मौजूद हैं। खादी और ग्रामोद्योग की असली ताकत यही है कि गांवों में मौजूद हुनर और संसाधनों को रोजगार और आर्थिक अवसरों में बदला जाए। इससे वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की भावना को भी आगे बढ़ाया जा सकता है।

इसी के साथ आज का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम को तैयार किया हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य महती स्वीकृतिः। एकादश दशांश चतुः शून्यम् लक्ष परिमितेभ्यः रेल कर्मचारिभ्यः अष्टसप्ततिः दिनानां पारितोषिकम् अनुमोदितम्। राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रमः च एकत्रिंशदुत्तर द्विसहस्रतम वर्ष पर्यन्तम् विस्तारितः। वित्तीय क्षेत्रे मन्त्रिमण्डलस्य ऐतिहासिकः निर्णयः। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमानां नूतन उद्यमानां च संवर्धनाय IDBI बैंक संस्थायाः रणनीतिक पुनर्संरचनायै मन्त्रिमण्डलस्य स्वीकृतिः। जागतिक ज्ञान सांस्कृतिक आदान प्रदानेषु भारतस्य ऐतिहासिकम् अवदानम् अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सप्रश्रयम् समुद्घोषितम्। भारत कैनेडा देशयोः रणनीतिक सहभागितायाः नूतनः अभ्युदयः। वाणिज्य ऊर्जा रक्षा शिक्षा क्षेत्रेषु परस्पर सहयोगस्य दृढीकरणाय संकल्पः। अपि च हैदराबाद नगरे अद्य भारत वेस्टइंडीज दलयोः चतुर्थः T20 अन्ताराष्ट्रिय सम्मुखीकरणं भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। उत्कृष्ट प्रदर्शनाय 44,000+ रेल कर्मचारिणः 78 दिनानां वेतनातुल्यं उत्पादकता सम्बद्ध पारितोषिकं लप्स्यन्ते। मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयं श्रावयता अश्विनी वैष्णवेन प्रोदीरितं यत् पर्वणः प्राग् दीयमानम् एतत् पारितोषिकं कर्मचारिणां कार्यप्रेरणाम् उत्कर्षयिष्यन्ति।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: केंद्रीय मन्त्रिमण्डलेन राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रमस्य आगामि पञ्चवर्षाणां कृते 28,43,50 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन विस्तारः स्वीकृतः। अनेन दिव्याङ्गजन पेंशन राशिः वर्धिता। दिव्याङ्गतायाः मानदण्ड सीमा 80% न्यूनीकृत्य 40% यावत् विहिता। तथा हि न्यूनतम वयः सीमा जन्मतः एव निर्धारिता इति सूचना मंत्रिणा अश्विनी वैष्णवेन समाख्यातम्।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य महती स्वीकृतिः। IDBI बैंक संस्थायाः रणनीतिक पुनर्संरचना च निर्णीता। मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन समाख्यातं यत् देशस्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमानां तथा नूतन औद्योगिक उपक्रमाणां समभ्युदये अस्याः संस्थायाः महती भूमिका वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना अद्य प्रतिपादितं यत् देशस्य सभ्यता यात्रा शतकानां सांस्कृतिक विनिमयेन ज्ञान सहभाजनस्य च परम्परया निरूपिता वर्तते। विश्वे भारतस्य सांस्कृतिक सम्पर्काणाम् उपरि आयोजितायाः अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठ्याः उद्घाटनसत्रे प्रेषिते सन्देशे

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में अर्जुन।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,623। इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन सर्जेस टू 11.39% इन सितंबर दिस ईयर एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी प्रोजेक्ट्स ग्लोबल ऑयल सप्लाई टू डिक्लाइन बाय 5.8 मिलियन बैरल्स पर डे। फोरकास्ट ऑयल डिमांड टू फॉल बाय 2.6 मिलियन बैरल्स पर डे इन 2026।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख, सेंसेक्स में 250 से ज्यादा अंकों की सुस्ती, निफ्टी 22,623 पर बंद हुआ। भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक तेल आपूर्ति में 58 लाख बैरल प्रतिदिन कमी का अनुमान व्यक्त किया। तेल की मांग में 26 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट की बात कही।

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज का कारोबार उतार चढ़ाव से भरा रहा और अंत में गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 252 अंक यानी 0.34% गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। निफ्टी 99 अंक यानी 0.44% लुढ़क कर 22,623 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप सूचकांक में 0.1% की मामूली गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% नीचे पहुंच गया।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन अ नेगेटिव जोन इन अ वोलेटाइल ट्रेड टुडे। सेंसेक्स ड्रॉप्ड 252 पॉइंट्स 0.34% टू क्लोज एट 72,782। निफ्टी डिप 99 पॉइंट्स 0.44% टू सेटल एट 22,623। इन द ब्रॉडर मार्केट एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द मिड कैप 100 इंडेक्स eked out a marginal loss of 0.1% while the small cap 100 index fell 0.3%।
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से आज 19 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में बजाज फाइनेंस 2.5% से अधिक लुढ़का, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.2% से अधिक गिर गया और बजाज फिनसर में 2% की सुस्ती देखी गई। इसके विपरीत इंफोसिस में 2.5% का उछाल आया, टेक महिंद्रा 2.2% के लाभ में रहा और टीसीएस में 1.5% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 17 आउट ऑफ द 28 सेक्टर्स lower among the top laggards. Housing finance dropped 1.1%, insurance slipped 1% and healthcare dipped over 0.9%. In contrast, utilities surged nearly 2.1%, power advanced over 1.7% and IT gained 1.4%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,563 companies advanced, 1,810 companies declined and 205 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 13 पैसे की मजबूती के साथ 95.15 रुपए पर बंद हुआ। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो बाजार की चाल रही, जिस तरह से बाजार में उतार चढ़ाव हमने देखा और अंत में गिरावट भी नजर आई, किन कारणों को इनके पीछे जिम्मेदार मानते हैं, क्या स्थितियां रही जिनसे बाजार की ऐसी स्थिति हमारे सामने नजर आई?
2: देखिए निखिल जी, काफी अरसे से मार्केट का जो टेक्सचर है बड़ा खराब चल रहा है और कल थोड़ी उम्मीद हमें लग रही थी, जिस तरह कल मार्केट में काफ़ी अच्छा उछाल आया था, लेकिन आज फिर लुढ़क गया
1: जी।
2: तो टेक्सचर बड़ा वीक है, उसके कई कारण हैं। एक तो जैसे आप अपने न्यूज़ रीड आउट में क्रूड ऑयल का जिक्र किया आपने, वो उसमें फिर उछाल आ गया क्योंकि मिडल ईस्ट की जो समस्या है और जटिल हो गई। अब वो नॉट ओनली पर्शियन गल्फ में इशू हो रहा है, उधर रेड सी में भी जो हूतीज का हमले हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और जो डेली सप्लाई है मिडल ईस्ट से वो बहुत उसको फ़र्क पड़ा है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट ख़राब हो गया। और दूसरा ये है कि पूरे संसार में इस टाइम महंगाई का काफ़ी आलम है और महंगाई जो है एक पूरे संसार में एक समस्या बनी हुई है
1: जी।
2: चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, अबर अभी आपने जिक्र किया WPI का इंडिया में, हमारे यहाँ भी को तो WPI फिर बाद में कंज्यूमर प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं मिला के ओवरऑल सेंटीमेंट को ख़राब करे हुए थे और इसी वजह से ये सारे फैक्टर्स मिल के आज में जो मार्केट में हुआ वो वॉलेटिलिटी है वो चालू है अभी भी।
0: Well, how do you expect the markets to behave, especially with the disinvestment announcement by the cabinet today? Because we're talking about close to market closing hours. How do you see that really pushing the PSU bank index and Nifty Bank for that matter? Even though Nifty Bank fell by 0.3%, the PSU bank index went up by 1.63%. How do you see disinvestment, where almost 61% of the bank has been disinvested to a foreign entity?
2: Well, that only would send a signal. They were talking about one bank being disinvested. Well, that would send a signal that the government is serious about disinvesting and doing some restructuring or reforms in the banking sector. But it's a small bank at the end of the day. But it sends a signal that, you know, the disinvestment or the commitment to disinvestment is serious. Beyond that, I don't think it would impact greatly.
0: But for a trigger of the market, you know, we're talking about stake sale and even the second quarterly earnings, which is being reported right now. For instance, IT has reported strong numbers, which is why we have seen that the IT index actually went up by 1.4%. Fundamentally speaking, do you expect the market to be able to beat the negative headwinds? What's happening right now?
2: Well, when it comes to second quarter results, it's too early. It's just started. The earning season has just started. When it comes to IT in particular, you always know that there is a reverse trade between AI play and the IT. So today, for a change, you could see that even the reverse play sometime was not that kind of a reverse. But IT, because the valuation were too tempting sometimes, because the valuations had dragged so much. And another signal emerging from the IT majors was that some of our Indian IT companies are now able to negotiate this entire AI challenge, because some of them, for instance, India's largest IT company derives at least 10% of its revenue in association with AI tools or AIC structure. They are playing ball with the AI rather than now, because they have realized that you can't go against the wind. So you play ball with the AI. So that kind of signal is emerging. Or is it too early to say whether this trend would sustain? Because as I said earlier, the texture of the market today is quite weak, and because of various factors that I listed before, and we have to be very cautiously approaching the market.
0: A strong percentage of the revenue of IT companies is from artificial

0: IT companies are doing it very efficiently now. That's the signal. So IT is a renewed hope is emerging around the IT companies at the moment.
1: प्रकाश जी, अभी मार्केट को अगर देखें, एनालाइज करें, तो एक दिलचस्प सी चीज नजर आती है कि अब जो बिकवाली हो रही है वो व्यापक पैमाने पर हो रही है, सेक्टर वाइज से कहीं आगे बढ़कर के व्यापक तरीके से पैसा निकाला जाना, ये कैसा, मतलब किस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने है? क्या इसमें FIS का ज्यादा रोल है या DIS का ज्यादा रोल है, या समय की मांग है कि इस तरह का होना चाहिए?
0: ये तो मार्केट प्ले है और ये तो जग जाहिर है कि FIS यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसको अगर एक चीज़ में थोड़ी अगर किसी ने स्टेबिलिटी दी है उस आउटफ्लोज को रोकने की या उस आउटफ्लो को न्यूट्रलाइज करने की काफ़ी हद तक, वो हमारे DIIs ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से दी है
1: जी।
0: और DIIs जो है वो फिर म्यूचुअल फंड पे काफ़ी डिपेंड कर रहे हैं। जो आम मिडिल क्लास का इन्वेस्टर का पैसा है, जो तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया हर मंथ में आ रहा है इक्विटी में सिप से, और बहुत क्रेडिट देना चाहिए हमारे मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स का कि वो इतनी मैच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि घबरा नहीं रहे। उनको अगर नेट एसेट वैल्यू NAV कम भी दिखता है तो वो इस चीज में अपनी उम्मीद रखे हुए हैं कि नहीं, थिंग्स विल टर्न अराउंड। तो ये सारी चीजें FIIs तो जा रहे हैं बिकॉज कैपिटल के जो एवेन्यूज हैं वर्ल्ड में हर जगह हैं, तो वो लोग माप तोल करते रहते
1: जी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग यानी रणनीतिक पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नए उद्योगों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि बैंक के लिए एक रणनीतिक साझेदार चुना गया है और इसकी मदद से बैंक में नई पूंजी लगाई जाएगी। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि भारत सरकार और LIC पुनर्गठित इकाई में 34% हिस्सेदारी अपने पास बनाए रखेंगे। प्रकाश जी, जब भी इस तरह की बात होती है, रणनीतिक पुनर्गठन को मंजूरी दी जाती है, कई सारी योजनाएं उसके पीछे काम कर रही होती, कई सारी नई चीजें लाने की सामने बात हो रही होती है, ऐसे में ये कहा जाना कि नई पूंजी लगाई जाएगी, नई बातें होंगी, और खासतौर पर सरकार ये भी कह रही कि भारत सरकार और LIC इस पुनर्गठित इकाई में 34% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी, इसके क्या मायने बनते हैं?
0: देखिए निखिल जी, किसी भी बैंक को आगे बढ़ने के लिए लगातार पूंजी चाहिए। ये टेलीकॉम सेक्टर की तरह है
1: जी।
0: अगर बैंक को किसी, इवन बेस्ट ऑफ द बैंक्स, अगर आगे बढ़ना है तो उसको हमेशा पूंजी चाहिए, क्योंकि आपने लेंडिंग करनी है। तो लेंडिंग और कैसे बढ़ाएंगे जब तक आपकी अपनी पूंजी या वो खाली जो आपका पब्लिक का डिपॉजिट होता है, व्हाट इज नोन एज अंग्रेजी बोलते कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आपका अपना भी कितना पैसा है, व्हाट इज योर ओन स्किन इन द गेम। तो वो उसके लिए अगर आपको किसी भी बैंक को आगे बढ़ना तो एडिशनल पूंजी चाहिए। तो सरकार ने अपनी विजडम में सोचा होगा और सोचा है कि इस बैंक को अगर पूंजी एक स्ट्रेटजिक पार्टनर मिला लेते हैं तो वही क्या।
1: बैंक की स्थिति भी हमने देखा है कि पिछले दिनों में बेहतर ही नजर आई है।
0: हाँ, क्योंकि तभी तो स्ट्रेटजिक पार्टनर आएगा ना आपके, उसमें तो आया स्ट्रेटजिक पार्टनर।
2: सो यू सी द क्रेडिट towards MSMEs improving as a result of this FDI stake into IDBI by Fairfax Financial Holdings Limited?
0: Well, in the overall scheme paradigm of banking, this is one of the small banks. It's not a big bank. So the credit, when you say credit growth anyways has been quite a steady, quite an impressive credit growth in the last few months. तो वो कोई इशू नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ इज नॉट अ इशू। व्हेन इट कम्स टू MSMEs, इट्स अपॉन द इंडिविजुअल बैंक टू डिसाइड व्हाट इज द काइंड ऑफ मिक्स दैट इज गोइंग टू काइंड ऑफ फॉलो। इज इट गोइंग टू डू पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस? एंड ऑफ लेट पर्सनल फाइनेंस हैज बीन द फ्लेवर ऑफ द सीजन, बट यू डोंट नो कॉर्पोरेट। बट व्हेन इट कम्स टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बैंक्स, दे प्रेफर MSME, they prefer, but there's enough competition. So credit growth should be there, but we'll see. But it sends a good signal, as I said earlier, to induct a strategic partner.
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से थोक महंगाई दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबर, प्लास्टिक और बिजली के

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्राची प्रिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,991 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, MSMEs को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रैटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुकों, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जनसमुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने बताया कि ये हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,623 पर स्थिर हुआ। आनंद कुमार वेलकुमार ने पराग्वे में आयोजित विश्व स्केटिंग खेलों में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता। 4 मिलीसेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Union Cabinet has approved a productivity linked bonus PLB of 78 days for more than 11,40,000 eligible railway employees in recognition of the performance. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today.
4: The cabinet today approved a productivity linked bonus equivalent to 78 days wages for around 11,40,770 railway employees. The bonus is a Diwali gift for all railway employees who work tirelessly day and night to ensure the smooth functioning of the Indian Railways. The total financial outlay for the bonus is approximately 2009 crore rupees.
3: Mr. Vaishnaw also said large-scale recruitment is underway in the railway, so the recruitment will be carried out for around 1,65,000 posts. The Union Minister said government has also approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. He said the cabinet has approved the strategic restructuring of IDBI Bank. Prime Minister Narendra Modi has said India's civilizational journey has been shaped by centuries of cultural exchange and the sharing of knowledge across borders. The Prime Minister made the remarks during a message delivered at the inaugural session of the 3-day international conference on Bharat's cultural connections across the globe in New Delhi today. The Prime Minister highlighted the role of ancient centers of learning such as Nalanda in promoting the exchange of knowledge between India and other parts of Asia. The Prime Minister's message was read out by Culture Secretary Vivek Agarwal at the conference. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Canadian Foreign Minister Anita Anand today reviewed progress in India-Canada relations covering trade and investment, education, energy, defence and people-to-people exchanges. The two ministers held a meeting in New Delhi during which they also exchanged views on key regional and global developments. In a social media post, Dr. Jayashankar said India and Canada are advancing the strategic partnership through leadership-level engagement and sustained cooperation between the governments and industries. India today expressed solidarity with Saudi Arabia and condemned the string of attacks in the West Asian nation. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attack on the Aramco headquarters, which took place yesterday, saying India condemns all such attacks on civil infrastructure in the country. He said such attacks are totally unacceptable and must cease immediately. Mr. Jaiswal further stated that India stands in solidarity with the people and the government of Saudi Arabia in defense of the sovereignty. He said India hopes that peace and normalcy returns in the region. Giving an update on the diaspora in Saudi Arabia, Mr. Jaiswal said Indian embassy in Riyadh is in regular touch with Indian community members for the welfare. At the same time, advisories have been issued. Maharashtra has declared 305 of the state's 358 talukas drought hit, covering more than 85% of the state's talukas following the addition of 40 more talukas to the list. Chief Minister Devendra Fadnavis had announced that farmers in the affected areas will receive initial financial assistance of 5,000 rupees directly into the bank accounts before Diwali. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh tomorrow through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. India's Anand Kumar Vail Kumar won a silver medal in the men's 1,000-meter sprint category at the World Skating Games being held in Asunción in Paraguay. Notably, the time difference between the gold medalist and Anand Kumar was just 4 milliseconds. The 23-year-old speed skater has so far won 2 medals at the ongoing games. He yesterday won bronze in the 500-meter sprint. In men's cricket, West Indies were 2 in 16 overs against India in the 4 T20 International in Hyderabad when reports last came in. Earlier, India won the toss and elected to field. India lead the 5-match series 2-1. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं सार्वजनिक सेवा के, 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बंदरगाह, समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत लंबा है, 11,099 किलोमीटर के करीब का, और जो इनलैंड वाटरवेज है उनकी भी लंबाई 14,500 किलोमीटर के करीब है, और 95% भारत का जो ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम रूट से आवाजाही उसकी होती है। तो इसलिए बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन आज लेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। तो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, कॉमोडोर केडी जोशी जो है डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो है स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
1: कॉमोडोर जोशी, बंदरगाहों का जो विकास गुजरात में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है भारत में वो गुजरात में ही है, 2340 किलोमीटर। सो जिस तरह से वहां की सरकार ने ये रियलाइज किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल पूरे भारत में, पूरी जो कोस्ट लाइन है वहां पर भी सफल रहा है?
2: आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोच का कदम माना जाएगा, क्योंकि जब तक देश के सारे विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, इंडस्ट्रियल हाउसेस कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, ये सारे एक साथ अगर आएंगे और पूरे देश का चौतरफा उन्नति के दिशा में अपना अनुदान देंगे, तभी देश में मेरे ख्याल से एक उन्नति ठीक से हो पाएगी। और अगर आप देखें तो सरकार ने जो 2-4 साल पहले, मेरे ख्याल से 2020 के आसपास, एक फाइनेंशियल शिप बिल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल लॉन्च किया था, तो वो भी सरकार की तरफ से एक कदम है कि ईज ऑफ बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि अगर आपको किसी को शिप बिल्डिंग में जाना है, किसी को मैरिटाइम रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक कॉरपोरेशन है जिससे आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी।
1: जी, सो प्रोफेसर मिश्रा, जैसे कॉमोडोर जोशी ने बताया कि पूरी तरह से सरकार ने एक बढ़ावा दिया है निजी क्षेत्र को, पोर्ट्स के जो सेक्टर है उसमें उतरने के लिए, हमारे अब 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से भी अतिरिक्त पोर्ट्स हैं। आप हमें बताएं कि ये जो एक बल दिया गया है बंदरगाहों के विकास पर, समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, कैसे देखते हैं आप इसको, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए?
3: भारत में आर्थिक विकास की जो गति है और आर्थिक हमारी जो हर साल की जो सालाना हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की जो परसेंटेज है, वो कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने पिछले 2 दशकों में, खासतौर से पिछले 12 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कॉमोडोर जोशी ने कहा, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा है कि सरकार का रोल एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है। एक ऐसा एनवायरनमेंट तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए और आम इंसान के लिए भी, ऐसा एनवायरनमेंट सामने रखना जिसमें कि वो अपनी जो उनकी क्षमताएं हैं उनका विकास कर सकें। तो सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए किसी भी देश की या राज्य की सरकार व्यापार में सीधे तौर पर नहीं उतरती है, अगर वो एक कम्युनिस्ट सरकार ना हो तो, ऐसा जो वातावरण बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उतरना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है और भारत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उभर रही है और उनका व्यापार बढ़ रहा है दुनिया के तमाम कोनों से, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बहुत आवश्यक थी। और भारत के, जैसा आपने कहा कि भारत के बड़े जो बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह हैं, लेकिन 200 छोटे बंदरगाह भी हैं। इनको कैसे पूरी तरह से समेकित रूप से इनका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि जो भारत का जो मैरिटाइम विजन 2030 है या मैरिटाइम अमृतकाल 2047 है, उसको ध्यान में रखते हुए एक समग्र और समेकित विकास की आवश्यकता रही है और उसके

0: कास्किल ये ही मुझे लगता है बंदरगाह से जुड़ा हुआ है, या पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो आवश्यक एक जरूरत थी और वो पूरी तरह से निखर के आ रही है सामने। दूसरा एक बड़ा पहलू है कि भारत के जो बंदरगाह हैं, हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं और पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, दोनों में पहला तो पूर्व और पश्चिम के बंदरगाहों के बीच में क्षमता को लेकर के और उनका जो व्यापार है, एक जो टनेज का टर्नओवर है उसको ध्यान में रखते हुए ही पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। पश्चिम के पोर्ट बहुत विकसित हैं और मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर बहुत ज्यादा लोड था, और इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो नए बंदरगाहों का अपग्रेडेशन हो रहा है वो बहुत आवश्यक था। इसमें पूर्व और दक्षिण के बंदरगाहों पर भी काफी व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की विकास की गति को सामने रखते हुए इन बंदरगाहों के विकास पर भी काम होगा और तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आ पाएगा।
1: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट पोर्ट्स भी बहुत मेजर हो गए हैं, अगर हम देखें पीपावाव या हजीरा या मुंद्रा अब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पोर्ट है भारत में, और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 1561 MTPA पर एनम था और अब वो बढ़कर 2817 पर पहुंच गया है, और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो भी 96 घंटों से कम होकर 49 घंटे आ गया है। आप हमें बता सकते हैं कॉमोडोर जोशी की जो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको गति देता है?
2: आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्न अराउंड टाइम अभी थोड़ा और भी शायद कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सरकार का बेसिक अगर आप एक उद्देश्य मान लें कि टर्न अराउंड टाइम कम करने से पोर्ट में ज्यादा जहाज आएंगे, ज्यादा माल की ढुलाई होगी, ज्यादा माल उन पे लोड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो काम होता है उससे पोर्ट का जो टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे दो दो तीन तीन दिन एक पोर्ट में, ये रहते थे, सामान की आवाजाही हो रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं, तो ये दो तीन दिन का टाइम लगता था। तो अभी अगर जैसे आपने बताया कि ये समय बहुत कम हो गया है, तो उस हिसाब से अगर देखें दैट में अगर एक दिन में ये काम हो रहा है तो पहले 3 दिन में होता था, अभी एक दिन में 3 जहाज निकल गए, पहले एक ही जहाज निकलता 3 दिन में, तो उस हिसाब से टर्नओवर पर शिप अगर देखें तो 3 टाइम्स हो गया है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा जो आर्थिक अपनी जो गति है देश की उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक पैमाना है, टर्नओवर टाइम कितना है और इसको कौन देखता है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड बैंक का ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स है, वो ये सारे मेजर करके ये देखते हैं कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस चल रही है इन सब चीजों में, एक ये पैमाना, उसके अलावा बहुत भी होंगे। अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट इंडेक्स आया हुआ है उसमें टॉप 30 में हमारे 3 पोर्ट्स आ रहे हैं। जैसे आपने सही बोला, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, परदीप पोर्ट है उड़ीसा में और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ये 3 पोर्ट टॉप 30 में भारत के हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा, देश के लिए ये एक गर्व करने की बात है कि ये हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी।
1: जी बिल्कुल, इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की या जो लॉजिस्टिक्स है समुद्री यातायात, तो उसमें कौन कौन से ऐसा कार्गो है जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है, हमारे देश के लिए, जो समुद्री जो रास्ते हैं उनसे वो उसकी आवाजाही होती है और जिसके कारण ये जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर इतना बल दे रही है सरकार?
0: यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, कि भारत का और दुनिया का अधिकतम व्यापार 95% से ज्यादा व्यापार वो शिपिंग रूट से ही होता है, समुद्री जहाजों से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उससे ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। इस बात को हम ध्यान रखें। पहली चीज ये है कि जितना तेल और गैस का व्यापार होता है वो सारा व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से होता है, जितना हैवी कार्गो जाता है वो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से जाता है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात भी समुद्री क्षेत्र से होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समुद्री यातायात की जो ये जो लाइफ लाइन्स हैं इनको अगर रोक दिया जाए तो दुनिया में व्यापार ही नहीं, दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में हमने ये बात देखी कि जब वहां से जहाजों का आवागमन रुका या उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा तो दुनिया के तमाम देश, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा संकट हो गया। भारत ने इस संकट को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये एक प्रशंसनीय बात है।

0: लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया के तमाम देशों पर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपने को बहुत ही स्वावलंबी मानते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके लिए भी यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। तो इसलिए कार्गो के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आयरन और स्टील जैसी चीजें, रबड़ जैसी चीजें जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं या जो सामान उनके आम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं उनकी भी, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, उसका एक सस्टेनेबल रहना और उसकी जो जनता है, उसके जो नागरिक हैं, उन लोगों का जीवन भी सुगम रूप से चले, इस सभी के लिए मैरिटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है।
1: और कॉमोडोर जोशी, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, एक आम नागरिक के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए भी ये जो समुद्री कारोबार है कितना जरूरी है। अगर हम मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप नेवी में रहे हैं तो आप बता सकते हैं हमें कि इसी संदर्भ में ये जो आवाजाही भी सुगम रूप से बनी रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हर देश के लिए और खासकर अब जब भारत की बात कर रहे हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
2: आपने एक जो एक पॉइंट निकाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आज से नहीं, पिछले 15-16 साल से जब ये दुनिया में जब इनका फूतीज जो थे या यहाँ पे जो हाईजेक हो रहे थे जहाज और उनसे रैंसम मांगी जाती थी और पूरा का पूरा जहाज बोर्ड कर लिया जाता था और समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो आते थे एंड अभी भी आते हैं, और उसके कारण 2008 के करीब से भारतीय नौसेना ने इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू की थी और वो पूरा का पूरा जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये मिडल ईस्ट के, उसमें बहुत सारे देशों का एक कंसोर्टियम टाइप आप कह सकते हैं, उनके सारे जहाज अपने अपने वहां पे पेट्रोलिंग करते थे, टर्न बाय टर्न आते थे और काफी अच्छी पेट्रोलिंग के कारण ये जो समुद्री लुटेरे आते थे उनका जो इवेंट्स थे, इंसिडेंट थे सारे बहुत कम हो गए। अभी अगर आप देखें ये क्यों हुआ ये सारा, जब तक आपके पास नौसेना का बल नहीं है आप अपने सी लेन्स जो समुद्री रास्ते हैं, समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं वो आप सिक्योर नहीं कर सकते, वो खुले पड़े रहेंगे, कोई भी आएगा रास्ते पे आपके जहाजों को वो लेके जाएगा, रैंसम मांगेगा या जो भी करेगा आगे। वो सिक्योर तभी हो सकते हैं जब नौसेना के जहाज उन सी लेन्स को सिक्योर करे। तो एक ये जो एक काम है भारतीय नौसेना का, एक प्रमुख काम है, पीस टाइम वर्क कह सकते हैं आप, कि जब युद्ध ना चल रहा हो तो ये एक मेजर काम रहता है। और हमारे जहाज कंटिन्यूसली वहां पिछले इतने सालों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जहाज होते हैं वहां पे। तो उसके कारण मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो उसके लिए एक सशक्त नौसेना का होना बहुत जरूरी है
1: जी।
2: और मेरे ख्याल से पिछले करीब करीब कुछ सालों में सरकार ने ये काम किया हुआ है। अगर आप जहाजों का थ्रूपुट देखें, जो नेवी के जहाज बन रहे हैं वो काफी सारे जहाज लॉन्च हुए हैं, काफी सारे जहाज कमीशन हुए हैं और बहुत मॉडर्न जहाज हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना जो है वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं इंडियन ओशन रीजन, तो जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी आ जाता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारतीय नौसेना को माना जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है दोनों का पैरेलल विकास जिस पर पूरा बल दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपके पास आए तो सागरमाला प्रोग्राम जो सरकार का 2015 में शुरू हुआ पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मैकेनाइजेशन, जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है तो डिजिटल सिस्टम्स को पोर्ट ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इस सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो एक कहें कि फोकस्ड एफर्ट है सरकार का?
0: देखिए, सागरमाला जो परियोजना 2015 में जिसको लॉन्च किया गया, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे वो ये थे कि भारत के तमाम बंदरगाह पुरानी तकनीक पर चल रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था और उसमें बहुत ज्यादा जो पुराने किस्म के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सागरमाला परियोजना के तहत ये बात की गई कि बंदरगाहों का न सिर्फ उनका आधुनिकीकरण करना है बल्कि बंदरगाहों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो, और एक बार जब किसी जहाज से, किसी कार्गो या कंटेनर शिप से जब माल वो बंदरगाह पर डॉक होता है तो वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और तमाम बंदरगाहों के साथ एक ये भी समस्या भारत में पहले रही है कि उनके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है वो नहीं था, तो उसके विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना में ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये बात की गई कि किसी भी बंदरगाह में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी है, डॉकिंग फैसिलिटी है और वहां पर सामान उतर गया, उस सामान का स्टोरेज कैसे हो।

0: और वो अत्याधुनिक तकनीक पर कैसे बेस्ड हो। तटीय शिपिंग और अंतरदेशीय जो परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो रोड परिवहन हो, या रेलवे के रास्ते जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, और खास तौर से जो इनलाइन वाटरवेज हैं उनके विकास की कोशिशें की गई। तो सागरमाला परियोजना मुझे लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी कदम रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में, और इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत तेजी से दुनिया की तमाम जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कॉम्पीट करने और उनके बराबर चलने की क्षमता प्रोवाइड की है। 845 परियोजनाओं को नामांकित किया गया था 2015 में, और उनमें से 315 परियोजनाएं अभी पूरी हो चुकी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सागरमाला इनिशिएटिव, जैसा कि नाम भी खुद ये बताता है कि ये तमाम जो भारत के बंदरगाह हैं उनको एक माला की कड़ियों की तरह जोड़ना है, जिससे कि उन तमाम बंदरगाहों में आपस में भी कनेक्टिविटी रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, अत्याधुनिक तकनीक से वो जुड़े रहें, कम्युनिकेशन और उन कोऑर्डिनेशन की उनमें लगातार एक सुगम यातायात रहे, और साथ ही साथ इस पूरी बंदरगाहों के विकास और उनके अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ भारत के आम नागरिक, छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोग पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी परियोजनाएं चलाना कि वो भी जब बंदरगाहों का विकास हो और ज्यादा माल ढुलाई हो, व्यापार बढ़े, तो वो लोग भी इस विकास का फायदा उठा सकें और उसमें अपना योगदान दे सकें।
1: बिल्कुल, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हुए हैं, समय जो लगता था उस सामान को पहुंचाने में वो भी कम हुआ। आपने इनलैंड वाटरवेज की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है हमारे सामने कि लगभग 700% बढ़े हैं कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज में। सो इस संदर्भ में जो हमारा कहें कि जो वाराणसी मल्टी मोड टर्मिनल है, जो पहला मल्टी मोड टर्मिनल है गंगा नदी पर, जो गवर्नमेंट की जल मार्ग विकास परियोजना है, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है, जैसा आप कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए और जो समय है उसको भी कम करने के लिए?
0: देखिए, इनलैंड वाटरवेज भारत में उनकी परिकल्पना बहुत पहले से रही है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका, और क्योंकि भारत में गंगा नदी मुख्य रूप से, गंगा नदी के रास्ते बनारस से लेकर, वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक का एक वाटरवे बनता है जिसमें तमाम जो छोटे और बड़े शहर हैं वो उसके साथ जुड़ सकते हैं। आज जो इनलैंड वाटरवेज 1 की बात हो रही है, जिसमें वाराणसी को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया गया, क्योंकि सीधे इस इनलैंड वाटरवे के माध्यम से भारत के उत्तरी जो राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमाम ये जो प्रदेश आते हैं जो किसी भी तरह से किसी भी बंदरगाह से या समुद्र तट से जुड़े नहीं है, उनके लिए कैसे ये व्यवस्था की जाए कि वो भी पोर्ट लेड डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने, और उनके जो निर्यात के सामान है या उनके लिए जो सामान बाहर से आ रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिए, शिपिंग में और जो समुद्री व्यापार है ये वैसे ही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके जो 3 घंटे और 4 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह जब कोई माल, खास तौर पे खाद्य पदार्थ, जब वो किसी बंदरगाह पर डॉक होता है, जब उसको उतारा जाता है, वहां से कितनी जल्दी वो बाजार पहुंच सके, मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों के मामले में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो 48 घंटे और 72 घंटे के बाद पहुंचेगा तो आधे से ज्यादा सामान खराब हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों के लिए ये एक विशेष चिंता की बात है, क्योंकि जैसे अगर हम आम, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में आम निर्यात करने की कोशिश होती है, उनके लिए ये हमेशा से एक समस्या रही है कि उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनलैंड वाटरवेज पर खास ध्यान दिया जाए और उनको विकसित किया जाए, और इसीलिए मुझे लगता है कि वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या नमो घाट और तमाम जो परियोजनाएं वाराणसी में चल रही है उनका एक बहुत दूरगामी परिणाम होगा इनलैंड वाटरवेज को आगे बढ़ाने में और उनके योगदान को बढ़ाने में पोर्ट लेड डेवलपमेंट की जो संकल्पना है भारत की आर्थिक विकास।
1: आपने बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर हमें ये बात समझाई है। कॉमोडोर जोशी, आपके पास हम आते हैं। विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो केरला में विकसित हुआ है, 2015 में ये इनॉग्रेट हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको, ये ग्लोबल सी रूट से हमें कनेक्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये?
2: जी, अगर आप थोड़ा नक्शे पे ध्यान दें दुनिया के, तो आज की डेट में एक प्रोसेस बोला जाए, एक तो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रोसेस है, और वो सिंगापुर आज की डेट में सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें ये सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होती है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा सामान लेके आते हैं उनको पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगती है। तो क्या किया जाता है कि

0: समझिए आप सिंगापुर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है वो सिंगापुर में छोटे जहाजों में जाएगा, कंपैरेटिवली छोटे जहाजों में, और फिर वो बाकी वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब हिंदुस्तान की तरफ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ इस तरफ आएगा, या फिर मिडल ईस्ट या जो भी अफ्रीका में जाना है वो जाएगा। तो एक प्रोडक्शन सेंटर है, एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है। अगर हमारी ज्योग्राफी देखा जाए, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं अपने को, एंड ये जो विरंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है त्रिवेंद्रम में,
1: जी
0: वो एक डीप वाटर पोर्ट है। एक 20 से 24 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है वहां पे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, और इंटरनेशनल शिपिंग लेंस जो है ये उसके बहुत करीब है। इनफैक्ट जो सिंगापुर से लेके जो पर्शियन गल्फ की तरफ लेन जा रही है, मलाका स्ट्रेट से पर्शियन गल्फ की तरफ, वो तो इसके बिल्कुल साथ से होती हुई जाती है। और जो स्वेज कैनाल की तरफ जो लेन जा रही है वो इससे करीब 20 से 30 नॉटिकल माइल, अगर किसी को विरंजम पोर्ट में आना होगा तो 20 से 30 माइल का डायवर्जन लेना पड़ेगा। तो
1: जी
0: ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि जो समझिए आप मिडल ईस्ट से, यूरोप से, मेडिटेरियन से स्वेज कैनाल के थ्रू होते हुए जहाज इधर आ रहे हैं, वो सारे के सारे ट्रांसशिपमेंट अपने यहाँ हो सकती है, और फिर यहाँ से जहाज या तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगे या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो एक दूरगामी जो परिणाम है इसका, वो काफी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 24-25 में करीब करीब 1.2 मिलियन TEUs जो यूनिट होती है, 20 फुट इक्वेलेंट यूनिट बोली जाती है, वो इसका थ्रूपुट हो चुका है। और जब फेज 2 और फेज 3 खत्म होएगा 2028 तक,
1: जी
0: तो उस टाइम पे जो इनका जो एम है, टारगेट है, एक विजन है कि 4.5 मिलियन TEU से ऊपर का व्यापार होगा यहाँ पे, और फाइनल फेज 2040 में 7.2 मिलियन TEU का होने का उद्देश्य है इस बात।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला, और आज हमारी चर्चा का विषय है बंदर का समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, कॉमोडोर केडी जोशी डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। प्रोफेसर मिश्रा, आपके पास आते हैं। एक जो बहुत ही रोचक और कहें कि बहुत ही उपयोगी ग्रास रूट लेवल पे जो प्रोग्राम है समुद्र तट के विकास को लेकर गुजरात ने, जहां पे सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना जो 2007 में शुरू की गई, इसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें लगभग 13,000 जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की और उसको निर्बाध रूप से पहुंचाने की व्यवस्था पर बल दिया गया है।
2: देखिए, ये जो परियोजना है सागर कांठा के तमाम जो जिले हैं जिसमें कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और तमाम भावनगर, अहमदाबाद, ये सभी उसमें आते हैं। इन तमाम शहरों के साथ एक समस्या ये थी कि जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली की आपूर्ति हो या पीने के पानी की सतत आपूर्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर जो सामुद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, खारे पानी के प्रवेश को रोकना, एक गुजरात के तमाम बंदरगाहों के साथ एक समस्या ये है कि क्योंकि वहां पर हाई टाइड के साथ बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो जाती है और जो गाद आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत पहले के समय में, आज से 1000 साल पहले भी, जब लोथल एक मानव निर्मित जब बंदरगाह बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आज से 3000 साल पहले, बल्कि उससे ज्यादा, तब भी यही समस्या आई थी कि बहुत सारी गाद जो है वो बंदरगाह और उसके रास्ते उस क्षेत्र के अंदर आ गई। तो खारे पानी के साथ साथ इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना का की संकल्पना की गई, और मूलभूत तौर से इसका उद्देश्य यह है कि जो लोग, जो जनता इन बंदरगाहों के आसपास रहती है, जो इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार और इन बंदरगाहों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंटरनल पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए और तमाम इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया था। तो इसका फोकस बहुत ही लोकलाइज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये किसी भी बंदरगाह के लंबे समय तक और सुदृढ़ रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक,
1: कह सकते हैं एक तरह से मॉडल है। और सागरमाला के तहत 11 जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत 30,000 जो मछुआरे हैं उनको फायदा हुआ है, आपको लगता है ये भी बहुत होलसम होलिस्टिक अप्रोच है?
2: जी बिल्कुल, दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है और उनके विकास पर ध्यान दिया है, उन्होंने ये भी देखा है कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो लोकल अर्थव्यवस्था है वो बंदरगाहों पर जो निर्भर है या तटीय क्षेत्रों पर निर्भर है, उनको कैसे

0: कैसे इस बंदरगाह के विकास में या पोर्टलेट डेवलपमेंट में से जोड़ा जा सके, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है और ऐसे भी उदाहरण है दुनिया के तमाम बंदरगाहों के जहां बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से उनको डेवलप किया गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह बन गए, लेकिन जो जनता उससे जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। इन तमाम सागरमाला के तहत इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हम आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज्यादा आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता के कंसर्न्स और उनकी जरूरतों को कहीं पीछे ना छोड़ दें। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही समेकित परियोजना है सागरमाला, और इसके तहत मुझे लगता है कि जनता विकास के साथ साथ आर्थिक प्रगति दोनों को जोड़ने की कोशिश की।
1: बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने एक मेंशन किया लोथल जो गुजरात में, वहां पर जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि ये एंशंट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां डॉकयार्ड था 4,500 वर्ष पुराना, तो ये जो हमारी एक हिस्ट्री है मैरिटाइम हिस्ट्री, उसके लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उसको शोकेस करने का और पूरे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम होगा जब ये बन जाएगा तो।
2: जी सोलो जी, बिल्कुल सही आप दिशा में आपने जो बोला है, ये जो 4,500 साल पहले जब ये बनाया गया था इसमें एक ड्राई डॉक भी होता था, तो मतलब आप सोचिए कि कितना एडवांस वो सिटी होगा जिसमें एक जहाजों को अंदर लाके ड्राई डॉकिंग की भी फैसिलिटी बनाई गई हुई थी। तो उस हिसाब से मैरीटाइम कल्चर जो बोलेंगे या फिर इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैरीटाइम कल्चर था वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सारे हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा हमें जानकारी नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। और मेरे ख्याल से जब ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन के पूरा हो जाएगा, ये दो फेजेस में बन रहा है और पहला फेज में फेज ए और फेज बी भी है, जब ये पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आकर्षक जगह होने वाली है जिसमें अपने आप में ये डेस्टिनेशन हो जाएगा कि आप लोग वहां पे जाएंगे और एक मैरीटाइम जो हेरिटेज है उसको कैसे हिंदुस्तान ने प्रिजर्व किया है और आज पास्ट, आज की डेट में और फ्यूचर, ये तीनों कैसे इंटीग्रेट होके उस जगह पे दिखाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से जन साधारण के लिए एक अच्छी परियोजना जो है वो स्थापित हुई है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हैं एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा, लोगों के लिए वहां पे भी जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ मिलकर उनसे भी लिया जा रहा है टेक्निकल एडवाइस, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को?
0: मुझे लगता है इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत 2047 में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनना है, भारत को अपने जो इतिहास को प्रेजेंट करने में जो गलतियां की गई हैं उनको भी सुधारना है। तमाम तथाकथित इतिहासकार जो भारत के हैं और भारतीय इतिहास पर लिख चुके हैं वो ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत कभी एक मैरिटाइम नेशन नहीं रहा है, ये तो एक कॉन्टिनेंटल देश रहा है जिसने कभी समुद्री यातायात या समुद्री सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस नैरेटिव को एक सिरे से नकारने के लिए और इस डिबेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है इस मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना जरूरी थी, और क्योंकि ये इस बात को सामने रखता है कि आज से 5,000 साल पहले भी भारत एक समुद्री महाशक्ति था, भारत के पास उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा स्थान रखते थे, हमने मानव निर्मित एक बंदरगाह बनाया जिसको आज फिर रिवाइव करने और उसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में रखने की बात हो रही है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि लोथल जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसमें आपने जो बात कही नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ सहयोग किए, ये दोनों देश भी, वियतनाम और नेदरलैंड्स दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े पोर्ट्स को लेकर के और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर के वो हमेशा से ही बड़े एक्टर्स और बड़े प्लेयर्स रहे हैं, तो उनके साथ सहयोग मुझे लगता है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम कलेक्टिवली अपनी जो हमारी जो साझा विरासत है उसको भी हम सामने लेकर के आए, और इस लिहाज से एक यूरोपीय देश और वियतनाम जो कि जिसकी अपनी 5,000 साल की एक ग्लोरियस उसका इतिहास है उसको भी सामने रखना बहुत जरूरी।
1: सो कॉमोडोर जोशी, जैसा आप दोनों ने ही बताया कि कितना हमारा ग्लोरियस इतिहास है मैरिटाइम इतिहास, उसको दर्शाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको लगता है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच है सरकार का कि विरासत का गौरव उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 जिसकी बात अभी प्रोफेसर मिश्रा भी कर रहे थे, जिसमें 150 से ज्यादा पहले हैं 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और जिसमें पिछले वर्ष का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का

0: सागरमाला के तहत हो। पांचवा जो पिलर है सागरमाला का वो है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का पिलर है। मतलब पूरा का पूरा एक फंडामेंटल पिलर यही बोल रहा है कि जो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है, नॉट सिर्फ पोर्ट में नहीं, सिर्फ बंदरगाहों में नहीं, पूरी कोस्ट में, उन सबको साथ में लेके हमको डेवलप करना है और उनका ध्यान जरूर रखना है। और उसके लिए अगर आप देखिए तो अगर डेवलपमेंट कोस्ट में हो रही है, पोर्ट्स पे हो रही है, तो जो सरकार ने इतना जो बजट आउटले किया हुआ है 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का MIV के लिए और करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए MAKV के लिए, तो ये सारा का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्टलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सागरमाला के तहत एक और पिलर माना जाता है, जिसमें इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोस्टल इको जोन्स, कोस्टल इको यूनिट्स एंड साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी। और पोर्ट कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि कैसे की जाए, तो अभी जिक्र में यही आया कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू समझिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है। समझिए आपका जो नेशनल वाटरवे 1 बन रहा है जो वाराणसी और अल्दिया को कनेक्ट कर रहा है, तो हिंटरलैंड जो इंडिया की है वो उनको एक जिसे बोलते हैं उनका दरवाजा खुल गया है समुद्री रास्ते के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज बननी शुरू हो गई हैं। और वैसे ही अगर आप देखे हैं कुछ दिन पहले एक ट्रायल रन हुआ था एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, जिसमें एक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर बड़ोदरा तक। तो अभी आप देख रहे हैं कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तान ने जो पहला कदम लिया है, पहला देश है जिसने एक बिजली की जो ट्रेन है उसमें डबल डेकर कंटेनर सिस्टम अपनाया है। बाकी पूरे दुनिया में सिंगल कंटेनर सिस्टम जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक दो कंटेनर नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो ट्रेन गई है करीब मेरे को लगता है 300-350 कंटेनर यूनिट से लेके गई थी, काफी लंबी ट्रेन थी ये, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है। और ये सारी चीजें इन तीन प्रोग्राम्स के तहत हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि अपनी जो लोकल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
1: बिल्कुल
0: सागर खेड़ू जो सर्वांगी विकास योजना थी गुजरात की वो एक मॉडल था, उसके हिसाब से पूरे देश में वो मॉडल अभी अडॉप्ट हो रहा है किसी ना किसी स्कीम में। और उसके बाद में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट विंजम पोर्ट है, लेकिन अगर आप वाधवान पोर्ट देखें महाराष्ट्र में जो बन रहा है वो एक और पोर्ट है, गलातिया बे का जो पोर्ट है अभी वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाएगा जो अंडमान में बना रहे हैं, जो करीब करीब सिर्फ 40 मील है मलाका स्टेट से। तो आप देखिए कि आप कैसे पूरा देश में हर जगह पे पूरी देश की पूरी जो लैंडमार्क है वो कवर हो रहा है, जो भूमि है देश की सब जगह कहीं ना कहीं मैरीटाइम डेवलपमेंट हो रही है, चौमुखी विकास लग रहा है।
1: जी बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, प्रोफेसर मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से देश के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए
2: धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा समुद्र बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर KD जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सकलैन अख्तर। दिल्ली सरकार ने औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी। दिल्ली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। नगर निगम विद्यालयों में विद्यार्थियों को 1,370 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। दिल्ली की विशेष अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। विश्व भर में भारत के सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से कल नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई। 10 वर्षों की इस नीति का उद्देश्य राजधानी में स्वच्छ, आधुनिक और तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना के लिए 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है।
1: नीति के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर, स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान और आधुनिक विनिर्माण समेत 10 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही महिला उद्यमियों, महिला कर्मचारियों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत निवेश, कार्यालय या कार्यस्थल के किराए, नई नियुक्तियों, अनुसंधान प्रमाण, तकनीकी आधुनिकी करण, ऊर्जा की बचत और कौशल विकास के लिए अलग अलग प्रोत्साहन दिए जाएंगे। साथ ही संसाधनों का दोबारा इस्तेमाल करने और कचरा कम करने को भी बढ़ावा दिया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नई नीति से निवेश बढ़ाने, उद्योगों को आधुनिक बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। निवेशकों को सहायता देने और मंजूरियों की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल के माध्यम से एकल संपर्क केंद्र को भी विकसित किया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से 1,370 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक सुविधाओं का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा, आधुनिक संसाधन और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हर तरीके से नगर निगम, दिल्ली सरकार मिलकर के इस मुहिम में लगे हैं कि दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर माहौल मिले और उसका अच्छा विकास हो। वो अपनी शिक्षा में हर उस चीज को पाए जो उसका अधिकार भी है और जिसके कारण से उसका भविष्य उज्ज्वल हो पाए।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुखर्जी नगर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निशुल्क लाइब्रेरी के लिए उपयुक्त जगह तलाशने, स्ट्रीट लाइट और CCTV व्यवस्था सुधारने तथा बंद पड़े सार्वजनिक शौचालयों को पिंक टॉयलेट के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। दिल्ली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उन्हें बधाई देते हुए एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा दिल्ली को प्राथमिकता दी है और लगातार सहयोग दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष फरवरी में सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं को अपनाया है। एक रिपोर्ट।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दिल्ली में 9 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण हुआ है और लगभग 85,000 दवों के तहत 118 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वय वंदना योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जैसी केंद्र की योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुँचाया जा रहा है।
4: हमारी सरकार आने के बाद हमने जन जन तक प्रधानमंत्री जी की दी हुई हर सौगात को अपनाया और उसका लाभ जनता तक पहुँचाया। आज लगभग 425 आरोग्य मंदिर दिल्ली में बन चुके हैं, जो कि एक प्राइमरी हेल्थ केयर का बड़ा सेंटर के रूप में दिल्ली राज्य के लिए काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि लगभग 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हम लोग खोलने वाले हैं।
3: मुख्यमंत्री ने दिल्ली की पुरानी समस्याओं में सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मामलों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा दिल्ली को मदद दी है।
4: दिल्ली की जितनी लीगेसी प्रॉब्लम है, यमुना सफाई की हो, कूड़े के पहाड़ की हो, पर्यावरण को बेहतर करने की हो, हमेशा आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली को अपना आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी। देश की राजधानी है दिल्ली, तो इसमें विकास का कोई भी सेगमेंट छूटे ना, ये प्रधानमंत्री जी का हमेशा से सहयोग रहता है।
3: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य केंद्र के सहयोग से विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित दिल्ली का निर्माण करना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए रजनीश शुक्ला।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।

0: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज कॉकरोच जनता पार्टी CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे CJP नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 किलोग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं और एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस मादक पदार्थ के स्रोत और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अवैध शराब के 1000 से अधिक क्वार्टर बरामद किए हैं। यह अवैध शराब हरियाणा से बिक्री के लिए दिल्ली लाई जा रही थी। इस मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस की अपराध शाखा ने मंडोली गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 567 किलोग्राम से अधिक पटाखे और अन्य सामग्री बरामद की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है। फ्रैंकफर्ट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को आज अपहरण की आशंका के चलते जयपुर में उतारा गया। हालांकि बाद में यह आशंका गलत साबित हुई। इसके बाद जानकारी के अनुसार मुंबई उड़ान सूचना क्षेत्र में उड़ान के दौरान पायलट ने कथित तौर पर स्क्वॉक कोड 7500 दर्ज किया था। यह कोड विमान के अपहरण या उसमें किसी तरह के गैरकानूनी हस्तक्षेप का संकेत देता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के समग्र विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दिल्ली सरकार लोकनायक अस्पताल में अत्याधुनिक CT स्कैनर और MRI मशीनें लगाई जा रही हैं। इन आधुनिक मशीनों से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और मरीजों को एडवांस्ड इमेजिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि तीसरी पीढ़ी के डुअल सोर्स CT स्कैनर और 3 टेस्ला MRI सिस्टम ने मरीजों की जांच अत्यधिक तेज और सटीक हो सकेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने कहा है कि दिल्ली में ऐसी एकीकृत और टिकाऊ बुनियादी सुविधाएं विकसित करना महत्वपूर्ण है जिनसे कनेक्टिविटी बेहतर हो तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आए। उपराज्यपाल ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के उपाध्यक्ष और DDA तथा NBCC के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पारगमन उन्मुख विकास और प्रमुख शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज नई दिल्ली में इंटेलिजेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य पाइपलाइन में लीकेज का जल्द पता लगाना, पानी की बर्बादी रोकना और शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करना है। इस अवसर पर श्री सिंह ने विशेष आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन को भी रवाना किया। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत राजौरी गार्डन में आंगन मिलन समारोह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मान देने, उन्हें बेहतर सहयोग उपलब्ध कराने और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर @AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व भर में भारत के सांस्कृतिक संबंधों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय

0: सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन 16 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अपने संदेश में कहा कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। प्रधानमंत्री का संदेश संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने पढ़कर सुनाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह सम्मेलन केवल इतिहास को समझने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह जानने का अवसर भी है कि अतीत का ज्ञान भविष्य को किस तरह दिशा दे सकता है।
1: आज हम सिर्फ इतिहास पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये पता लगा रहे हैं कि हमारे अतीत की समझ भविष्य की संभावनाओं को कैसे रोशन कर सकती है। हम एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं कि जब सभ्यताएं आपस में जोड़ती हैं तो क्या होता है। विचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, ज्ञान सीमाओं को पार करता है, कला को नए आयाम मिलते हैं और समाज को समझ आता है कि अंतर के बावजूद वे एक जैसी मानवीय विरासत साझा करते हैं। यही बृहत्तर भारत का मूल भाव है।
0: नई दिल्ली के झंडेवालान देवी मंदिर में शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मंदिर में सुरक्षा के लिए 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के विभिन्न डिजिटल माध्यमों पर दर्शन और कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। मंदिर के ट्रस्टी रविन्द्र गोयल ने मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हुए इसकी प्रसिद्धता का उल्लेख किया।
2: आज जहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पर इसका इतिहास लगभग 150 वर्ष पुराना है। किसी समय यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ और बहुत सुंदर यहाँ पर जंगल हुआ करता था, तो वो मंदिर तो नहीं दिखाई देता था, लेकिन मंदिर के ऊपर लगा हुआ ध्वज जो है वो दूर से लोगों को दिखाई देता था। मंदिर का कोई नाम न होने के कारण से लोग इसको दूर से झंडे वाला मंदिर बोलते थे और कालांतर में यह उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ और ये माता भी उसी नाम से प्रसिद्ध हो गई, झंडे वाली देवी के नाम।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से कल नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। जापान के आइची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहा। आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ राजधानी में हल्की बारिश की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी। दिल्ली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। नगर निगम विद्यालयों में विद्यार्थियों को 1,370 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। दिल्ली की विशेष अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से कल नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को भी स्वीकृति दी है।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, एमएसएमई को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श किया। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने बताया कि ये हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और फौरन बंद होने चाहिए। केंद्र सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते DTAA में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण PPT शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेनदेन या व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,623 पर आ गया। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 151 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। आनंद कुमार विल कुमार ने पैराग्वे में आयोजित विश्व स्केटिंग खेलों में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Programme for 5 years from 2026 to 27 to 2030 to 31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. The Cabinet has also approved the strategic restructuring of IDBI Bank. Mr. Vaishnaw said that the bank plays an important role in the growth of MSME and new industries. The Cabinet has approved a productivity-linked bonus, PLB, of 78 days for more than 11,40,000 eligible railway employees in recognition of their performance. Mr. Vaishnaw also said large-scale recruitment is underway in the railways, with recruitment being carried

0: जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम मधुरिमा हम शुरू कर चुके हैं। और जैसा कि रिवायत है मधुरिमा में आज हम बात करेंगे एक राग की, जिस राग का नाम है राग पीलू।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: प्रोग्राम मधुरिमा और आज बात राग पीलू की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही खूबसूरत लोकप्रिय मधुर राग। इसका विस्तृत परिचय इस प्रकार है, लेकिन थाट जो है इसमें काफी थाट लगता है, जबकि इसकी जाति ओडो संग्रह है। इसमें आरोह पांच और अवरोह में सात स्वर होते हैं। वादी स्वर इसमें गंधार है और संवादी स्वर निषाद नी, और इसके जो गायन का समय है वो है दिन का तीसरा प्रहर, दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर प्रोग्राम मधुरिमा, और मधुरिमा में हम बात करेंगे राग पीलू की एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: क्या आप जानते हैं कि अजवाइन का प्रयोग पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है, इसीलिए अजवाइन को अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त यूनानी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं। दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। क्या आपको गर्मी के मौसम में थकान, कमजोरी या शरीर में ज्यादा गर्मी महसूस होती है? तो अपनाइए गोंद कतीरा। प्राकृतिक गुणों से भरपूर गोंद कतीरे को पानी में भिगोकर प्रतिदिन सेवन आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त यूनानी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं। दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल प्रोग्राम मधुरिमा और मधुरिमा में बात राग पीरू की। एक मधुर भावपूर्ण और लोकप्रिय राग राग पीरू। इसे ठुमरी दादरा भजन और गजल और सुगम संगीत में विशेष रूप से गाया और बजाया जाता है। वादी संवादी स्वर में विभिन्न परंपराओं में थोड़ा मतभेद है, लेकिन इसके गायन के जो समय है उसमें, जैसे कि हमने आपको बताया, प्रायः दिन के समय ये गाया जाता है। मुख्य रस जो है इसमें श्रृंगार करुण और भक्ति का रहता है। इसकी प्रकृति चंचल कोमल और भाव प्रधान है। राग पीलू एक मिश्र राग है, इसलिए इसकी स्वर रचना गायकी और घराने के अनुसार बदल जाती है। राग पीलू के विषय में और आपको जानकारी देंगे इस खूबसूरत संगीत की पश्चात।

राग पीलू की हम बात कर रहे हैं। इस राग में कोमल गंधार, कोमल निषाद और अन्य स्वरों के विभिन्न प्रयोग सुनने को मिलते हैं। कुछ प्रस्तुतियों में शुद्ध गंधार, शुद्ध निषाद तथा कोमल धैवत का प्रयोग भी होता है। इन स्वरों को मीड़, मुरकी और हल्की अलंकारिक शैली से प्रस्तुत करने पर पीलू का भाव बढ़ता है। फिल्मी संगीत में यानी हिंदी सिनेमाई संगीत में यदि बात की जाए राग पीलू की, तो अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा अर्जू फिल्म का जो गीत है, और मुगले आजम फिल्म से तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर आज आपने सुना।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं खेल जगत की हलचल और ताजा गतिविधियों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार और मेरे साथ हैं अतहर सईद। अतहर नमस्कार।
1: नमस्कार प्रशांत, और सभी सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आज हम चर्चा करेंगे देश दुनिया की प्रमुख खेल खबरों, क्रिकेट के रोमांच और मैदानों से मिल रही ताजा जानकारियों की। तो आइए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक प्रमुख खेल सुर्खियों के साथ।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला जारी।
1: श्रेयस अय्यर ICC की ताजा T20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एशियाई खेलों में शामिल भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे।
1: और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में

0: पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता। शुरुआत करेंगे क्रिकेट के साथ। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। प्रशांत, मैच की ताजा स्थिति क्या है, यहां से हम अपनी चर्चा का आगाज करते हैं।
1: अतः 18वां ओवर चल रहा है। वेस्टइंडीज ने 3 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं और कप्तान शे होप ने 44 गेंद पर 83 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है और उनका साथ सरफिन रदरफोर्ड 16 गेंद पर 31 रन बनाकर दे रहे हैं।
0: इसका मतलब ये लगता है कि आधार मजबूत हो चला है वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी का, जहां तक प्रश्न है। तो प्रशांत, अभी तक के प्रदर्शन के आधार पर मैच में किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है?
1: देखिए आधार, अगर इस पूरी श्रृंखला की अगर बात की जाए तो वेस्टइंडीज ने 250 रन भी चेस किए हैं दूसरे ही T20 मैच जो रांची में खेला गया था, और ऐसा दर्शा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो T20 का जो ये टारगेट है वो 240 की ओर जाता नजर आ रहा है। तो उम्मीद की जाएगी जिस तरीके से, जिस सशक्त तरीके से अभिषेक शर्मा हो गए या फिर ईशान किशन हो गए या फिर श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज जो कप्तान है भारत के, उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उम्मीद करें कि भारतीय बल्लेबाज जो भी टारगेट हो उसको आसानी से चेस कर लेंगे।
0: सही कहा आपने, श्रेयस अय्यर के बारे में तो हमारे पास एक समाचार भी है जिसको हम अभी साझा करेंगे कुछ देर के बाद। लेकिन आज के मैच में प्रशांत, टॉस जीतकर भारत का गेंदबाजी चुनना और बाद में बल्लेबाजी करने का फैसला करना, हैदराबाद की पिच के हिसाब से आपको कैसा लगता है, साथ में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है जहां तक रात का प्रश्न है?
1: जी बिल्कुल, अतः अगर देखा जाए, अगर इस T20 श्रृंखला की पूरी बात की जाए, चाहे वेस्टइंडीज हो या भारत हो, वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही करना चाहती है, क्योंकि पूरी श्रृंखला में ये देखने को मिला है कि टारगेट कोई भी हो, बल्लेबाजी क्रम अपने आप को बैक करती है और उस टारगेट को चेस करती है। यही ध्यान में रखते हुए भारत ने आज टॉस भी जीता है, उसी आधार पर वो गेंदबाजी कर रही है ताकि जो भी बल्लेबाजी में उन्हें टारगेट मिले उसे चेस कर लेंगे।
0: लक्ष्य का पीछा करने में हमें ज्यादा कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से फायदा होता है और साथ में हमारे जो स्थानीय दर्शक हैं उनका भी हमें फायदा मिलने वाला है, और साथ में ये मनोवैज्ञानिक जो एक हमारे ऊपर हमारे साथ सकारात्मक पहलू है कि हम 2-1 की बढ़त हासिल कर चुके हैं। प्रशांत, यहां से एक प्रश्न और निकलता है कि क्या भारत 2-1 की बढ़त को 3-1 में परिवर्तित करने वाला है या फिर वेस्टइंडीज 2-2 से श्रृंखला बराबर करेगा, या भारत 3-1 से न सिर्फ बढ़त हासिल करेगा बल्कि श्रृंखला पर भी अपना कब्जा करेगा?
1: ये देखना दिलचस्प होगा अथर, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया इस श्रृंखला से, तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आज किस तरह का प्रदर्शन रहता है, और उम्मीद की जाए कि आज ही भारत इस श्रृंखला को अपने नाम कर लेगा और 3-1 की बढ़त बना लेगा।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ICC रैंकिंग की।
1: जी, आप जैसा बात ही कर रहे थे अथर कि श्रेयस अय्यर से संबंधित हमारे पास एक अच्छी खबर है। भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ICC की ताजा T20 रैंकिंग में 4th स्थान पर पहुंच गए हैं। ये उनके करियर की बेस्ट रैंकिंग है। वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी 5 मैचों की घरेलू श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बदौलत T20 के कप्तान श्रेयस अय्यर को ICC की ताजा T20 रैंकिंग में 4th स्थान मिला है। अय्यर ने लखनऊ में सीरीज के पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली थी। ये उनके T20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक भी रहा। शतकीय पारी का फायदा अय्यर को रैंकिंग में भी मिला है। उनके 4th स्थान पर पहुंचने का मतलब है कि अब भारत के 3 खिलाड़ी टॉप 4 में शामिल हो गए हैं। ईशान किशन क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं, जबकि अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर काबिज, और ये दर्शाता है अतर कहीं ना कहीं जो आप सवाल आपने पूछा था कि 4 भारत के बल्लेबाज जो टॉप 10 की रैंकिंग में, तो ये दर्शाता है कि वेस्टइंडीज आज कोई भी टारगेट भारत के लिए सेट करे, हम सशक्त तरीके से उसे चेस कर लेंगे।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रशांत, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की ही बात को जारी रखते हैं। क्रिकेट का एक समाचार और है। बंगाल ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करते हुए दिल्ली को 4th और अंतिम दिन 9 विकेट से हरा दिया है। अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 101 रन से आगे खेलते हुए दिल्ली की टीम 106 ओवर और 2 गेंद में 277 रन पर आउट हो गई। कप्तान आयुष बडोनी ने 134 गेंद में 85 रन बनाए जिसमें 10 चौके शामिल हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज अनुज रावत ने 76 गेंद में 39 रनों का योगदान किया। तो ये तो बात हुई दिल्ली और बंगाल के बीच खेले गए रणजी मुकाबले के। प्रशांत, रणजी ट्रॉफी के शेष मुकाबलों की स्थिति आज क्या रही?
1: अधर, अगर ग्रुप ए के मुकाबलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने 267 रन से मुकाबले को जीत लिया है बिहार को हराकर। वहीं ग्रुप सी के मुकाबले में बंगाल ने 9 विकेट से जीत दर्ज की है। ग्रुप सी के मुकाबले में झारखंड और केरला का जो मैच रहा वो ड्रॉ हो गया। वहीं बड़ौदा और गोवा के मैच की अगर बात की जाए तो बड़ौदा ने 135 रन से मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। वहीं मुंबई और चंडीगढ़ में मुंबई ने 155 रन से मुकाबले को जीता। और ग्रुप डी के मुकाबलों की भी बात कर लेते हैं अधर, जहां राजस्थान और तमिलनाडु के बीच का मुकाबला ड्रॉ हो गया है। और ग्रुप डी में एक और मुकाबला खेला गया जहां रेलवेज और उत्तराखंड का भी मुकाबला ड्रॉ हो गया। ग्रुप डी में एक अन्य मुकाबले में हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश को 7 विकेट से हराया। वहीं ग्रुप सी के मुकाबले में जो महाराष्ट्र है उन्होंने सर्विसेज को 127 रन से मात दी। वहीं गुजरात ने उड़ीसा को 10 विकेट से हराकर एक प्रतिष्ठित बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच जो मुकाबला खेला गया वो ड्रॉ हुआ। सौराष्ट्र में रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और शतक भी लगाया था। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच मुकाबला ड्रॉ हुआ। ग्रुप बी के मुकाबले की भी बात कर लेते हैं, जहां त्रिपुरा और हैदराबाद के बीच जो मुकाबला खेला गया था जिसमें हैदराबाद ने 40 रन से जीत दर्ज की। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में विदर्भ और पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो विदर्भ ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 160 रन से मुकाबले को अपने नाम कर लिया।
0: अब लगे हाथ अंक तालिका की ताजा स्थिति पर नजर डाल लेते हैं प्रशांत।
1: जैसे कि हम सबको पता है ये जो रणजी ट्रॉफी हो रही है अलग अलग श्रेणियों में हो रही है, तो ग्रुप ए की अगर बात करें तो बड़ौदा जो है शीर्ष पर है 7 पॉइंट के साथ, एक मुकाबला उन्होंने अपने नाम किया है। वहीं उत्तर प्रदेश और विदर्भ ने अपने अपने मुकाबले जीते जिसके कारण उन्हें 6 पॉइंट मिला है। वहीं मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर का मुकाबला ड्रॉ हुआ। ग्रुप बी की अगर बात की जाए तो हैदराबाद ने पहला मुकाबला जीता जिसके कारण उन्हें 7 पॉइंट मिला। वहीं पंजाब, सौराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम का मुकाबला ड्रॉ हुआ जिसके कारण वो 3 अंक के साथ बने हुए हैं। वहीं कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा अपने अपने मुकाबले हार गए। ग्रुप सी की अगर बात की जाए अतहर तो गुजरात, महाराष्ट्र ने अपने अपने मुकाबले जीते, झारखंड का मुकाबला ड्रॉ हुआ, दिल्ली और उड़ीसा अपने अपने मुकाबले हार गए। ग्रुप डी में हरियाणा और मुंबई ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
0: और अब चलते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात करेंगे। ये कार्यक्रम लगभग 4:30 बजे होगा। प्रधानमंत्री इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय दल के खिलाड़ी, उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। जापान के आईची नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक यानी 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया, जो विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।
2: इंडिया विल विन गोल्ड, इंडिया हैज वन गोल्ड इन द वुमेन्स टीम रिकर्व इवेंट, अ फीट नेवर डन बिफोर, सेलिब्रेट दिस विन, ब्रीथ इन दिस मोमेंट, हिस्ट्री हैज बीन created, first time champions, two youngsters in Kirti and Kumkum along with Ankita Bhagat are stepping onto the prime podium with gold.
3: Out of here, and this match Bharat has won. And with him, here came another gold medal. Bharat has won this match and won another swarn padak here.
4: Hits the target. So we've got gold with a gold in the women's individual trap event. This is absolutely fantastic.
5: There's the touch and it goes. She gets it. Pranavi Sharath-Urs, even par on the day. 15 under. She finishes overall. India's first gold medal winner in golf.
0: तो प्रशांत, कल एक शानदार आयोजन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होने जा रहा है। हम ये देखते हैं प्रशांत कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय खेलों में और खिलाड़ियों में हमेशा अपनी रुचि का इजहार करते हैं। जब जब हमारे खिलाड़ी विश्व पटल पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, प्रधानमंत्री जी उनसे बात करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और जिसका परिणाम ये निकलता है कि हमारे खिलाड़ी और नई ऊर्जा के साथ, नए हौसलों के साथ शानदार प्रदर्शन करते हैं और बड़ी प्रतियोगिताओं भारत का मान बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल अथर,
0: है ना, तो ये एक बहुत अच्छी पहल कहूँ क्या, बल्कि ये बहुत अच्छा क्रम शुरू हो गया है और इसका नतीजा हम देखते हैं कि तमाम खेल स्पर्धाओं में हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देखने को आ रहा है। एशियाई खेलों की तरफ बात करें तो प्रशांत, हमारे श्रोताओं को बताइए कि भारत को सर्वाधिक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक हासिल हुए।
1: अगर आर्चरी की बात की जाए अधर, तो भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आर्चरी में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, और खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो

0: ऐसा ही परिणाम हमें देखने को मिला है। 24 पदक भारत ने जीते हैं, जिनमें एक स्वर्ण, 9 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल थे। अतः अगर हम खिलाड़ियों की बात की जाए तो जो गोल्ड आया है भारत का, जो एक गोल्ड आया वो 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में आया, जहां भारत ने टीम स्पर्धा में जो है गोल्ड पदक जीता था। इसके बाद जो गुलवीर सिंह है उन्होंने भारत को पुरुष 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में सिल्वर मेडल दिलाया है। अधर गुलवीर सिंह ने 500 मीटर की, 1500 मीटर की स्पर्धा में भी भारत को रजत दिलाया। वहीं सर्वेश कुशारे जो है उन्होंने हाई जंप में भारत को पदक दिलाया है। यशवीर सिंह हो गए, मुरली श्रीशंकर हो गए, सावन बरवाल हो गए, या फिर सिंह तूर हो गए, जी बिल्कुल,
1: और सोजन हो गए। इसके अलावा उन्होंने ये महिला लॉन्ग जंप में ये सिल्वर पदक दिलवाया भारत को, सिल्वर मेडल। और 4x4 में रिले में भी जो कि मिक्स्ड स्पर्धा थी उसमें भी हमें रजत पदक हासिल हुआ। तो इस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन रहा जहां तक भारत के एथलेटिक्स का प्रश्न है।
0: और शूटिंग में भी अगर अथर बात किया है तो भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। क्या कुछ रहा शूटिंग में भारत का?
1: शूटिंग में अच्छा प्रदर्शन रहा, 3 हमें स्वर्ण पदक मिले, 8 रजत पदक मिले, 4 कांस्य पदक, मिलाकर अगर हम गिनती करें तो 15 पदक हमें शूटिंग से मिले हैं। अगर व्यक्तिगत बात करें तो स्वर्ण पदक की बात करें तो ये स्वर्ण पदक हमें नीरू ने दिलाया,
0: नीरू ढांडा ने अच्छा प्रदर्शन किया जी अथर,
1: बिल्कुल उन्होंने ट्रैप स्पर्धा में ये पदक हमारे नाम किया। और दूसरा पदक हमें मिला 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में, और तीसरा पदक हमें मिला ट्रैप मिक्स टीम में। तो भारत को कुल मिलाकर ये पदक हासिल हुए, स्वर्ण पदक का जहां तक प्रश्न है। और इसके अलावा सिल्वर पदक की अगर हम बात करें, सिल्वर मेडल कहां से मिले?
0: सिल्वर मेडल भी अलग अलग स्पर्धाओं में हिमांशु ढिल्लों ने भारत को दिलाया, वेलवन एलेवन सेंथल कुमार ने दिलाया, ईशा सिंह ने भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अतहर
1: इसके अलावा हम हॉकी की चर्चा जरूर करेंगे। हॉकी में हमने दोनों स्वर्ण पदक हासिल किए।
0: हॉकी हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, सब में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश का मान बढ़ाया है।
1: आगे बढ़ते हैं। भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने पराग्वे में आयोजित विश्व स्केटिंग खेलों में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक विजेता और आनंद कुमार के बीच समय का अंतर मात्र 4 मिली सेकेंड का था।
0: और चलते चलते अथर एक बार फिर क्रिकेट के मैदान की ओर नजर डाल लेते हैं, जहां अंतिम ओवर का चल रहा है मुकाबला और वेस्टइंडीज ने 3 विकेट पर 235 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.eir@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा। महाराष्ट्र ने 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। पैराग्वे में आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है। और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।

0: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
0: दिव्यांग जनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे, टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, MSMEs को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
1: मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा।
0: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
0: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने

0: भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह स्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
1: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है। और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनके हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट्स चल रही हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
3: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहाँ तक उसे पहुँचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
2: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरैराजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
4: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार हैं और निर्देशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुशमिजाज हैं।
2: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे

0: बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
1: हमारे जो लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, इस धरती को, इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अनियंत्रित केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर।
0: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिलीसेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। साई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में अब तक 1,80,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें फौरन बंद करने को कहा। और हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को दिया 248 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Cabinet approves continuation of National Social Assistance Program for 5 years, revises eligibility criteria and assistance rates for disability pension beneficiaries. Government gives nod to strategic restructuring of IDBI Bank and 78-day bonus for railway employees. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada. Both countries review progress in ties with focus on trade, energy and security. India calls attacks on civil infrastructure in Saudi Arabia unacceptable, urges immediate cessation. Maharashtra declares 305 talukas drought hit, announces initial aid of 5,000 rupees for each farmer before Diwali. India's Anand Kumar Vel Kumar wins silver medal in men's 1,000 meter sprint at World Skating Games in Paraguay. And in men's cricket, fourth T20 international between India and West Indies underway in Hyderabad. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement.

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। और इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि, राजदूत, विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों पुरानी है और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा ज्ञान के साझा प्रयासों से जुड़ी हुई है। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ते हुए कहा,
3: So I'll read the message of Honorable Prime Minister. I am pleased to learn that the Ministry of Culture, through the National Center for the Arts, is organizing an international conference in New Delhi on the theme Bharat's Culture Connections Across the Globe. I warmly welcome the scholars, researchers, diplomats, and other distinguished participants from India and abroad who are participating in this important conference. For centuries, India's civilizational journey has been a story of cultural exchange. Centers of learning

0: such as Nalanda, strengthened the exchange of knowledge between India and other parts of Asia. Monks, scholars, traders and travelers carried India's ideas to different parts of the world through land and maritime routes. Sites such as Angkor and Samborprekuk in the Southeast Asia bear witness to this cultural dialogue, where Indian traditions interacted with local cultures and took distinctive forms. The cultural dialogue continues to evolve even today. Indian philosophy, music, dance, literature, cinema, and cuisine continue to connect India with societies across the world. Indian festivals and traditions are also celebrated with enthusiasm in many countries.
1: Sachiv ne Brihattar Bharat ke bare mein bataya.
0: It's indeed a privilege for Ministry of Culture that Honorable Prime Minister has given us this mandate to take up the mission of bringing India's ancient connections with the rest of the world, to bring them out, to put in scholarly effort to establish these connections along with scholars of the countries in which we had our ancient connections, and then bring these papers and bring these connections with international recognition.
1: अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक आम श्रोता की दृष्टिकोण से अगर इसे समझने का प्रयास करें तो ये क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका हमारी संस्कृति के लिए महत्व क्या है, और साथ ही हम जो अपने लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं एक विकसित देश के लिए, उस दिशा में इसका क्या महत्व है?
2: सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि बृहत्तर भारत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ भारत की पुरानी राजनीतिक सीमाओं का विस्तार नहीं है। इसका आशय उन व्यापक सांस्कृतिक संबंधों से है जिसके माध्यम से भारतीय विचार, भाषाएं, साहित्य, धार्मिक परंपराएं, कला और ज्ञान भारत के बाहर अनेक देशों तक पहुंचे, और इन संबंधों को व्यापारियों, समुद्री यात्रियों, विद्वानों, बौद्ध भिक्षुकों, कलाकारों और सामान्य लोगों ने विकसित किया है। तो यह प्रक्रिया कई शताब्दियों तक चलती रही और इसके प्रभाव आज भी अनेक देशों की संस्कृति में दिखाई देते हैं। तो भारत की सभ्यता की एक बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने विभिन्न विचारों और परंपराओं के साथ संवाद किया है, और यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और दर्शन विकसित हुए हैं। आप देखिए, वैदिक साहित्य है, उपनिषद है, बौद्ध और जैन दर्शन है, योग, आयुर्वेद, गणित और खगोल विज्ञान ने भारत के बौद्धिक जीवन को समृद्ध बनाया है
1: जी।
2: तो समय के साथ इसमें से अनेक विचार भारत की सीमाओं से बाहर पहुंचे, दूसरे देशों ने उन्हें अपनी आवश्यकताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार अपना लिया, और इस प्रकार सांस्कृतिक संबंध केवल एक देश से दूसरे देश तक विचार पहुंचाने का माध्यम नहीं थे
1: जी,
2: बल्कि आपसी सिद्धि और एक दूसरे को समृद्ध करने की प्रक्रिया भी थी। तो ये जो सम्मेलन हो रहा है ये इसी के विषय में।
1: परमेश्वर जी, अगर आपसे मैं पूछूं तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की प्राचीन विरासत और सभ्यतागत संबंधों को वैश्विक मंचों पर रेखांकित करते रहे हैं, और भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसका भी उन्होंने हमेशा किया है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर। जब भी कभी वो लोगों को संबोधित करते हैं तो ये बात जरूर रखते हैं। तो दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने की बात हो, संबंधों को और आगे ऊंचाई पर ले जाने की बात हो, तो ऐसी स्थिति में बृहत्तर भारत का महत्व हमारे लिए क्या है?
3: जी निखिल जी, बृहत्तर भारत का जो एक महत्व वाधवा जी ने रेखांकित किया कि ये केवल भौगोलिक सीमाओं के विस्तार की कोई बात नहीं है
1: जी।
3: और जहां तक प्रधानमंत्री की आपने बात की, तो आज हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ भारतीय डायस्पोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मोदी के साथ विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की जीवंत और खुशनुमा तस्वीरें हर बार हम लोग टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर देखते हैं। विदेश में भारतीयों ने खास पहचान कायम की है, और हम सब जानते हैं कि अब तो बहुत से देशों की राजनीति की मुख्य धारा में भी भारतीय मूल के लोगों ने अपनी पक्की और पुख्ता जगह बना ली है। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर पढ़ा गया, और उन्होंने मुख्य रूप से, जो मुझे लगता है, कि तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया
1: जी।
3: कि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बहुत बड़ी पहचान और सम्मान मिल रहा है, इसमें किसी को भी शक संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो प्रमुख रूप से उन्होंने कही कि विदेशों में ले जाई गई भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों और पुरावशेषों को वापस देश में लाने की कोशिशों में एक नई रफ्तार आई, यानी विदेशों में किसी भी तरह से जो हमारी धरोहरें थी वो चली गई थी, कलाकृतियां थी, पांडुलिपियां थी, तो अब दूसरे देश हमें ससम्मान वो हमारी पुरानी चीजें, पुरानी थाती, पुराना पुरानी ज्ञान।

0: परंपरा के स्रोत वापस लौटा रहे हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर कही कि भारत के संगीत, नृत्य और समृद्ध दर्शन ने हमेशा दुनिया को जोड़ने वाले पुल के तौर पर काम किया है
1: जी।
0: और यही बात है, यही मूल संदेश है जो आपके प्रश्न में अंतर्निहित है। भारत का पूरी दुनिया के साथ जो कूटनयिक रिश्ता है वो कितना प्रगाढ़ है, कितना महत्वपूर्ण है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित की। और हम जानते हैं कि आज बहुध्रुवीय दुनिया है, ऐसे में भारत भी एक प्रमुख ध्रुव के तौर पर उभर रहा है। ये बहुत सी घटनाओं से हम साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं और देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं
1: जी। वाधवा जी, भारतीय विचारों और ज्ञान का जो प्रचार प्रसार हुआ प्राचीन काल में थल और समुद्री मार्गों से हुआ था, और आज की अगर हम बात करते हैं तो भारत अपने सभी सांस्कृतिक संबंधों की बात हो, व्यापारिक संबंधों की बात हो, या ऐसे कूटनीतिक संबंध हो जिन्हें आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जिन्हें बढ़ाया जाना भी आवश्यक हो, उसके लिए भी पर्यटन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ाने के लिए लगातार समुद्री मार्गों को विस्तार देना, जिसमें कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, हिंद प्रशांत की हम बात करते हैं, खुले हिंद प्रशांत की बात करते हैं, महासागर पहल की बात करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं अगर इनका एकीकरण करके देखें तो इन विचारों को कहां तक पहुंचता हुआ आप देखते हैं?
2: देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इतिहास में कई उदाहरण है, जैसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध इस इतिहास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर उनका बहुत गहरा प्रभाव है और बौद्ध धर्म ने भी भारत को एशिया के अनेक देशों से जोड़ा है। तो चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और मध्य एशिया सब जगह बौद्ध विचार पहुंच चुके थे प्राचीन काल में। और फिर उसके बाद आज जैसे प्रधानमंत्री ने नालंदा और विक्रमशिला का जिक्र किया, इन प्राचीन शिक्षा केंद्रों की प्रतिष्ठा भी भारत के बाहर पहुंच चुकी थी। तो भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा समुद्री मार्गों तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि मध्य एशिया को अगर हम देखें तो उसके साथ भी भारत के पुराने संबंध रहे हैं और एक रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध एक व्यापारिक नेटवर्क, उसके माध्यम से व्यापारी, यात्री, विद्वान सभी विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करा करते थे
1: जी।
2: हम देखें तो इसका सांस्कृत मेल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आज जो भारत की विदेश नीति है उसमें भी बृहत्तर भारत की अवधारणा आज भारत की विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम एक्ट ईस्ट नीति को देखें तो उसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इन देशों के साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध आज व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क बनाने में सहायक हो सकते हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समानता, आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित होने चाहिए, ऐसा भारत का विश्वास है। और संस्कृत की निकटता विश्वास बनाने में सहायता करती है, लेकिन उसे ठोस सहयोग और व्यावहारिक कार्यक्रमों में बदलने की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए भारत ने दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाया है, क्योंकि संयुक्त शोध हम देख रहे हैं, काफी सारी छात्रवृत्तियां आरित की गई हैं, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण इस दिशा में उपयोगी कदम हो रहा है। और हम देखते हैं कि नई पीढ़ी को इस विरासत से जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो युवाओं को शोध, छात्रवृत्तियां और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए और डिजिटल अभिलेखागार, ऑनलाइन पुस्तकालय और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी इस दिशा में उपयोगी साधन बन सकते हैं। तो यही बृहत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है और भारतीय परंपरा में जो वैसुदेव कुटुंबकम का विचार है इसी व्यापक दृष्टि को व्यक्त करता है।
1: वाधवा जी, अभी आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की है तो बहुत ही कम शब्दों में अगर इसे समझना चाहे तो इसका बृहत्तर भारत की ऐतिहासिक अवधारणा के साथ किस तरह का संबंध नजर आता है, और ये जो हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, अतीत के संपर्क रहे हैं, आज के रणनीतिक सहयोग को कितना आगे ले जा रहे हैं, खासतौर पे आधुनिक विदेश नीति को धरातल पर उतारने के लिए आर्थिक और सुरक्षा हितों की जब हम बात करते हैं उनको आगे ले जाने की बात करते हैं।
2: जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि रामायण और महाभारत कहानियां दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर इनका बहुत गहरा प्रभाव है और इंडोनेशिया में रामायण नृत्य, नाटक और छाया पुतली कला के माध्यम से आज भी प्रस्तुत की जाती है। थाईलैंड में रामायण का स्थानीय रूप राम कियन के नाम से प्रसिद्ध है। कैम्बोडिया का अंकोर वाट मंदिर भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। तो इन देशों में भारतीय परंपराओं को अपनी स्थानीय मान्यताओं और जीवन पद्धतियों के साथ मिलाकर नए रूप दिए गए हैं, इसलिए इन परंपराओं को केवल भारतीय संस्कृति का विस्तार मानना पर्याप्त नहीं है, वे उन देशों की एक

0: हमने यहाँ के धार्मिक जीवन, शिक्षा केंद्रों और सामाजिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया और दूसरी ओर भारतीय विद्वान बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन और अनुवाद के लिए चीन और दूसरे देशों में गए। तो हमने नालंदा का फिर से विकास किया और भारत सरकार आज भी नालंदा को काफी मान्यता दे रही है। वो इसलिए है क्योंकि भारत प्राचीन काल में जो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और शिक्षा का संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसका एक रिवाइवल जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक कोशिश आजकल हो रही है। और आगे मैंने गांधार की कला का भी जिक्र किया था, तो
1: जी
0: इसमें हमें भारतीय बौद्ध विषयों के साथ यूनानी और रोमन कला के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इन सभी का प्रसार एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है,
1: जी
0: क्योंकि जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं विदेश नीति में, तो ये जो पुराने संबंध हैं भारत के इन सभी देशों के साथ में, इनका जो जिसको हम रिवाइवल बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर वो हो जाए तो विदेश नीति में इसकी काफी सहायता मिल सकती है।
1: जी पराशर जी, भारत और आसियान देशों की अगर हम बात करें तो साझा धार्मिक, साहित्यिक, भाषाई और कलात्मक विरासत की अक्सर चर्चा होती है। तो आपके विचारों को अगर मैं समझना चाहूं तो इन संबंधों की आज कितनी वास्तविक भूमिका आपको लगती है? क्या ये कोई केवल कूटनीतिक आयोजनों तक ही सीमित है, या फिर अभिव्यक्तियों तक सीमित है, या फिर व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं?
2: भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार बहुत से देशों तक बहुत पुराने समय से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। भारत के लोग जिन देशों में पहुंचे, कुशल अकुशल मजदूर और कारीगर बनकर वे जिन देशों में पहुंचे और वहीं बस गए, वहां वहां भारतीय संस्कारों ने जड़ें जमाई। बहुत से विदेशी विद्वानों को भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया और भारतीय विचार किया, उसे अपनाया भी और उसका प्रचार भी किया। भारतीय लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों में जाते थे, बड़ी समृद्ध परंपरा थी, और विदेशी जो लोग थे वो व्यापार के लिए भारत आते थे। आज व्यापार का स्वरूप बहुत ज्यादा वैश्विक है। शिक्षा के लिए देश विदेश के द्वार उदारता से खुले हैं। हुनरमंद भारतीयों ने दुनिया के तमाम देशों में अपनी प्रतिभा के बूते बड़ी और सम्मानजनक जगह बनाई है। ऐसे में 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का बड़ा इम्पोर्टेंस है।
1: जी
2: जैसा आपने बताया कि विश्व भर में भारत के सांस्कृतिक संबंध 73 भारत के जरिए जानने समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि 73 भारत योजना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल उद्देश्य, मूल मकसद केवल इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है। जैसा कि अनिल जी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आज के आधुनिक दौर में भी भारत के वैश्विक सांस्कृतिक और कूटनैतिक संबंधों को नए आयाम देना है। खास बात यह है कि इस सम्मेलन में चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान समेत दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यानी नुमाइंदे, राजदूत और विद्वान लोग भाग ले रहे हैं। ऐसे में केवल एक दैशिक इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है। मैं बहुत सारे एक दूसरे से संबंधित देशों के जब बनते हैं तो केवल भाषाई आधार पर नहीं, साहित्यिक आधार पर नहीं, विकास के और दूसरे जो बुनियादी माध्यम है उनके द्वारा नहीं, एक बहुआयामी अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है। और भारत सरकार ये काम कर रही है और काफी सफलता पूर्वक कर रही है, ये हम कह सकते हैं।
1: जी वाधवा जी, भारत चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच प्राचीन काल से व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। आपने सिल्क रूट का भी जिक्र किया था। आज के समय में जब लगातार हम ये देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और एशिया में भी इसका असर देखा जा रहा है, तो साझा इतिहास जो हमारा रहा है 73 भारत में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे किस नजरिए से आज देख सकते हैं? क्या ये सभी देशों के बीच में सहयोग का एक बड़ा आधार बनेगा, या इतिहास को वर्तमान की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से हम अलग रखें, या दोनों को मिला करके आगे बढ़ सकते हैं?
0: 73 भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है, और आज दुनिया अनेक संघर्षों, राजनीतिक तनावों और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद का महत्व और बढ़ जाता है। अब किसी दूसरे समाज की भाषा, कला, साहित्य और परंपराओं को समझने से उसके लोगों के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। इससे मतभेदों के बावजूद सहयोग के रास्ते खुले रखने में मदद मिलती है। तो नई पीढ़ी को हमें इस विरासत से जोड़ना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, युवाओं को शोध और छात्रवृत्तियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए। इसी तरह से कई बार किसी देश में सुरक्षित दस्तावेज दूसरे देश के इतिहास को समझने में भी सहायता करते हैं, तो ऐसे में संयुक्त शोध और जानकारी का आदान प्रदान

0: विशेष महत्व रखता है। कभी विरासत का संरक्षण भी साझा जिम्मेदारी है। सरकारों के साथ साथ स्थानीय समुदायों, संग्रहालयों और शैक्षणिक संस्थानों में उनकी भागीदारी भी आवश्यक है। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसमें आपसी सम्मान और साझा हितों पर बहुत जोर है, आज के कॉन्टेक्स्ट में और हम जो ये जो सम्मेलन भारत में हो रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्णता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि नई दिल्ली में ये जो आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। तो इससे आशा की जा सकती है कि भारत और विश्व के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर नए शोध होंगे और विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा और हमारी साझा विरासत को सुरक्षित रखने के नए रास्ते भी खुलेंगे।
1: जी पराशर जी, बृहत्तर भारत की अवधारणा सांस्कृतिक गौरव के संदर्भ में भी हमारे सामने आती है और इसे राजनीतिक विस्तारवाद से भी जोड़ा जा सकता है। तो आपका विचार क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई अंतर है या दोनों अब एक ही सिक्के के दो पहलू होकर के एक साथ चलेंगे ताकि इतिहास को ना तो संकीर्ण दृष्टि से देखा जाए और ना ही उसका अधिकतम राजनीतिक इस्तेमाल हो?
2: निखिल जी, बृहत्तर भारत योजना, ये योजना पहली बार भारत की किसी सरकार ने शुरू की है और इसके महत्व को इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये योजना 2026 से 2031 के बीच तक चलेगी और इसके बाद इसका कोई दूसरा चरण पर विचार किया जा सकता है। बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जहां तक बात है तो ये भारत सरकार की बृहत्तर भारत योजना का ही हिस्सा है। संस्कृति मंत्रालय के ग्लोबल एंगेजमेंट टीम के तहत चलाई जा रही इस योजना के जो लक्ष्य हैं उन्हें पहले समझ लेते हैं।
1: जी,
2: ये है कि दुनिया भर में बिखरी हुई भारत की साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण करना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर, ये इम्पोर्टेंट है, दूसरे देशों के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय नामांकन दाखिल करना भी इसका लक्ष्य है और एक समर्पित डिजिटल बृहत्तर भारत पोर्टल तैयार करना ताकि वैश्विक स्तर पर इस साझा विरासत को शोधकर्ताओं और आम जनता तक आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सके, ये भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। और ये सम्मेलन नई दिल्ली में क्यों किया जा रहा है, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, ये भी जान ले।
1: जी,
2: ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद यानी ग्रेटर इंडिया सोसाइटी, काउंसिल नहीं, परिषद के लिए काउंसिल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर किया जा रहा है, यानी ये शताब्दी वर्ष है बृहत्तर भारत परिषद। परिषद की स्थापना 14 अक्टूबर 1926 को तत्कालीन कलकत्ता में भारतीय विद्वानों ने की। इसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस संस्था का मूल उद्देश्य भारत के बाहर, खासकर दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति, कला, भाषा, धर्म और आध्यात्मिक विचारों के प्रसार और उसके ऐतिहासिक प्रभावों का अकादमिक अध्ययन करना। यानी हम देख रहे हैं कि 100 साल पहले ही हमारे देश के जो दूरदर्शी विद्वान थे उन्होंने भांप लिया था कि भारतीय संस्कृति की जड़ें पूरी दुनिया में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई रहें, इसके लिए बाकायदा एक संस्थागत प्रयास किया जाना चाहिए और वो प्रयास 100 साल पूरे होने पर किया गया। इसकी जो थीम है सम्मेलन की, 3 दिनों के दौरान विभिन्न देशों के भारत के साथ सभ्यतागत जुड़ाव, पुराने व्यापार मार्ग जैसे सिल्क रूट का जिक्र हुआ, उल्लेख हुआ, दर्शन, कला, वस्त्र यानी टेक्सटाइल और खान पान के आदान प्रदान जैसे 10 जीवंत विषयों पर गहन चर्चा इस सम्मेलन में होगी। एक एक करके अगर देखें हम तो शुरुआती जुड़ाव और सभ्यतागत संपर्क यानी प्राचीन पुरातत्व, व्यापारिक मार्ग और शुरुआती संपर्क के साधन कौन कौन से थे उनका अध्ययन करना, धार्मिक परंपराएं और ज्ञान प्रणालियां जैसे बौद्ध धर्म का उल्लेख हुआ, हिंदू और सूफी विचारों का वैश्विक प्रसार इसका उल्लेख हुआ, इससे संबंधित अध्ययन करना, दर्शन, भारतीय ग्रंथों और दर्शन का दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों में रूपांतरण यानी अनुवाद और उसका प्रकाशन, मूर्त वास्तुकला, मूर्तिकला और प्रदर्शन कलाओं की निरंतरता क्या क्या रही इसका अध्ययन, प्राचीन काल में वस्तुओं और विचारों के वाहक के रूप में व्यापारिक संबंध किस तरह के थे
1: जी,
2: उसका अध्ययन करना, वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासियों द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण और सभ्यतागत निरंतरता इसकी स्टडी करना, भोजन और पहनावे के माध्यम से संस्कृतियों का आपसी तालमेल बिठाना, अमूर्त विरासत का संरक्षण करना जैसे लोक कलाएं हैं, त्योहार हैं और मौखिक वाचिक परंपराएं हैं, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारतीय विद्वता की पुनर्प्राप्ति ये लक्ष्य हासिल करना, और समकालीन दौर में यानी आज के दौर में कंटेम्पररी टाइम में सांस्कृतिक कूटनीति आधुनिक युग में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को स्टडी करना इसका लक्ष्य है।
1: जी वाधवा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक

0: विचार विमर्श की जब बात होती है तो इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में किस तरह का स्थान प्राप्त होता है, हमारी मतलब जो विरासत है उसे वहां पर किस तरह से लिया जाता है?
1: आज हमारे भारतीय मूल के लोग विश्व के अनेक देशों में रहते हैं और मॉरिशस, फिजी कैरिबियन देश हैं, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है क्योंकि वो भारतीय भाषाएं बोलते हैं, त्योहार मनाते हैं और फिर संगीत, नृत्य और खान पान की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही वे अपने निवास देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी योगदान देते रहते हैं। तो प्रवासी भारतीय भारत और दूसरे देशों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेतु है। उनकी भूमिका केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था सीमित नहीं है, वे अपने अनुभवों, भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से दोनों समाजों को करीब लाते हैं और कई पीढ़ियां भारतीय परंपराओं को अपने निवास देशों की संस्कृति के साथ जोड़कर नए रूप भी दे रही हैं। तो इससे पता चलता है कि संस्कृति कोई स्थिर वस्तु नहीं है, जीवन के साथ बदलती है और आगे बढ़ती रहती है। तो आज योग हो या भारतीय संगीत हो, नृत्य, सिनेमा, साहित्य और खान पान की लोकप्रियता विश्व के अनेक देशों में दिखाई देती है। अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत ने कुछ सालों से मनाया है, योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है और भारतीय फिल्मों और संगीत ने विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों को भारत से परिचित कराया है। ये भी भारत की सांस्कृतिक पहचान की मजबूती बताते हैं और भारत की संस्कृति में करुणा, अहिंसा, सहिष्णुता और प्रकृति के प्रति सम्मान जैसे विचारों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि आज हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच इन विषयों पर विचार विमर्श उपयोगी हो सकता है और पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ अध्ययन करके हम उसके उपयोगी पक्षों को समझ सकते हैं और मानवता के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति शक्ति केवल उसके प्राचीन इतिहास में नहीं बल्कि दूसरों से सीखने, विचारों का आदान प्रदान करने और फिर विश्व को जोड़ने की क्षमता में भी है। तो यही बेहतर भारत का संदेश भी है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, विश्व की विविधता का सम्मान करना और शांतिपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण भविष्य के निर्माण में योगदान देना।
0: जी पराशर जी, आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है जहां पर ऐतिहासिक तथ्यों की बात तो होती है, साथ में उसमें अतिरंजित दावे भी बड़ी तेजी से फैल जाते हैं। तो ऐसे में जब हम इतना बड़ा एक आयोजन लेकर के चल रहे हैं जहां पर बृहत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, कैसे सुनिश्चित होगा कि सांस्कृतिक विरासत की जो चर्चा होगी वो तथ्यों पर आधारित होगी और उन्हीं बातों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो वास्तव में हमारी विरासत से, हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से जुड़े रहे हों?
2: निखिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरनेट की दुनिया में आजकल गलत खबर, गलत सूचना, गलत तथ्य बड़ी आसानी से बहुत सुगमता के साथ प्रचारित कर दिए जाते हैं, लेकिन आज इंटरनेट की सामग्री जो है पूरे विश्व में उसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है और सरकारी सिस्टम में भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि इस तरह की जो फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, गलत तथ्य है, उनका प्रसारण और उनका प्रसार प्रचार पर अंकुश लगाया जा सके, उन्हें फैलने से रोका जा सके। पूरे आयोजन का जो लक्ष्य है, अगर एक वाक्य में कहें तो औपनिवेशिक सीमाओं से दूर जाकर, परे जाकर भारत को मात्र एक भौगोलिक भूमि न मानकर एक आध्यात्मिक और सभ्यतागत विचार के रूप में फिर से स्थापित करना है और अगर इसके प्रचार प्रसार पर सही तरह से सकारात्मक माध्यमों से सकारात्मक स्वरूप में लोगों तक पहुंचाया जाए, दुनिया भर में पहुंचाया जाए, तो मुझे लगता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि अभी उल्लेख हुआ, प्राचीन भारत के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय बहुत सारे देशों के छात्र विद्या अध्ययन के लिए आते थे। भारत की पहल पर पूरी उस समय तो इंटरनेट नहीं था, लेकिन नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की जो पहचान है, उनकी जो कीर्ति है, पूरी दुनिया में किस तरह फैली होगी। भारत की पहल पर पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है, निल जी ने भी उल्लेख किया। भारतीय आयुर्वेद की ओर पूरी दुनिया में आकर्षण बढ़ रहा है। भारतीय खगोल विज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत ने शून्य दिया जिसके बिना गणितीय गणनाएं संभव ही नहीं थी। रामलीलाओं का आयोजन दुनिया के कई देशों में होता है। होली दीपावली जैसे भारतीय त्योहार पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं आजकल। भारतीय संगीत, नृत्य परंपराएं, खान पान, शाकाहार, संयम, प्रकृति के सम्मान की परंपरा पूरी दुनिया ने अपनाई है। अनिल जी ने भी कहा, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे प्राचीन विचारों की पूरी दुनिया कायल है और ये विशुद्ध भारतीय विचार हैं। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु, विदेशी नागरिक उसमें शामिल होने आए। और भी हमारे जो आध्यात्मिक आयोजन होते हैं उसमें बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे जो भारतीय तो आते ही हैं, लेकिन विदेशी नागरिक भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में इस तरह के जो आयोजन है वो बहुत आवश्यक हो जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार ये योजना 5 साल के लिए लागू की है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और बृहत्तर भारत योजना कोई राजनीतिक योजना नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक सांस्कृतिक जो धरोहर है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है बहुत प्राचीन समय से, उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार का ये अच्छा अवसर है। और इसके प्रचार प्रसार पर सरकार को भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और जो संस्कृति कर्मी है हमारे देश के, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इनको भी इसके प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान देना चाहिए, तो इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और खासतौर पर नई पीढ़ी के सामने।
0: जी अनिल वाधवा जी और रवि पराशर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीति साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत

0: और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया जा रहा है। सरकार ने भारत और मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया है। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। आनंद कुमार वेल कुमार ने पराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. The approval also includes renaming of the scheme and its sub-schemes, along with revisions to the eligibility criteria, coverage and rates of assistance for disability pension beneficiaries. The National Social Assistance Program has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the disability pension scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above. He said the benchmark disability criterion for eligibility will be reduced from 80% to 40%.
2: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities will be eligible for the pension from birth. The number of beneficiaries is expected to increase significantly, with approximately 27 lakh persons with disabilities expected to benefit under this pension scheme. The total number of beneficiaries will rise to around 3 crore 20 lakh.
1: Pension schemes for senior citizens and widows as well as the family benefit scheme will continue in their existing form. The union minister said the government has also given the nod to the strategic restructuring of IDBI Bank. Mr. Vaishnav said the cabinet has also cleared a productivity-linked bonus of 78 days for more than 11,40,000 eligible railway employees in recognition of their performance. Prime Minister Narendra Modi today reaffirmed India's commitment to building a constructive and forward-looking strategic partnership with Canada aimed at delivering tangible benefits to the people of both countries. Mr. Modi met Canadian Foreign Minister

0: Vinita Anand in New Delhi and reviewed ongoing efforts to strengthen bilateral relations. During the meeting, the two sides discussed enhancing cooperation in key areas including trade, technology, security, energy, education and people-to-people exchanges. The Prime Minister emphasized the need to sustain the momentum in bilateral engagement and translate it into concrete outcomes, including the early conclusion of negotiations on a comprehensive economic partnership agreement. India has strongly condemned the recent attacks on civilian infrastructure in Saudi Arabia. Briefing the media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attack on the Aramco headquarters, which took place in the West Asian country yesterday. He described such acts as totally unacceptable and called for an immediate end to them. Meanwhile, the Indian Embassy in Riyadh today urged all Indian nationals to continue to follow local authorities' instructions, stay indoors in case of aerial attack, and refrain from circulating videos or news related to ongoing events in view of the current situation in Saudi Arabia. Prime Minister Modi will launch five major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh tomorrow through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. Maharashtra has declared 305 of the state's 358 talukas drought hit, covering more than 85% of the state's talukas, following the addition of 40 more talukas to the list. Speaking to reporters after a state cabinet meeting in Mumbai today, Chief Minister Devendra Fadnavis said each farmer in the affected areas will receive initial financial assistance of 5,000 rupees directly into their bank accounts before Diwali. The Pension Fund Regulatory and Development Authority and NPCI Bheem Services Limited have launched Tatkal NPS on the Bheem Payments app. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani se Vishv Darpan ke saath main Aman Yadav. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचना पर हुए हमलों को अस्वीकार बताया, कहा ऐसे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के कमांडर को मार गिराने का दावा किया। विश्व स्केटिंग खेलों में भारत के आनंद कुमार वीरकुमार ने 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान के क्षेत्रों में संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच आपसी जुड़ाव की गति को बनाए रखने और उसे ठोस नतीजों में बदलने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने के विषय पर बातचीत हुई। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत और रूस ने आज भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत जारी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर और रूस के सुरक्षा परिषद के उप सचिव अलेक्जेंडर वेंडोटोव ने नई दिल्ली में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर आयोजित 7वीं भारत रूस विशेष बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके प्रभाव सहित साझा हित के

0: पर चर्चा हुई। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत और मॉरिशस ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाए रखने के लिए सोचा है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
1: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है। और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनकी हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट्स चल रही हैं।
0: भारत ईरान राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार वार्ता के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने सोमवार को अपनी ईरानी समकक्ष डॉक्टर मोहसिन रेजाई से बात की। इस दौरान भारतीय नाविकों और टैंकरों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। भारत पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की हाल की टिप्पणियों को श्री जायसवाल ने निराधार और अस्वीकार बताया। उन्होंने कहा कि संस्था ने दुनिया के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों या कानून प्रवर्तन कार्रवाई पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
2: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
0: श्री सिंह ने समुद्री सुरक्षा, आपदा मोचन, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को AI, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इजराइल रक्षा बलों ने गाजा शहर में हवाई हमलों में हमास के कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। कमांडर की पहचान मोमेन अहमद सलामे अय के रूप में हुई है। कमांडर पर आरोप है कि उसने गाजा शहर में हमास के कब्जे में इजराइल के बंदकों को रखा हुआ था। वह हमास की गाजा ब्रिगेड के कमांडरों का सहायक था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने आज रूस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित ऊर्जा युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रूस ने रातों रात यूक्रेन की ऊर्जा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इससे लगभग 6 लाख लोग बिजली से वंचित हो गए हैं। बलूच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान में 2 अलग-अलग बलूच नागरिकों की हत्याओं की रिपोर्ट दी है और इन घटनाओं में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की संलिप्तता का आरोप लगाया है। इन घटनाओं ने बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने, गैर न्यायिक हत्याओं और नागरिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। कमेटी ने जबरन गायब किए जाने, हत्याओं और गैर न्यायिक हत्याओं का एक निरंतर सिलसिला बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। इसने संयुक्त राष्ट्र से भी इन घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। वैश्विक तेल आपूर्ति में इस वर्ष 5.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन बीपीडी की गिरावट दर्ज की गई है। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति औसतन 100.7 मिलियन बीपीडी पर आ जाएगी। हालांकि 2027 में इसमें 7.7 मिलियन

0: बीपीडी की वृद्धि होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने चेतावनी दी है कि खाड़ी देशों में नए सिरे से शुरू हुए हमलों ने इस वृद्धि को कमजोर कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज से 3 दिन तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा के लिए अपने समकक्ष से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत के आनंद कुमार विलकुमार ने पैराग्वे में आयोजित विश्व स्केटिंग खेलों में पुरुषों का 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिली सेकेंड में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। और हैदराबाद में 4th T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 5 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से कल नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आइची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। यह लगातार दूसरी बार है जब भारत एशियाई खेलों में शीर्ष 5 देशों में शामिल रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचना पर हुए हमलों को अस्वीकार बताया, कहा ऐसे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के एक कमांडर को मार गिराने का दावा किया। विश्व स्केटिंग खेलों में भारत के आनंद कुमार विलकुमार ने 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता और वेस्टइंडीज ने 4th T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेणुका विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada. Both countries review progress and ties with focus on trade, energy and security. New Delhi calls attacks on civil infrastructure in Saudi Arabia unacceptable, urges immediate cessation. Israeli military says it killed a Hamas commander in Gaza City. India's Anand Kumar Velkumar wins silver medal in men's 1000 meter sprint at World Skating Games in Paraguay. And in men's cricket, West Indies set a target of 248 runs for India in 4th T20 International in Hyderabad. Prime Minister Narendra Modi today reaffirmed India's commitment to building a constructive and forward-looking strategic partnership with Canada aimed at delivering tangible benefits to the people of both countries. Mr. Modi met Canadian Foreign Minister Anita Anand in New Delhi and reviewed ongoing efforts to strengthen bilateral relations. During the meeting, the two sides discussed enhancing cooperation in key areas including trade, technology, security, energy, education and people-to-people exchanges. The Prime Minister emphasized the need to sustain the momentum in bilateral engagement and translate it into concrete outcomes, including the early conclusion of negotiations on a comprehensive economic partnership agreement. Earlier in the day, the Canadian Foreign Minister held talks with External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship Jayant Singh in the national capital. India has strongly condemned the recent attacks on civilian infrastructure in Saudi Arabia. Briefing the media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attack on the Aramco headquarters, which took place in the West Asian country yesterday. He described such acts as totally unacceptable and called for an immediate end to them.
2: There have been a string of attacks in Saudi Arabia, and we have condemned those attacks. Yesterday also there was attack on Aramco headquarters. We condemn all such attacks on civilian infrastructure in Saudi Arabia, and we feel that such attacks need to cease immediately. They are totally unacceptable.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। ये रात की खामोशी, ये आलमी तन्हाई, फिर महक उठा हर सिंगार, फिर तेरी याद आई। दिल के आंगन में टिमटिमाने लगे जुगनू, चांद की सूरत में जब वो सूरत नजर आई। बाजार फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपके

दिल में इश्क हो और महबूब नजरों से दूर हो तो दीदार की हसरत होना लाजमी हो जाता है। उनके दीप की तलब से बेकरार दिल ये कहता है, तुम अपने चांद तारे कहकशां चाहे जिसे देना, मेरी आंखों पे अपनी दीद की एक शाम लिख देना।

0: क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम की एक प्रक्रिया है। दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, पूरा दिन रहे ऊर्जावान।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
3: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
2: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
3: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
4: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
5: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.5।

ये चाहते भी ना कमाल करती हैं, ख्वाहिशों के पीछे भागती जाती हैं और इस तरह भागते दौड़ते जिंदगी फुर्सतों की तमन्ना में कब हाथ से निकल जाती है पता भी नहीं चलता। यो वक्त गुजरता है फुर्सत की तमन्ना में जिस तरह कोई पत्ता बहता हुआ दरिया में, साहिल के करीब आकर चाहे कि ठहर जाऊं, चाहे कि दम ले लूं, दामन को जरा भर लूं उस फूल की खुशबू से जिसको अभी खिलना है। फुर्सत की तमन्ना में यूं वक्त गुजरता है और हसरते हैं कि कहती हैं, क्या कहती हैं, सुनते हैं फिल्म क्रांति के इस गीत में।

दिल की दहलीज पर यादों के दिए रखे हैं। आज तक हमने ये दरवाजे खुले रखे हैं। तुमको बताया ना बताएंगे कभी कि कितने खत अभी तेरे लिखे हुए रखे हैं।

फिल्म गीत के इसी गीत के साथ ही हरसिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी राजनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और 2 अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरू, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50 लाख रुपए नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की आगे की जांच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रुपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में अर्जुन।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,623। इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन सर्जेस टू 11.39% इन सितंबर दिस ईयर एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी प्रोजेक्ट्स ग्लोबल ऑयल सप्लाई टू डिक्लाइन बाय 5.8 मिलियन बैरल्स पर डे। फोरकास्ट ऑयल डिमांड टू फॉल बाय 2.6 मिलियन बैरल्स पर डे इन 2026।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख, सेंसेक्स में 250 से ज्यादा अंकों की सुस्ती, निफ्टी 22,623 पर बंद हुआ। भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक तेल आपूर्ति में 58 लाख बैरल प्रतिदिन कमी का अनुमान व्यक्त किया। तेल की मांग में 26 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट की बात कही।

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज का कारोबार उतार चढ़ाव से भरा रहा और अंत में गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 252 अंक यानी 0.34% गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। निफ्टी 99 अंक यानी 0.44% लुढ़क कर 22,623 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप सूचकांक में 0.1% की मामूली गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% नीचे पहुंच गया।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन अ नेगेटिव जोन इन अ वोलेटाइल ट्रेड टुडे। सेंसेक्स ड्रॉप्ड 252 पॉइंट्स 0.34% टू क्लोज एट 72,782। निफ्टी डिप 99 पॉइंट्स 0.44% टू सेटल एट 22,623। इन द ब्रॉडर मार्केट एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द मिड कैप 100 इंडेक्स eked out a marginal loss of 0.1% while the small cap 100 index fell 0.3%।
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से आज 19 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में बजाज फाइनेंस 2.5% से अधिक लुढ़का, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.2% से अधिक गिर गया और बजाज फिनसर्व में 2% की सुस्ती देखी गई। इसके विपरीत इंफोसिस में 2.5% का उछाल आया, टेक महिंद्रा 2.2% के लाभ में रहा और टीसीएस में 1.5% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 17 आउट ऑफ द 28 सेक्टर्स edged lower among the top laggards. Housing finance dropped 1.1%, insurance slipped 1% and healthcare dipped over 0.9%. In contrast, utilities surged nearly 2.1%, power advanced over 1.7% and IT gained 1.4%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,563 companies advanced. 1,810 companies declined and 205 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 13 पैसे की मजबूती के साथ 95.15 रुपए पर बंद हुआ। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो बाजार की चाल रही, जिस तरह से बाजार में उतार चढ़ाव हमने देखा और अंत में गिरावट भी नजर आई, किन कारणों को इनके पीछे जिम्मेदार मानते हैं, क्या स्थितियां रही जिनसे बाजार की ऐसी स्थिति हमारे सामने नजर आई?
2: देखिए निखिल जी, काफी अरसे से मार्केट का जो टेक्सचर है बड़ा खराब चल रहा है और कल थोड़ी उम्मीद हमें लग रही थी, जिस तरह कल मार्केट में काफ़ी अच्छा उछाल आया था, लेकिन आज फिर लुढ़क गया
1: जी।
2: तो टेक्सचर बड़ा वीक है, उसके कई कारण हैं। एक तो जैसे आप अपने न्यूज़ रीड आउट में क्रूड ऑयल का जिक्र किया आपने, वो उसमें फिर उछाल आ गया क्योंकि मिडल ईस्ट की जो समस्या है और जटिल हो गई। अब वो नॉट ओनली पर्शियन गल्फ में इशू हो रहा है, उधर रेड सी में भी जो हूतीज का हमले हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और जो डेली सप्लाई है मिडल ईस्ट से वो बहुत उसको फर्क पड़ा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट खराब हो गया। और दूसरा ये है कि पूरे संसार में इस टाइम महंगाई का काफ़ी आलम है और महंगाई जो है एक पूरे संसार में एक समस्या बनी हुई है
1: जी।
2: चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, अबर अभी आपने जिक्र किया WPI का इंडिया में, हमारे यहाँ भी को तो WPI फिर बाद में कंज्यूमर प्राइस में फिर रिफ्लेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं मिला के ओवरऑल सेंटीमेंट को ख़राब करे हुए थे और इसी वजह से ये सारे फैक्टर्स मिल के आज में जो मार्केट में हुआ वो वॉलेटिलिटी है वो चालू है अभी भी।
0: Well, how do you expect the markets to behave, especially with the disinvestment announcement by the cabinet today? Because we're talking about close to market closing hours. How do you see that really pushing the PSU bank index and Nifty Bank for that matter? Even though Nifty Bank fell by 0.3%, the PSU bank index went up by 1.63%. How do you see disinvestment, where almost 61% of the bank has been disinvested to a foreign entity?
2: Well, that only would send a signal. You are talking about one bank being disinvested. Well, that would send a signal that the government is serious about disinvesting and doing some restructuring or reforms in the banking sector. But it's a small bank at the end of the day. But it sends a signal that, you know, the disinvestment or the commitment to disinvestment is serious. Beyond that, I don't think it would impact greatly.
0: But for a trigger of the market, you know, we're talking about stake sale and even the second quarterly earnings, which is being reported right now. For instance, IT has reported strong numbers, which is why we have seen that the IT index actually went up by 1.4%. Fundamentally speaking, do you expect the market to be able to beat the negative headwinds? What's happening right now?
2: Well, when it comes to second quarter results, it's too early. It's just started. The earnings season has just started. When it comes to IT in particular, you always know that there is a reverse trade between AI play and the IT. So today, for a change, you could see that even the reverse play sometime was not that kind of a reverse. But IT, because the valuation were too tempting sometimes, because the

0: the valuation had dragged so much. And another signal emerging from the IT majors was that some of our Indian IT companies are now able to negotiate this entire AI challenge, because some of them, for instance, India's largest IT company derives at least 10% of its revenue in association with AI tools or AIC structure. They are playing ball with the AI rather than now, because they have realized that you can't go against the wind. So you play ball with the AI. So that kind of signal is emerging. Or is it too early to say whether this trend would sustain? Because as I said earlier, the texture of the market today is quite weak, and because of various factors that I listed before, and we have to be very cautiously approaching the market.
1: A strong percentage of the revenue of IT companies is from artificial intelligence, and the dollar index is now creeping up to 102.24. A stronger dollar means that the revenue outlook for IT companies has gone up. Their earnings right now has also gone up when you exchange it with the rupee.
0: Well, what this currency advantage that you're talking about is not the main factor. Ultimately, what is happening in the Indian IT sector is that because of the AI, their customers are now demanding the revenue model or the business model to shift from the fee-based to the outcome-based. And that's a kind of a restructuring that these IT companies, Indian IT companies, are doing it very efficiently now. That's the signal. So IT is a renewed hope is emerging around the IT companies at the moment.
2: प्रकाश जी, अभी मार्केट को अगर देखें, एनालाइज करें, तो एक दिलचस्प सी चीज नजर आती है कि अब जो बिकवाली हो रही है वो व्यापक पैमाने पर हो रही है, सेक्टर वाइज से कहीं आगे बढ़कर के व्यापक तरीके से पैसा निकाला जाना, ये कैसा, मतलब किस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने है? क्या इसमें FIS का ज्यादा रोल है या DIS का ज्यादा रोल है, या समय की मांग है कि इस तरह का होना चाहिए?
0: ये तो मार्केट प्ले है, और ये तो जग जाहिर है कि FIS यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसको अगर एक चीज़ में थोड़ी अगर किसी ने स्टेबिलिटी दी है उस आउटफ्लोज को रोकने की, या उस आउटफ्लो को न्यूट्रलाइज करने की काफ़ी हद तक, वो हमारे DIIs ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से दी है
2: जी।
0: और DIIs जो है वो फिर म्यूचुअल फंड पे काफ़ी डिपेंड कर रहे हैं। जो आम मिडिल क्लास का इन्वेस्टर का पैसा है, जो तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया हर मंथ में आ रहा है इक्विटी में सिप से, और बहुत क्रेडिट देना चाहिए हमारे मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स का कि वो इतनी मैच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि घबरा नहीं रहे। उनको अगर नेट एसेट वैल्यू NAV कम भी दिखता है तो वो इस चीज़ में अपनी उम्मीद रखे हुए हैं कि नहीं, थिंग्स विल टर्न अराउंड। तो ये सारी चीज़ें FIIs तो जा रहे हैं बिकॉज कैपिटल के जो एवेन्यूज हैं वर्ल्ड में हर जगह हैं, तो वो लोग माप तोल करते रहते हैं
2: जी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग यानी रणनीतिक पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नए उद्योगों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि बैंक के लिए एक रणनीतिक साझेदार चुना गया है और इसकी मदद से बैंक में नई पूंजी लगाई जाएगी। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि भारत सरकार और LIC पुनर्गठित इकाई में 34% हिस्सेदारी अपने पास बनाए रखेंगे। प्रकाश जी, जब भी इस तरह की बात होती है, रणनीतिक पुनर्गठन को मंजूरी दी जाती है, कई सारी योजनाएं उसके पीछे काम कर रही होती, कई सारी नई चीजें लाने की सामने बात हो रही होती है, ऐसे में यह कहा जाना कि नई पूंजी लगाई जाएगी, नई बातें होंगी, और खासतौर पर सरकार यह भी कह रही कि भारत सरकार और LIC इस पुनर्गठित इकाई में 34% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी, इसके क्या मायने बनते हैं?
0: देखिए निखिल जी, किसी भी बैंक को आगे बढ़ने के लिए लगातार पूंजी चाहिए। ये टेलीकॉम सेक्टर की तरह है
2: जी।
0: अगर बैंक को किसी, इवन बेस्ट ऑफ द बैंक्स, अगर आगे बढ़ना है तो उसको हमेशा पूंजी चाहिए, क्योंकि आपने लेंडिंग करनी है। तो लेंडिंग और कैसे बढ़ाएंगे जब तक आपकी अपनी पूंजी या वो खाली जो आपका पब्लिक का डिपॉजिट होता है, व्हाट इज नोन एज ए, अंग्रेजी बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आपका अपना भी कितना पैसा है, व्हाट इज योर ओन स्किन इन द गेम। तो वो उसके लिए अगर आपको किसी भी बैंक को आगे बढ़ना तो एडिशनल पूंजी चाहिए। तो सरकार ने अपनी विजडम में सोचा होगा और सोचा है कि इस बैंक को अगर पूंजी एक स्ट्रेटजिक पार्टनर मिला लेते हैं तो वही क्या।
2: बैंक की स्थिति भी हमने देखा है कि पिछले दिनों में बेहतर ही नजर आई है।
0: हाँ, क्योंकि तभी तो स्ट्रेटजिक पार्टनर आएगा ना आपके उसमें, तो आया स्ट्रेटजिक पार्टनर।
1: सो यू सी द क्रेडिट towards MSMEs improving as a result of this FDI stake into IDBI by Fairfax Financial Holdings Limited?
0: Well, in the overall scheme paradigm of banking, this is one of the small banks. It's not a big bank. So the credit, when you say credit growth anyways has been quite a steady, quite an impressive credit growth in the last few months. So वो कोई इशू नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ इज नॉट अ इशू। व्हेन इट कम्स टू एमएसएमईज, इट्स अपॉन द इंडिविजुअल बैंक टू डिसाइड व्हाट इज द काइंड ऑफ मिक्स दैट इज गोइंग टू काइंड ऑफ अ फॉलो। इज इट गोइंग टू डू पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस? एंड ऑफ लेट पर्सनल फाइनेंस हैज बीन द फ्लेवर ऑफ द सीजन, बट यू डोंट नो कॉर्पोरेट। बट व्हेन इट कम्स टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बैंक्स, दे प्रेफर MSME, they prefer, but there's enough competition. So credit growth should be there, but we'll see. But it sends a good signal, as I said earlier, to induct a strategic partner.
2: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से थोक महंगाई दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबर, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा है। आंकड़ों के अनुसार सितंबर में ईंधन और विद्युत की महंगाई दर बढ़कर 25.85% हो गई, जबकि अगस्त में ये 22.93% थी। विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर 8.37% से बढ़कर 9.76% और प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर 7.76% से बढ़कर 8.67% हो गई है। वहीं खाद्य वस्तुओं और खाद्य उत्पादों की महंगाई दर भी अगस्त के 7.05% से बढ़कर सितंबर में 8.66% पर पहुंच गई। बहुत ही कम शब्दों में अगर इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूं तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो ये आंकड़े क्या कहते हैं?
0: ये आंकड़े समझाते हैं कि हमारे पास चैलेंज है इन्फ्लेशन का
2: जी,
0: और रॉ मटेरियल कॉस्ट जो WPI होता है, रॉ मटेरियल आपने जिक्र किया, जब आइटम पड़े आपने उसमें जिक्र किया, रॉ मटेरियल कॉस्ट का काफी प्रेशर है और ये आगे चल के और चैलेंज है, इसको आपको फेस करना होगा
2: जी।
1: How is the CPI going to shape up for the month of October? Because for September it's 5.54%, August it was 4.83%. So there's a marginal hike in the consumer price index. Do you see this impacting consumers for the month of October?
0: See, there's always this link between WPI, wholesale price index, and the consumer price index. So naturally, after a lag, the spike in the WPI would reflect in the CPI as well, because the raw material, when the basic prices of basic commodities go up, it will automatically reflect in the CPI after a lag.
1: In more news, a Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw has said that trust and cyber security are becoming increasingly important in the global semiconductor value chain alongside cost considerations. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said that India aims to position itself as a trusted partner in the semiconductor design, manufacturing and testing of finished products. The minister emphasized that developing a complete ecosystem is essential for sustainable manufacturing.
3: Technology is always a global value chain. We want to be deeply embedded in this global value chain and be able to add value to those parts of the value chain where we play the best role. So when we talk of tech sovereignty, we are talking of critical and strategic dependencies, talking of resilience, and we are thinking of which are the parts of the global value chain where we need to be fully embedded.
1: Mr. Vaishnaw has said that India is strengthening its economy. He said that India's public debt to GDP ratio has declined.
3: Our public debt to GDP ratio, we reduced from 61% to 55% over the last 5 years. So we want to have a country, we want to have an economy which is resilient from financial point of view, economic point of view, as well as from the technological point of view. We want to have an economy which stands out even during the most turbulent times.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत मेरे मन मीत आपके लिए, स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली से, लता मंगेशकर की आवाज में। आइए सुनें।

फिल्म सच्चाई का ये गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इससे पहले आपने फिल्म कुदरत का गीत सुना परवीन सुल्ताना की आवाज में। आइए अब सुनते हैं फिल्म बुड्ढा मिल गया का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की।

0: इस गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी लेह के कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस टर्मिनल से हर साल 35 लाख यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। प्रधानमंत्री 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदम दारचा सड़क भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सड़क लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी और क्षेत्र में आने जाने के लिए एक नया रास्ता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा वे 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इनसे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मैं हूं आपके साथ अंजू और कार्यक्रम निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वीकार कीजिए एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत ही खूबसूरत गीत हैं। पहला गीत मैं आपके लिए लेकर आई हूं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में, फिल्म बदलते रिश्ते से।

जरा पास बैठो तो कहें दिल की बात तुमसे, जरा पास बैठो तो कहें दिल की बात, सुनो सुनो धड़कनों की ये महकती सी रात, नजर से नजर मिले तो करूं इजहार, यही तो है चाहत और यही है प्यार।

सोचो कि बस हम होते और होती हमारी मोहब्बत की बातें, है ना। काश हमारी जिंदगी में भी ऐसे हसीन दिन रात होते। हम होते और होती हमारी मोहब्बत की बातें, काश हमारी जिंदगी में भी ऐसे हसीन दिन रात होते। ना कोई दूरियां होती, ना ही उदास लम्हे होते। काश ऐसा होता कि तुम मेरे पास होते हैं।

तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि न जाने कब से जानती हूं तुम्हें। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे न जाने कब से जानती हूं तुम्हें, जैसे सदियों पुरानी कोई अधूरी कहानी हो। अजनबी होकर भी तुम्हें इतने अपने से क्यों लगते हो? ऐसा लगता है कि बस हर धड़कन में तुम्हारी ही रवानी हो।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम है निशिगंधा।

बस मेरे पास रहना तुम हर पल, परछाई बनकर। जिंदगी बहुत खूबसूरत है तुम्हारी मोहब्बत पाकर। दूरियों से डर नहीं लगता मुझे अब जरा सा भी, जब से तुम बस गए हो मेरे दिल की धड़कन बनकर।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 1:10 पर। फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नई समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक पकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निमू पदुम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेनदेन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विदेश मंत्रालय ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में 29 देशों के 33 राजदूतों और दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्हें भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं, स्वदेशी तकनीकों और आधुनिक अनुसंधान सुविधाओं की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के साथ विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए आज नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।

समय हुआ है 1:11 और 5 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं अंजू एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रहिए इस घंटे मेरे साथ और सुनेंगे आप बहुत ही खूबसूरत गीत।

आईना देखूं तो अक्स तुम्हारा दिखता है, आईना देखूं तो अक्स तुम्हारा दिखता है, किताब खोलूं तो तुम्हारा नाम लिखती हूं। ये कैसी दीवानगी दी है तुमने मुझे कि हवा के हर झोंके में अब मुझे साया तुम्हारा ही मिलता है।

कभी आहट पे चौंक उठती हूँ तो कभी हवा से पूछती हूँ, कभी आहट पे चौंक उठती हूँ तो कभी हवा से पूछती हूँ, तुम पास नहीं हो फिर भी हर पल में तुम्हें क्यों ढूंढती हूँ। ये कैसी दीवानगी दी है तुमने मुझे, ये कैसी दीवानगी दी है तुमने मुझे अपनी मोहब्बत में कि खुद को भूलकर मैं बस तुम्हारी होकर जीती हूँ।

बहुत सता लिया तुमने, अब और न सताओ। तरस रही है आंखें, अब तो सामने आओ। इम्तिहान न लो मेरे सादे दिल का, अगर मोहब्बत है हमसे तो आके हमसे मिल जाओ।

तुमसे मिलकर खो गए हम, ना जाने कुछ इस तरह। तुमसे मिलकर खो गए हम, ना जाने कुछ इस तरह, कि अब हमारा खुद पर ही कोई जोर नहीं चलता। जमाने भर की खुशियां अपनी जगह हैं, मगर तुम्हारे बिना अब दिल का एक पल भी हमसे नहीं संभलता।

बाहर बन के आए हो तुम मेरी सोनी जिंदगी में, बाहर बन के आए हो तुम मेरी सोनी जिंदगी में, जैसे कोई महकता हुआ ख्वाब उतर आया हो इन बंद आंखों में। तुमसे मिलकर खिले हैं दिल के सोए हुए सारे अरमां, अब तो हर लम्हा नूर ही नूर है मेरी हर एक बंदगी में।

गुनाह कर बैठी आंखें तुमसे नैन मिलाकर, गुनाह कर बैठी आंखें तुमसे नैन मिलाकर, अब ये दिल तड़पता है हर पल तुमको भुलाकर। कैसी ये कशिश है तुम्हारी इन नजरों में कि हम खुद को ही खो बैठे तुम्हें अपना बनाकर।

दोस्तों, लेकिन आपको सोने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम मिलेंगे तो बजकर 10 मिनट पर कार्यक्रम रात सुर में लेकर। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदूम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है।

0: इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 39% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

प्यार करता कौन है ये तो बस हो जाता है, प्यार करता कौन है ये तो बस हो जाता है। दिल खोने वाले को पता भी नहीं चलता, और कोई बहुत खास

हो जाता है। ये वो खुशबू है जो हवाओं में बिखर जाती है। इंसान खुद को भूलकर किसी और के एहसास में खो जाता है।

मोहब्बत में दुनिया का डर कैसा, जब दिल लगा लिया तो फिर मुकर जाना कैसा। जमाने की बंदिशें तो आती रहेंगी, इश्क के रास्ते में पीछे फिर कदम बढ़ाना कैसा।

एक ही हादसे ने बदल कर रख दी जिंदगी, एक ही हादसे ने बदल कर रख दी जिंदगी। बहुत याद आती है वो अधूरी मुलाकात तुम्हारी, तुम तो मुसाफिर थे, रास्ता बदल गए अपना, पर आज भी ठहर गई है वहीं सारी कायनात हमारी।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 3 बजे के बाद का सफर यानी 3:10 के बाद आपके साथ रहेंगी भारती, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर। अपना ख्याल रखिएगा,

ये आकाशवाणी है और मैं अमन यादव के साथ आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निमू पदुम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष

0: और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में देवी कनक दुर्गा की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। पुरुष क्रिकेट में हैदराबाद में 4th T20 इंटरनेशनल मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन बनाए। इस जीत के साथ 5 मैचों की T20 श्रृंखला 2-2 से बराबर हो गई। श्रृंखला का आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। अगले 2 से 3 दिनों तक छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवा चलने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। PM Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve in energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. He will also address the gathering on the occasion. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Programme for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by PM Modi in New Delhi. The National Social Assistance Programme has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the Disability Pension Scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above.
3: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities will be eligible.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आप सबका स्वागत करती हूं और मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार। रात के 3:11 और 30 सेकेंड हुए हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब दिल अक्सर अतीत की गलियों में टहलने निकल जाता है। सोचिए जरा वो कॉलेज के दिन, वो बेफिक्री रातें और वो वादे जो हमने कभी किए थे। आज कुछ प्यार भरी बातों से और भी बातें जोड़ेंगे और भी प्यारे प्यारे गीतों को सुनेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की कुली फिल्म के इस गीत के साथ।

आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो बस यही ख्याल आता है, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, क्या अपने भी उस पुराने दोस्त या प्यार को याद किया है जिसे सालों से कभी बात नहीं हुई। अगर आज इस वक्त वो याद आ रहा है तो इस गाने के साथ उसे या उस मासूम वक्त को फिर से याद कर लीजिए।

हम रही केस मोड़ पर, बात करते हैं दिल की उस पहली धड़कन की। याद है जब किसी एक खास इंसान का ख्याल आते ही सीने में हलचल बढ़ जाती थी। रात के सन्नाटे में जब सिर्फ आपकी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, तब दिल की धड़कन और भी साफ महसूस होती है।

वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। दिन, महीने और साल बस यूं ही सरकते रहते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो समय के साथ नहीं बदलता? जवाब है सच्चा हमराही और प्यार। रात का ये पहर हमें बताता है कि चाहे कितनी भी रातें बीत जाएं, कुछ एहसास हमेशा नए रहते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गाना जो वक्त और मोहब्बत के खूबसूरत रिश्ते को बयां करता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है हमराही। जब रात गहरी होती है तो दिल किसी अपने की मौजूदगी तलाशता है, एक ऐसी जगह जहां सुकून हो, जहां कोई बनावट ना हो। जब पूरी दुनिया के से कटने का मन करे तब अपना दिल ही सबसे सुरक्षित घर बनता है।

रात का जो सन्नाटा या जितनी शांति होती है उतना ही ये हमारे अंदर की सच को जगाता है। जो लोग शिद्दत से प्यार करते हैं, शिद्दत से उस प्यार को निभाते हैं, उन्हें जमाने का कोई डर नहीं होता।

कहते हैं कि दुनिया में हर रिश्ता नया हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा अमर और पुराना ही महसूस होता है, जैसे युग युग का साथ हो। हमराही का मतलब ही यही है कि सफर में कोई ऐसा हो जो हर कदम पर साथ चले। और छोड़ के जा रही हूँ, मतलब कहना मैं ये चाह रही हूँ कि समय हो गया आपसे अनुमति लेने का। जी हाँ, छोड़ के जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, और मुलाकात होगी अब आपसे 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में। मुझे दीजिए अनुमति और सुनिए ये प्यारा सा गीत। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदूम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में देवी कनक दुर्गा की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईजी नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में 4वें स्थान पर रहा। पुरुष क्रिकेट में हैदराबाद में 4थे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन बनाए। इस जीत के साथ 5 मैचों की T20 श्रृंखला 2-2 से बराबर हो गई। श्रृंखला का आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. PM Modi will inaugurate and dedicate to the nation five major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage, and enhance water security in the region. He will also address the gathering on the occasion. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Programme for 5 years, from 2026-27 to 2030-31, with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by PM Modi in New Delhi. The National Social Assistance Programme has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the disability pension scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above.
3: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities will be eligible for the pension from birth. The number of beneficiaries is expected to increase significantly, with approximately 27 lakh persons with disabilities expected to benefit under this pension scheme. The total number of beneficiaries will rise to around 3 crore 20 lakh.
1: 3 crore 20 lakh ho jayegi.
2: Pension schemes for senior citizens and widows as well as the family benefit scheme will continue in their existing form. The union minister said the government has also given nod to the strategic restructuring of IDBI Bank. The Pension Fund Regulatory and Development Authority and NPCI Bheem Services Limited have launched Tatkal NPS on the Bheem Payments app. The new feature allows eligible citizens to open a national pension system account in just 3 steps using existing bank-verified KYC and UPI, eliminating the need for branch visits or fresh paperwork. The Department of Agriculture and Farmers Welfare will celebrate the national level celebration of Mahila Kisan Divas 2026 in New Delhi today to recognize women's contribution to Indian agriculture. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that women, being an integral part of India's agricultural system, play several pivotal roles from sowing, transplanting and harvesting to livestock management, seed conservation and natural resource management. India expressed solidarity with Saudi Arabia and condemned the string of attacks in the West Asian nation. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal condemned the attack on the Aramco headquarters, saying such attacks are totally unacceptable and must cease immediately. In view of the current situation in Saudi Arabia, Indian Embassy in Riyadh urged all Indian nationals to continue to follow local authorities' instructions. India Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Punjab, Delhi, Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The weather agency has forecast heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh and south interior Karnataka today. According to IMD, East Rajasthan, Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Uttarakhand and West Uttar Pradesh will experience thunderstorms accompanied with hailstorm today. PM Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi today. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. India finished fourth in the medal tally at the Asian Games held in Aichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. In men's cricket, West Indies defeated India by 24 runs in the fourth T20 International in Hyderabad tonight. Chasing a target of 248 runs set by West Indies, India scored 223 for 9 in 19.3 overs. Sanju Samson was the top scorer with 56 runs. For West Indies, Kemo Paul scalped 5 wickets. Earlier put into bat, West Indies posted 247 runs for the loss of 3 wickets in stipulated 20 overs. West Indies captain Shea Hope scored unbeaten 102 runs of 50 balls. Shea Hope was adjudged the player of the match. The 5-match series is now levelled at 2-2. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म, फिल्म ही फिल्म से मन्ना दे की आवाज़ में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार शंकर जयकिशन।

हंसा मस्ती में गा

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म अंधा कानून से किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म अर्पण से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कलाकार से सुरेश वाडकर और साधना सरगम की आवाज में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म किसी से ना कहना से आशा भोसले की आवाज में, संगीतकार बप्पी लहरी।

अभी आपने गीत सुना फिल्म तकदीर से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आगे बढ़ते हैं, यानी समय हो गया है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति का। जी हाँ, ये है अनुराधा पोटवाल की आवाज में। तो आइए सुनते हैं, और अब मेरी मुलाकात होगी आपसे 5:10 पर। जी हाँ, प्रोग्राम भोर सुहानी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबे निम्पो पदुम दारचा सड़क मार्ग, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डहा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक रचनात्मक और रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाए जाने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर भी बातचीत की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की

समय हो गया है 5:11 और 6 सेकेंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

जीवन एक सुंदर नृत्य की तरह है, जहाँ कभी खुशियों की धुन बजती है तो कभी चुनौतियों की ताल पर कदम मिलाने पड़ते हैं। जो इंसान अपने मन में उत्साह, विश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम रखता है, वह मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराना सीख जाता है।

नई सुबह जिंदगी हमें एक नया अवसर देती है। बीते कल में कुछ अच्छा हुआ हो या कुछ ऐसा जिसे हम बदलना चाहते हो, आज हमारे पास फिर से शुरुआत करने का मौका है। इसलिए डर कर नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ जिंदगी का स्वागत कीजिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब नेचर की सुंदरता, अपनों का साथ और मन की शांति हमें एहसास कराते हैं कि जीवन कितना अनमोल है। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की पहली किरण, ये सब हमें सिखाते हैं कि खुशियां हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी छुपी होती हैं।